मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में

ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वंदना कार्यक्रम के आरंभ में आपने अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ में ये भक्ति रचना सुनी। आइए अब सुने इसी आवाज़ में एक और भक्ति रचना।

ये थे उदित नारायण और साथी। आइए सुने विपिन सचदेव और साथियों की आवाज में ये भक्ति रचना।

भक्ति संगीत का वंदना कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आइए अब सुने नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए चिंतन। वाचक स्वर बाबा ब्रह्मदास का है।
1: इस संसार में संसारिक जीव को आध्यात्मिक की तरफ जोड़ने के लिए, ज्ञान का प्रचार करने के लिए हमारे गुरुओं ने, उस परम पिता परमात्मा ने एक नाम रखा, सत्संग। सत्संग का क्या मतलब है, सत्संग क्या है, इससे क्या लाभ है? सत और संग, ये दो शब्द हैं। सत का मतलब है सच, सच्चाई, और संग का मतलब है साथ। सच्चाई का साथ करना, सच्चाई पर चलना ही सत्संग कहलाता है। गुरु महाराज की वाणी में लिखा है, सत्संग सोई जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। परमात्मा के नाम का प्रचार किया जाता है और वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का

प्रचार किया जाता है ताकि इंसान इसको सुने और इस पर विचार करे और अमल करे और सत्संग में बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन सुखी बनाए और मोक्ष की प्राप्ति करे, जन्म मरण से छुटकारा पा सके। तुलसीदास ने लिखा है, सूत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये धन दौलत पुत्र स्त्री ये सभी के पास होते हैं, चाहे कोई पापी है, और संतों का समागम सत्संग किसी को ही प्राप्त होता है। जिसके भाग्य में सत्संग लिखा होता है उसी को ही प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश इंसान को करनी चाहिए कि सत्संग की हाजिरी जरूर भरनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान को सब कुछ पता है, इस संसार में क्या करना है क्या नहीं करना, और बार बार सत्संग सुनने का क्या फायदा है। परंतु सत्संग

0: सत्संग लिखा होता है उसी को ही प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश इंसान को करनी चाहिए कि सत्संग की हाजिरी जरूर भरनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान को सब कुछ पता है, इस संसार में क्या करना है क्या नहीं करना, और बार बार सत्संग सुनने का क्या फायदा है। परंतु सत्संग जहाँ भी मिले उसी सत्संग में हाजिरी इंसान को भरनी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। क्योंकि इंसान ऐसा है, इस संसार में ऐसा फंसा हुआ है कि उसके पास समय नहीं है ईश्वर को याद करने के लिए। अपने काम धंधों में फंसा है, कार विहार में फंसा है, अपने परिवार में फंसा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा है। अगर इंसान इन सभी को छोड़कर पीछे हटाकर अगर सत्संग में आएगा तो उतना देर तक उसका मन जरूर सत्संग से जुड़ा रहेगा, चाहे वो कहाँ भी है। परंतु जिस समय वो सत्संग में आएगा उस समय उसका मन तो जरूर उस ईश्वर को याद करेगा। इसलिए जहाँ भी सत्संग हो, जिस भी गुरु महाराज के प्रवचन हो, अच्छी संगत मिले, उसी के पास जाकर आप सत्संग सुना करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। आध्यात्मिक की तरफ यह सबसे पहली पौड़ी है, इस पौड़ी पर चढ़ो तो आप साक्षात उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे।
1: ये था आज का चिंतन, वाचक स्वर बाबा ब्रह्मदास का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतकर से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। किसान भाइयों के लिए प्रातः है 7:10 पर। खेतीहर वास्ते कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। दिन में 12:50 पर खेत खलिहान में सुनेंगे जानकारी जिसका विषय रहेगा मूंगफली की फसल में सामयिक कार्य। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल होगा 7:00। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे बिजली के उपकरणों की देखभाल, सब्जियों में कीट नियंत्रण, मित्र कीटों के बचाव हेतु उपाय और उपलब्ध होने पर मौसम और बाजार भाव की भी जानकारी दी जाएगी। लोक संगीत के कार्यक्रम मरु मंगल में 9:10 पर कलाकार होंगे मणिराम राठौड़। मानस गान सुनेगा 7:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भाग संख्या 324। 7:30 पर आप सुना करते हैं कार्यक्रम सुप्रभात। इसमें सुनेंगे वार्ता त्याग और सेवा। वार्ताकार होंगे आर के दाधीच और चर्चा के विषय रहेंगे देश के प्रति बलिदान की भावना, स्वावलंबी बने और छोटी छोटी खुशियां। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का समय रहेगा 9:30 पर। इसमें सुनेंगे

0: आज युगल गीत। इसी कार्यक्रम में फिल्म संगीत आप सुनेंगे 2:30 पर, शाम 8:15 पर और रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम आज के फनकार आप सुन सकेंगे सुबह 10:00। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन सकेंगे सुबह 11:00। फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए हम आपको सुनवाएंगे 12:05 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत में कुछ गजल सुनेंगे दिन में 12:30 पर और रात्रि 9:15 पर। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुने दिन में 1:05 पर। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे व्यक्तित्व लक्ष्य निर्धारण, बातें की फुल्की, झूठ बोलने की आदत, रेडियो का जन संचार में योगदान, मखाना व्रत का सुपर फूड और उसके स्वास्थ्य लाभ। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:00। कार्यक्रम सहरह की आप सुना करते हैं शाम 6:05 पर। हमारे दिल्ली और जयपुर केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। समाचार तरंग सुबह 8:45 पर, उर्दू सर्विस के कार्यक्रम होंगे 2:00-3:00 से, जिले की चिट्ठी शाम 6:40 पर, रात्रि 8:00 संसद समीक्षा, पब्लिक स्पीक रात्रि 9:30 पर और खेल जगत रात्रि 10:00 हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 kHz पर, FM पर 100.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिकरूपेण सुदृढाः, मानसिकरूपेण सबलाः, आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1 कोट्यधिकाः युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय सङ्घटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युवा कार्य क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादक द्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य

0: राष्ट्रीय शुभारम्भानन्तरम् असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्र निर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापी जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्य प्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभा क्षेत्राणां उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 मतदानयन्त्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढ़ सुरक्षाव्यवस्था कृतास्ति। मध्यप्रदेशे दतिया विधानसभाक्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणनापट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटकनगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। एकादशदिनात्मकानां स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गोनगरे भव्यसमारोहेण राष्ट्रमण्डलक्रीडा सम्पन्ना। भारतमेकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। एतेषु 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में यह बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर,

0: और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi yesterday, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide जन भागीदारी कैंपेन अगेंस्ट सब्सटेंस अब्यूज।
2: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स।
1: मोर देन 1 crore यूथ फ्रॉम 28,000 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, इंक्लूडिंग माय भारत एंड द नेशनल सर्विस स्कीम वॉलंटियर्स एज वेल एज पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, यूथ क्लब्स, एनजीओस एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल बिगिन अ 3-day विजिट टू ओडिशा टुडे। During her visit, the President will participate in a series of educational, cultural and official engagements in Cuttack, Bhubaneswar, Brahmapur and Taptapani in Ganjam district. The President is scheduled to inaugurate Jagatguru Kripalu University at Cuttack today. Tomorrow, she will travel to southern Odisha to offer prayers at the Ma Khanduni Devi temple near Taptapani before attending other official programs. All arrangements are in place for the counting of votes today for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Polling for the Pakipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh was held on the 30th of last month. Counting of votes will begin at 8 this morning. Postal ballots will be counted first, followed by the counting of votes recorded in electronic voting machines from 8:30 a.m. The Election Commission has made robust security arrangements to ensure smooth counting in all the 3 states. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than early expectations, supported by

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतिहर वास्ते। आज इसमें जानकारी का विषय है फसलों में सूक्ष्म तत्वों का महत्व।
1: किसान भाइयों, मिनखा और पशुओं में जिया भोजन की आवश्यकता पड़े, बियाई पौधा ने भी विकास करने वास्ते खुराक की आवश्यकता पड़े। आप बात करा फसलों ने संतुलित भोजन किया उपलब्ध करावा। किसान भाइयों, बुंटो हवा पानी और धूप से भी आपको की भोजन तैयार कर लेवे, परंतु पौधों स्वस्थ और ज़्यादा पैदावार देवे इन वास्ते आपने भी अलग शुमी के भोजन के और पोषक तत्वों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब बात करा बा सारे पोषक तत्वों की जिका एक पौधे के जीवन चक्र ने पूरा करें। जीवन चक्र पूरा करने वास्ते कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, बोरोन, तांबा, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, सिलिकॉन कई पोषक तत्वों की जरूरत होवे। मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो बिंगमा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पौधे ने किया पोषित करे बी वास्ते बतावा भी पौधा में जिको हरो रंग आवे वो नाइट्रोजन हुआ और पौधों तेजी हूँ बढ़वार करे इंगमा भी नाइट्रोजन को संयोग हुए। बुंटे में प्रोटीन, विटामिन और कोशिका में रस बनाने वास्ते भी मदद करे। अब आपा किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी है इंगो पतो किया कर सका तो बी वास्ते आप देखांगा कि पौधा को जिको पत्तियाँ हैं बांगो रंग पीलो पड़ जाए, पत्तियाँ छोटी रह जावे, पौधा में बढ़वार को नहीं करे। नाइट्रोजन की कमी दूर करने वास्ते यूरिया बिजाई के समय देनी होवे, बिंगे बाद पौधे की बढ़वार वास्ते एक दो बार और छिड़काव होवे। दूसरे पोषक तत्व की बात करा जिको जरूरी है बी वास्ते फास्फोरस। जी हाँ, फास्फोरस जड़ा ने मजबूत बनावे, तने ने मजबूत बनावे, फूल जल्दी निकाले, फसल ने जल्दी पकावे। बुंटे के माँ प्रोटीन और वसा बनावे। कमी को पतो किया चाले जी हाँ, फसल है बिंगी पत्तियाँ जी की है वह छोटी रह जाएगी।

और पत्तियां के आसे पासे बैंगनी लाल रंगा धब्बा बन जावे। बीव आपा ने ठा पड़ जाएगो भी फास्फोरस की कमी है। कमी दूर करने वास्ते आपा ने फास्फोरस युक्त खाद जिया DAP सिंगल सुपर फास्फेट को प्रयोग मिट्टी की जांच करा के करांगा। फसल बढ़वार के समय फास्फोरस काम को नहीं देवे। इन वास्ते जिके समय आपा फसल की बिजाई करा भी समय ही फास्फोरस को उपयोग कर सका। अब बात करा आपा पोटास की। पोटास जिकी है बा पत्तियां गेमा जी को भोजन बने बिने पौधे के हर अंग तई जिया जड़ में तने में लिजाण वास्ते सहायक हुए। फसला में रोग ना लगे जिया पालो सुखो खराब ना करे बीहू भी आ रक्षा करे। तने ने मजबूत बनाने के सागे ही जिकी फसल है बिगी गुणवत्ता ने कायम रखे। पोटैश की कमी को पतो आपा ने चले पौधो कमजोर हो सी क्योंकि बिंगे माँ पानी की मात्रा कम हुए। तनो कमजोर हो जाए और जिये तेज हवा चले तो पौधो नीचे भी गिर जाए। पोटैश की कमी से फसल की गुणवत्ता को नहीं रवे। पोटास की कमी पूर्ति करण वास्ते आपा ने पोटास युक्त खाद जिया म्यूरेटो पोटास को प्रयोग मिट्टी जांच के बाद आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इनके अलावा भी छोटा छोटा कई पोषक तत्व है जका ने आपा फसल में देने की आवश्यकता हुआ है। बिंगमा जिया जस्तो है, जिंक सल्फेट, लोह है, फेरस सल्फेट, मैग्नीज है, मैग्नीज सल्फेट, बोरोन वास्ते बोरेक्स, तांबे वास्ते कॉपर सल्फेट। किसान भाइयों ध्यान में रखने की बात आ है कि जड़ों को विकास अधिक फुटाव वास्ते फास्फोरस और पोटास बुआई के टाइम पर ही देना आपा और नाइट्रोजन को की भाग बुआई के समय और बिंगे बाद जरूरत के हिसाब में 2 या 3 बार आपा ने छिड़काव करना होसी। किसान भाइयों आपा पोषक तत्वों की बात करी तो आ पोषक तत्वों का उपयोग आपा सर्वप्रथम मिट्टी जांच करवा के ही करांगा। बीहू आपा ने ठा पड़ जी सी भाई किसे पोषक तत्व की इंगमा कमी है। तो अब मैं चालू राम राम सा।

फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। अभी किसान भाई इस विषय पर खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन। कलाकार हैं प्रकाश चंद्र शर्मा।

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: इस संदेश से पूर्व आप सुन रहे थे लोक भजन, कलाकार थे प्रकाश चंद्र शर्मा। ये आकाशवाणी का कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए मानस गान। आज इसमें सुनते हैं भाग संख्या 324, मुख्य स्वर सुरेश वाडकर और श्रीकांत पारगांवकर का है।

सुमेरु पर्वत को हाथों में लिए अयोध्या नगरी के ऊपर से जाते हुए हनुमान का विशाल रूप देखकर भरत ने अनुमान किया कि ये कोई राक्षस है। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर बिना फल वाला बाण मारा। बाण लगते ही राम राम हे रघुनाथ कहते हुए हनुमान पृथ्वी पर आ गिरे। हे राम हे रघुनाथ की ध्वनि सुनकर भरत दौड़कर उनके पास आ पहुंचे। हतप्रभ होकर वो हनुमान से सब कुछ जान लेना चाहते हैं, किंतु उनकी मूर्छा न टूटते देख उदास हो उन्हें छाती से लगा लेते हैं। वो श्री राम के प्रति अपने प्रेम और समर्पण की दुहाई देते हुए कहते हैं, यदि श्री राम के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और श्री रघुनाथ मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। कोसलपति श्री रामचंद्र की जय कहते हुए हनुमान उठ बैठते हैं। श्री राम सीता और लक्ष्मण की कुशल की भरत की जिज्ञासा के उत्तर में हनुमान उन्हें सारी कथा संक्षेप में सुना देते हैं।

0: मानस गान की भाग संख्या 324 अभी आपने सुनी। मुख्य स्वर सुरेश वाडकर और श्रीकांत पारगांवकर का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज नमस्कार देवेंद्र शर्मा की ओर से। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं पहले ये वार्ता, त्याग और सेवा। वार्ताकार हैं आरके दहाधीज।
1: देवभूमि भारत ऋषियों महर्षियों की पुण्य स्थली है। इनका तपस्या, अनुसंधान, त्याग, प्रेम लोकहित की साधना में ही समर्पित रहा है। इस विशाल मणिमाला में महर्षि दधीची का प्रमुख स्थान है, जिन्होंने विश्व के कल्याण हेतु अपने शरीर का भी बलिदान किया। दधीची ऋषि ने यह उपदेश दिया कि शरीर नाशवान है, धर्म की रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपना सर्वस्व त्याग देना ही सच्चा धर्म है। दधीची ऋषि ने राष्ट्र एवं समाज की एकता का संदेश दिया एवं शरीर मन एवं समाज को निरोग रखने का उपदेश दिया एवं सकारात्मक सोच एवं संयमित जीवन जीने का संदेश दिया। दधीची मुनि ने प्रकृति को माता मानने का संदेश दिया। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीया, अर्थात भूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। दधीची ऋषि ने सत्य बोलने, मेहनत करने, परिवार में प्रेम और सहयोग का संदेश दिया। सहना ववतु सहनो भुनक्तु, अर्थात साथ पढ़ें साथ बढ़ें का संदेश दिया। दधीची ऋषि ने भय लोभ ईर्ष्या को त्याग कर ब्रह्मचर्य तप ज्ञान से जीवन जीने का संदेश दिया। यानी व्यक्ति समाज एवं प्रकृति में सामंजस्य बनाकर चलने की बात कही। महर्षि दधीची अथर्व वेद के रचयिता महर्षि अथर्व के पुत्र थे। महर्षि अथर्वा की पत्नी का नाम शांति था। महर्षि अथर्वा अग्नि को स्व

स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। दधीचि ऋषि अथर्व व वेद के ज्ञाता एवं ब्रह्म वेता थे। महर्षि अथर्वा की पत्नी शांति ने भगवती लक्ष्मी की उपासना की। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से देवी शांति ने दधीमती को जन्म दिया। दधीमती माता ने ही दैत्यराज विकटासुर का वध किया था। दधीचि ऋषि तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और वैराग्य के कारण ही दधीचि ऋषि ने दक्ष प्रजापति द्वारा करवाए गए यज्ञ में शिव की अनुपस्थिति का प्रखर विरोध किया था। साथ ही यह संदेश दिया कि हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहना चाहिए। इनकी पत्नी का नाम वेदवती गभस्थिनी था। महर्षि दधीचि वेद शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। वे सदा दूसरों का हित करना अपना धर्म समझते थे। वे प्रकृति के साथ रहते थे। उनका जीवन सादा, तपस्वी और संयमी था। दधीचि ऋषि ने परोपकार करने और प्रकृति समाज की सेवा करने का उपदेश दिया। महर्षि शुक्राचार्य से ही दधीचि मुनि ने महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान भी सीखा था। महर्षि दधीचि का मानना था कि ज्ञान सभी के कल्याण के लिए है, इसलिए उन्होंने ब्रह्म ज्ञान इंद्र के स्थान पर जन कल्याण में रत रहने वाले देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को दिया था, क्योंकि वे इनको सुपात्र समझते थे। महर्षि दधीचि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से भगवान विष्णु की आराधना करके ब्राह्म कवच व नारायण कवच धारण किया था, जिससे उनका शरीर इच्छा मृत्यु व वज्र स्थित्व होकर ब्राह्म तेज से विद्यमान हो गया था। देवताओं के विचार में दिव्य शस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए एक ही ब्रह्म योगी महर्षि दधीचि ही उपयुक्त थे। देवताओं की प्रार्थना पर दधीचि ऋषि दिव्यास्त्रों के न्यासी बने। महर्षि दधीचि ने रसायन विधि के माध्यम से उन देव शस्त्रों को सूक्ष्म अणुओं में परिवर्तित कर दिया था। महर्षि दधीचि के द्वारा निर्माण किए गए इस आणविक शक्ति संवर्धन के कारण उन्हें अणु शक्ति का प्रथम आविष्कारक भी माना गया था। दैत्यराज वृत्तासुर दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने वज्र से ही मारा जा सकता था। महर्षि का मानना था कि यह देह क्षणभंगुर है। यदि मेरे इस शरीर से आसुरी वृत्ति का विनाश एवं लोक कल्याण के लिए देवताओं की रक्षा होती है, तो इसको उन्होंने अपना सौभाग्य माना। महर्षि दधीचि ने यह उपदेश दिया कि यदि अधर्म बढ़ रहा हो तो प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अस्थियों को दान देने से पूर्व महर्षि दधीचि ने वेद भूमि भारतवर्ष के सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा प्रकट की। इस पर इंद्र ने भारत के सभी तीर्थों से कमंडलों में जल भरकर देव कार्य एवं दैत्य दमन में अपने जीवन का बलिदान देने वाले महर्षि दधीचि का अभिषेक किया। अभिषेक का सारा जल सरस्वती कुंड में एकत्रित हुआ और इस मिश्रित हुआ जो दधीचि तीर्थ मिश्रिक नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। तत्पश्चात अश्वनी कुमारों के सहयोग से देव शिल्पी विश्वकर्मा ने शेष नाग के सहयोग से दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। उस वज्र से देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर वृत्तासुर से युद्ध किया एवं वृत्तासुर का वध किया और धर्म राज्य की स्थापना हुई। दधीचि ऋषि ने सिखाया कि स्वयं के सुख से पहले लोक कल्याण ही सच्चा धर्म है। उनके अस्थि दान की कथा आज भी हमें निस्वार्थ सेवा से बलिदान और धर्म रक्षा की प्रेरणा देती है। दधीचि ऋषि ने बताया कि आत्मा अमर है एवं शरीर नाशवान है। सर्व खल विदम ब्रह्म अर्थात सारा जगत ब्रह्म से उत्पन्न है, उसी में लीन रहता है एवं ब्रह्म ही सत्य है। उन्होंने बताया कि केवल तपस्या से नहीं, निष्काम कर्म
और ज्ञान

0: से ही मुक्ति मिलती है। उन्होंने उपदेश दिया कि सुख दुख लाभ हानि मान अपमान में सम रहो, यही योगी का लक्षण है। सृष्टि ऊर्जा और पदार्थ के मेल से चलती है, पर चलाने वाला एक ही ब्रह्म है। राष्ट्र धर्म और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों की यशस्वी परंपरा के श्रेष्ठ अग्रदूत महर्षि दधीचि को आदर्श मानकर स्वाधीनता संग्राम के नक्षत्र वासुदेव बलवंत फड़के ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में यही प्रकट किया कि महर्षि दधीचि की तरह उनके शरीर का प्रत्येक अवयव नर पिशाच अंग्रेजों के विनाश के काम आए। महात्मा गांधी भी सन 1920 में साबरमती के तट पर गुजरात में संपन्न हुए अधिवेशन स्थल को दधीचि नगर नाम दिया और कहा कि यदि देशवासी महर्षि दधीचि के आदर्श को अपना सकें तो भारत की स्वतंत्रता के निकट आने में कुछ भी विलंब नहीं होगा। महर्षि दधीचि के देहदान के पश्चात उनके पुत्र पिपलाद का पालन पोषण दधीचि महर्षि की बहन दधीमती ने किया। दधीमती माता का मंदिर राजस्थान के नागौर के गोठ मांगलोद गांव में स्थित है। कालांतर में पिपलाद ने भी दिव्य ज्ञानों को प्राप्त किया। पिपलाद ऋषि ने विभिन्न ग्रंथ उपनिषद वेदों की संहिताएं लिखी है, जिसमें पिपलाद संहिता, पिपलाद ब्राह्मण ग्रंथ, प्रश्नोपनिषद, पिपलाद श्राद्ध कल्प, अगस्त्य कल्प सूत्र आदि प्रमुख हैं। पिपलाद मुनि ने भी अपने पिता की भांति संयमित जीवन जीने, ओम का ध्यान करने, आत्मा की अमरता, अहंकार छोड़ने, मन शुद्ध रखने का एवं ब्रह्म एवं मोक्ष को प्राप्त करने के मार्ग बताए। कथा के माध्यम से समाज को ज्ञान का बोध कराना ही पुराणों की रचना का उद्देश्य है। इस कथा का बोध है कि संस्कृति रक्षा के लिए हमारे कर्मयोगी ऋषि मुनियों ने अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया था। संस्कृति रक्षण और जतन के लिए अपनी हड्डियों का आणविक रसायन निर्माण करके संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन किया था। वर्तमान युग की प्रासंगिकता को देखते हुए राष्ट्रहित में महर्षि दधीचि का चरित्र चित्रण समझकर उसे जीवन में धारण कर इस भारत को विश्व विजयी बनाया जा सकता है। मानव कल्याण के हित में जब भी त्याग की बात आएगी तो सबसे पहले नाम त्याग मूर्ति महर्षि दधीचि का आएगा।
1: त्याग और सेवा। अभी आपने ये वार्ता सुनी, वार्ताकार थे आर के दधीच। श्रोताओं सुनते हैं ये एक फिल्मी नगमा, आवाज लता मंगेशकर की।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, देश के प्रति बलिदान और समर्पण की भावना किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। यह केवल सीमाओं पर बंदूक उठाकर खड़े रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की प्रगति, संप्रभुता, अखंडता और खुशहाली के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने का एक सर्वोच्च भाव है। बलिदान की इस भावना में स्वार्थ से परे राष्ट्र प्रथम का विचार अंतर्निहित होता है। श्रोताओं, देशभक्ति और बलिदान का ऐतिहासिक संदर्भ भारत का इतिहास त्याग और आत्म बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है। समय समय पर इस मिट्टी के वीरों और महान विभूतियों ने यह सिद्ध किया है कि मातृभूमि की रक्षा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, ताकि अपनी आने वाली पीढ़ियां आजाद हवा में सांस ले सकें।

श्रोताओ, छोटी छोटी खुशियां जीवन का असली सौंदर्य है। खुशियां कहीं बाहर नहीं मिलती, वे हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। बस उन्हें महसूस करने वाली नजर चाहिए। आज की इस भाग दौड़ भरी आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी बड़ी सफलता के पीछे भाग रहा है। कोई बड़ा घर खरीदना चाहता है, कोई महंगी गाड़ी, तो कोई करियर के शीर्ष पर पहुंचना चाहता है। लेकिन इस बड़ी खुशी को पाने की दौड़ में हम अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो रोज हमारे सामने से गुजरती है। सच्चा आनंद किसी बहुत बड़े मुकाम को हासिल करने में नहीं, बल्कि जीवन के हर पल को जीने और उसमें छुपे छोटे छोटे सुखों को समेटने में है। छोटी छोटी खुशियां क्या है? छोटी खुशियां कोई भौतिक वस्तु या महंगे उपहार नहीं है। ये वे छोटे छोटे अनुभव, एहसास और क्षण हैं जो हमारे चेहरे पर बिना किसी बड़ी वजह के एक प्यारी सी मुस्कान ला देते हैं।

0: श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने के अपने साथी देवेंद्र शर्मा को दिया गया नमस्कार। आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। आज से पहले ये आकाशवाणी सूरतगढ़ है, 8 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू, बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
4: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे।

0: कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपाणी जाएंगी, जहां वो मां कांधोनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली

0: जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुँचेगी। यहाँ शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कई गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया।

0: जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. Prime Minister Narendra Modi has launched the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing in New Delhi yesterday. In his address, the Prime Minister said that achieving Viksit Bharat fundamentally requires a physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation, completely free from self-destructive habits.
3: Viksit Bharat Sankalp Abhiyan ke liye Nasha Mukt Yuva, is movement ka naam hi iske sankalp ko spasht karta hai. Kyunki aaj jab desh ne Viksit Bharat ka lakshya tay kiya hai, to iske liye avashyak hai desh ka yuva tan se swasth ho, man se swasth ho, aatmavishwas se bharpur ho aur ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: Outlining the campaign's ambitious 100-week roadmap, Mr. Modi detailed how every upcoming Sunday will feature dedicated activities spanning art, culture, sports and meditation to continually engage new participants. He said that coming 100 Sundays will absolutely become 100 strong steps in the direction of a completely drug-free India.
3: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स।
2: Counting of votes are underway for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Polling for the Bakipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh was held on the 30th of last month. Postal ballots has been counted first, followed by the counting of votes recorded in electronic voting machines. The Election Commission has made robust security arrangements to ensure smooth counting in all 3 states. In Madhya Pradesh, counting for the Datia Assembly seat has been held at the Government Polytechnic College, where 20 counting tables have been set up.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।

0: गुज़श्ता महीने की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जा रही है। चुनाव कमीशन ने तीनों रियासतों में वोटों की गिनती के अमल को खुशअसलूबी से यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्रिक्स मुल्कों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के आदाद व शुमार के कौमी दफातर एनएसओ के सरबराहान का इजलास आज से कल तक लखनऊ में भारत की सदारत में मुनाकिद होगा। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: भारत की ब्रिक्स सदारत मरकजी मौजूद इस्तेहकाम इख्तिराक तआवुन और पायदारी की तश्कील से इबारत है। ब्रिक्स के आदाद व शुमार के शोबे में भारत ने मेयारी आदाद व शुमार तब्दीली का महर्रिक का मौजू इख्तियार किया है, जो आदाद व शुमार के आला मेयार इख्तिरा मालूमात की मौसर तरसील और आवाम पर मरकूज शुमारियाती निज़ाम के लिए भारत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। इस इजलास का मकसद ब्रिक्स के कलीदी आदाद व शुमार को मज़ीद मजबूत बनाना, कौमी शुमारियाती निज़ाम में इख्तेरा और इस्लाहात को फ़रोग देना, आदाद व शुमार की इशात और आदाद व शुमार तक रसाई को बेहतर बनाना, नीज़ माशी और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक आदाद व शुमार को मज़ीद मुस्तहकम करना है। इसका मकसद आदाद व शुमार से मुतालिक मालूमात की इशात, शुमारियाती निज़ाम में इख्तरा, नीज़ मालूमात और बेहतरीन तरीक़ेकार के तबादले के शोबों में बाहमी तआवुन को मज़ीद मजबूत करना भी है। इजलास के साथ दो निसफ रोज़ा ज़िमनी प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे, जिनमें इंतज़ामी आदाद व शुमार की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा और तरक्की पज़ीर डेटा इको निज़ाम में मसनूई ज़हानत AI के लिए तैयारी जैसे मौजूआत पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का आज से उड़ीसा का 3 रोजा दौरा शुरू हो रहा है। अपने क्याम के दौरान सदर जमहूरिया कटक में करीपालू जगतगुरु यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी और कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिलों के तप्तापानी में तालीमी, सकाफती और दीगर सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। पेश एक रिपोर्ट।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की अपनी आबाई रियासत के 3 रोज़ा दौरे के सिलसिले में आज से पहर भुवनेश्वर पहुंचेंगी। बाद में शाम को वो कटक के नज़दीक बनारा में जगत गुरु किरीपालू यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी। वो कल भुवनेश्वर से बहरामपुर तक एक खसूसी ट्रेन से सफ़र करेंगी और बाद में गंजम ज़िले में तप्तापानी के लिए सड़क से रवाना होंगी, जहाँ वो माँ कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। मोहतरमा मुर्मू गोला बांधा में फौज के एयर डिफेंस कॉलेज में रात कयाम करेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की 40 पलटनों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया के दौरे के दौरान सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए बहरामपुर रेलवे स्टेशन, सदर जमहूरिया के सफ़र के रास्ते, तप्तापानी मंदिर कॉम्प्लेक्स, फौज के एयर डिफेंस कॉलेज और दीगर मकाम को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: लोकसभा में आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पेश किया जाएगा। तवक्को है कि कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे, ताकि भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में मजीद तरमीम की जा सके। इम्कान है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकर बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश करेंगे। आदाद व शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद के वजीर राव इंदरजीत सिंह इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 2026 पेश करेंगे। इसी दौरान राज्यसभा में बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों की तरक्की का तरमीमी बिल 2026 आज पेश किया जाएगा। बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों के मरकजी वजीर जीतनराम मांझी बिल पेश कर सकते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसी करने वाले ममालिक के जरिए ईरान के साथ आज मुजाकरात होने वाले हैं। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने तस्दीक की कि दोनों मुल्कों के दरमियान राबते और बातचीत के जराये सरगर्म हैं। सर ट्रंप ने बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में उन्होंने इस बड़े हमले को रोकने का फैसला किया, जो पहले मनसूबाबंदी का हिस्सा था। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए हुरमुस के इंतजाम व इंसराम के हवाले

से एक मुआहदा तय पाने का इम्कान है, जबकि ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के बारे में भी एक मुफाहमतनामे तक पहुंचने की तवक्को है। इसराइली मीडिया की खबरों के मुताबिक खित्ते के सालिसी करने वाले मालिक गुज्त माह दस्तखत किए गए मुफाहमतनामे को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस अहम समंदरी गुदरगाह को 60 दिन तक बगैर किसी फीस के खुला रखा जा सके। उधर ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इशारा दिया है कि ईरान और ओमान के दरमियान उस समंदरी राहदारी के इंतजाम के लिए मुश्तरक तरीके का कार से मुतालिक मुजाकरात अपने आखिरी मरहले में हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कल अमन रैली के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर हुए खुदकुश हमले में सिक्योरिटी के 5 अहलकारों समेत कम अज कम 14 अफराद हलाक और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। खुदकुश बम धमाके का वाकया उस वक्त पेश आया जब सवात पुरअमन रैली सवात जिले में कवल कस्बे के पुलिस स्टेशन से गुजर रही थी। किसी ग्रुप या फर्द ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र सावन महीने की पहली पीर के मौके पर आज भगवान महाकालेश्वर की श्रवण यात्रा निकाली जाएगी। चंद्रमावलेश्वर के रूप में भगवान महाकाल की रिवायती पालकी निकाली जाएगी, जिससे अकीदतमंदों को उनके दर्शन का मौका मिलेगा।

0: शाम 4 बजे जुलूस निकाले जाने से कबल महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जुलूस रामघाट पहुंचने से पहले गुदरी चौक बख्शी बाजार से होकर गुजरेगा, जहां भगवान महाकाल को शिप्रा दरिया के पवित्र पानी के साथ अभिषेक और आरती पेश की जाएगी। ये जुलूस शाम मंदिर लौट आएगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसीतर इंतजाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार जजायर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरकी भारत के बाज इलाकों में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने साहिली आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान और निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। ग्लासगो में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम के साथ ही अहमदाबाद में 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की उल्टी गिनती बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इख्तितामी तकरीब में भारत ने कदीम फ़लसफ़े, जदीद फ़नून और अपनी शानदार सकाफती रिवायात का हसीन इम्तिज़ाज पेश करते हुए दुनिया भर के मुल्कों को अहमदाबाद आने की पुरजोश दावत दी। इसी तकरीब के जरिए 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों के 7 साल एडिशन की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज़ भी हो गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं के नुमाइंदे प्रिंस एडवर्ड्स ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम का बाज़ाब्ता ऐलान किया और तमाम शरीक ममालिक और खित्तों के खिलाड़ियों को अहमदाबाद आने की दावत दी। 11 रोज तक जारी रहने वाले सख्त मुकाबलों के बाद भारतीय खिलाड़ी 39 तमगों के साथ ग्लासगो से वतन वापस लौटे। नई दिल्ली से मुइनुद्दीन खान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया अमर। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों की सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुनशियात के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करना चाहिए। मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का डोनाल्ड ट्रंप से राबता, खित्ते में जारी कशीदगी रोकने के लिए मुजाकरात पर दिया जोर, इस खबर को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में हुए जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती आज।

0: सभी तैयारियां मुकम्मल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। रोजनामा इंकलाब की खबर है, उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास आज से, कई अहम बिलों को पेश किए जाने की उम्मीद।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुजाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए। और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुशतरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं माधुरी वशिष्ठ
1: और मैं रितिका गुप्ता
0: आपका स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है सप्ताह भर की सुर्खियां।
1: कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का गोल्डन दाव, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता।
0: जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एम्स जोधपुर के दीक्षांत समारोह में शिरकत की।
0: राजस्थान ने अंगदान शपथ अभियान में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का डीग, भरतपुर, उदयपुर और राजसमंद दौरा।
0: बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रम।
1: और जयपुर नगर निगम की अनूठी पहल, सावन के महीने में मंदिरों से बिल्व पत्र और फूल इकट्ठे कर जैविक खाद बनाई जाएगी।
0: कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की चेंटल रीड को 5-0 से हराया। अरुंधति की इस जीत को न सिर्फ उनके परिवार ने बल्कि पूरे प्रदेश ने खुशी और उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया है। अरुंधति प्रदेश से ऐसी पहली मुक्केबाज बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कोटा से हमारे संवाददाता आशीष मेहता ने बताया कि अरुंधति के जीतने के बाद शहर में जश्न का सा माहौल हो गया।
2: शहर की बेटी अरुंधति चौधरी की जीत पर शिक्षा नगरी कोटा में जश्न का माहौल है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीतकर अरुंधति ने पूरे देश के साथ साथ अपने शहर कोटा का भी सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। गलियों से लेकर चौराहों तक इस समय बस एक ही नाम गूंज रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच कोटावासी अपने इस स्वर्णिम पंच वाली गोल्डन गर्ल की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे हैं।
1: जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। न्याय तक आसान और जल्द पहुंच सुनिश्चित करने में मध्यस्थता की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्यस्थता, संवाद, सहमति और विश्वास पर आधारित विवाद समाधान की प्रभावी व्यवस्था है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में मध्यस्थता केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि संवाद और मध्यस्थता से वर्षों पुराने विवादों का स्थायी समाधान संभव होता है।
3: संवाद और मध्यस्थता की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हार जीत से आगे बढ़कर समाधान की बात करती है। ये केवल एक कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि हमारे समाज की वह सांस्कृतिक शक्ति है जो सदियों से हमें आपस में जोड़े हुए हैं। आज हमारी अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ, न्याय में देरी से आम आदमी का समय, पैसा और मानसिक शांति तीनों छिन जाते हैं। ऐसे समय में मध्यस्थता

0: एक वैकल्पिक मार्ग नहीं बल्कि समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एम्स जोधपुर के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उपाधियां तथा मेधावी छात्रों को पदक प्रदान किए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा शोध और नवाचार से स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने युवा डॉक्टरों से सेवा संवेदनशीलता और समर्पण की भावना के साथ समाज सेवा करने का आह्वान किया।
2: एम्स जोधपुर आज हमारे देश के टॉप 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट में से एक है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। यहाँ पांचवें दीक्षांत समारोह में 900 बच्चों को, जो जिसमें हमारे MBBS के डॉक्टर्स हैं, PG डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, सभी को उनके डिग्रीज और मेडल्स दिए गए हैं।
3: राजस्थान ने अंगदान शपथ अभियान में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो की संयुक्त निदेशक डॉक्टर चित्रा सिंह ने बताया कि अंगदान के

0: शोध और नवाचार से स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने युवा डॉक्टरों से सेवा, संवेदनशीलता और समर्पण की भावना के साथ समाज सेवा करने का आह्वान किया।
1: एम्स जोधपुर आज हमारे देश के टॉप 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में से एक है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। यहाँ पांचवें दीक्षांत समारोह में 900 बच्चों को, जो जिसमें हमारे MBBS के डॉक्टर्स हैं, PG डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, सभी को उनके डिग्रीज और मेडल्स दिए गए हैं।
2: राजस्थान ने अंगदान शपथ अभियान में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो की संयुक्त निदेशक डॉ. चित्रा सिंह ने बताया कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सोटो और शिक्षा चिकित्सा निदेशालय की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 117,000 से अधिक लोगों ने अंगदान की शपथ ली है।
3: इसी विषय में राजस्थान ने ऑर्गन डोनेशन प्लेजेस, यानी कि जो राजस्थान की जनता है उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि अगर ईश्वर कभी ना करे अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है, तो उनके ऑर्गन दूसरों को लगाए जा सके, ऐसा उन्होंने प्लेज किया है। राजस्थान ने 1,17,976 जो है प्लेजेस करके पहला स्थान प्राप्त किया है और इसमें झुंझुनू, उसके बाद हनुमानगढ़ और चूरू, ये सर्वोपरि प्लेज कराने में रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते सप्ताह विभिन्न जिलों के दौरे पर रहे, इनमें डीग, धौलपुर, भरतपुर, उदयपुर और राजसमंद शामिल हैं। उन्होंने प्रदेश को कई विकास कार्यों की सौगात दी। भरतपुर जिले के खेडली गुर्जर गांव से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि DBT की। मुख्यमंत्री ने मिशन पढ़ो अभियान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि स्कूलों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे।
4: बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने के अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है।
0: उन्होंने धौलपुर के फूलपुर स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।
2: राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इसके लिए सरकार जल्दी ही आरक्षित वार्डों की घोषणा कर देगी। इसके बाद तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना 15 अगस्त को जारी होगी।
5: देखिए, ये पहली बार है जब सारे नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। हालांकि होंगे क्रमिक रूप से, पहले नगरीय निकायों का चुनाव होगा और उसके बाद फिर हम पंचायती राज संस्थाओं का कराएंगे। जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव 2 चरण में कराएंगे और पंचायती राज के चुनाव 4 चरण में कराएंगे। और हम लोग जो है इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं कि ये चुनाव जो है बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से, नियमानुसार तरीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो।
0: प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर कराए जाएंगे। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा झुंझुनू के कमालसर गांव पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से चुनाव संबंधी सभी तैयारियां इस साल मार्च में ही पूरी कर ली गई थी। अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग के जिम्मे है।
6: देखिए, नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जितनी तैयारियां की जानी थी वो हम सब तैयारियां मार्च 2026 में पूरी कर। अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग है, दो को अपनी तैयारी करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जब भी सरकार से किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी और वो अगर अनुरोध करेंगे तो हम तत्काल उन्हें जो सहायता जो हमसे अपेक्षा रखते हैं।

0: वो हम तुरंत उपलब्ध करें।
1: प्रदेश में बाघ संरक्षण के लिए किए गए विशेष प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। जहां सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की दहाड़ गूंज रही है, वहीं करौली का कैला देवी अभयारण्य रणथंभौर से छोड़े गए बाघों के लिए सुरक्षित आशियाना बन गया है। रणथंभौर बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण को लेकर देश भर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पेश है सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट।
2: वर्ष 1973 में बाघ परियोजना घोषित होने के बाद से रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने और विश्व स्तर तक प्रसिद्धि के पीछे वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के कठिन परिश्रम मेहनत के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता भी प्रमुख है। वर्तमान में यहां 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीब 78 बाघ बाघिन और शावक विचरण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों फोटोग्राफर मूवी मेकर तथा रिसर्चर की पहली पसंद बन चुका है। वर्ष 2008 से राज्य के का मुकंदरा रामगढ़ विषधारी तथा करौली धौलपुर वनों में भी बाघों को विस्थापित कर रणथंभौर के अलावा पूरे राज्य के अन्य क्षेत्रों में बाघ संरक्षण सहित पर्यटन तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
3: जैसलमेर के रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र में पहली बार 3 गोडावण चूजों को नवनिर्मित रिवाइल्डिंग टनल में छोड़ा गया है। वन विभाग ने इसे गोडावण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। डेजर्ट नेशनल पार्क के ACF अशोक सिंह ने बताया कि रिवाइल्डिंग टनल का उद्देश्य चूजों को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाना है, ताकि उन्हें भविष्य में सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा जा सके और उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ सके।
4: जो ब्रीडिंग सेंटर्स के अंदर तैयार हुए हैं उनको फील्ड में रिलीज करने के लिए पहले रिवाइल्डिंग स्ट्रक्चर में ट्रांसलोड किया जाता है और ट्रांसलोड करने के बाद में लगभग उनको 4 महीने उसमें रखा जाएगा। उनको फील्ड में सर्वाइवल की ट्रेनिंग मिलने के बाद में फिर फील्ड में रिलीज करने का प्लान है। GIB के रामदेरा में जो ब्रीडिंग सेंटर है उसके पास में ही रिवाइल्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, जिसका पैमाना 160x64x14 मीटर है।
1: जयपुर को हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से सहकार वन विकसित किया जा रहा है। विभाग के सचिव समित शर्मा ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 88 बीघा भूमि उपलब्ध कराई है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये सहकार वन पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का केंद्र बनेगा।
5: तो बेसिकली एक एनवायरमेंटल सेंटर होगा जहाँ पे फ्रूट ट्रीज लगेंगे, जहाँ पे लोग जा सकेंगे, जहाँ पे एक वाटर बॉडी होगी, बच्चों के लिए स्थान होगा, पास में जो फॉरेस्ट की भी लैंड है तो वाइल्ड लाइफ के लिए भी स्थान होगा। तो जयपुर में एक ऐसा शांत प्राकृतिक सुरम्य रमणीय स्थल विकसित करने का प्रयास है जहाँ पे कि क्षेत्रवासी जा सकें, वहाँ पे अपने बच्चों को ले जा सकें, वॉकिंग ट्रैक भी होगा, अपने स्वास्थ्य में भी सुधार करें, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े और जयपुर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके, जयपुर के लंग्स की तरह वो एक्ट करे, लंग्स की तरह काम करे।
3: जयपुर नगर निगम की ओर से एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत सावन में मंदिरों से बिल्व पत्र और फूल इकट्ठे कर जैविक खाद बनाई जाएगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी से।
6: JMC की ओर से सावन महीने के हर सोमवार को निगम के इलेक्ट्रिक हुपर मंदिरों से जैविक पूजन सामग्री एकत्र करेंगे। इनसे मशीन और कंपोस्ट किट के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाएगी। शिवा अर्पणम नाम से तैयार इस खाद को विशेष पैकेट्स में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत शहर के तारकेश्वर महादेव, झारखंड महादेव, जंगलेश्वर महादेव सहित 5 प्रमुख शिवालयों से की जा रही है।
1: पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की नेहा सोलंकी ने सेरेब्रल पल्सी और अन्य न्यूरो मोटर समस्याओं से पीड़ित बच्चों के लिए खास कुर्सी विकसित की है, जिसे उन्होंने बिग चेयर नाम दिया है। इस कुर्सी के लिए उन्हें नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकॉग्निशन 2026 से सम्मानित किया गया। नेहा ने बताया कि ये बिग चेयर बच्चों को सुरक्षित और सही मुद्रा में बैठने में मदद करती है, जिससे वे पढ़ाई, थेरेपी और दैनिक गतिविधियां बेहतर ढंग से कर सकेंगे।
7: हमने एक कुर्सी बनाई है जिसका नाम बड़ी चेयर है। ये कुर्सी स्पेशल नीड बच्चे हैं उनके लिए काम आती है, जो बैठ नहीं सकते, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी और दूसरे न्यूरो मसल डिसऑर्डर्स के बच्चों के लिए काम आएगी। ये 4 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चों के लिए काम आने वाली कुर्सी है। इसमें बच्चा स्कूल जा सकता है, थेरेपी सेंटर में स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी कर सकता है, और सबसे ज्यादा ये कुर्सी बच्चों को घर में काम आ सकती है, जहां वो सबसे ज्यादा अपना समय बिताते हैं। उनके माँ बाप उनको कुर्सी पे छोड़ के अपने दूसरे घर के काम कर सकते हैं।

0: है।
1: श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से सोमवार को मुलाकात होगी। अब हमें इजाजत दीजिए। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है रामनाथ मीना।

0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल है। अब हमारे केंद्र से सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे, इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या से जुड़ा संशोधन विधेयक भी शामिल। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 संपन्न, भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीते। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। लोकसभा में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 और केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित कराने के लिए सदन में प्रस्तुत करेंगे। जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ जयपुर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हो गई। सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीशों विधि विशेषज्ञों और मध्यस्थता से जुड़े प्रतिनिधियों ने शांति मध्यस्थता और विधि के शासन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया। समापन सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि मध्यस्थता केवल विवाद समाधान का माध्यम नहीं बल्कि जीवन जीने का दृष्टिकोण है जो विश्वास और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करता है। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने न्याययान द डिजिटल वे ऑफ जस्टिस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। सम्मेलन में जयपुर घोषणा पत्र के माध्यम से न्याय तक आसान पहुंच, संवाद और मध्यस्थता को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई गई। अगले वर्ष इस सम्मेलन का आयोजन बहामास में होगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के बाद जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवाओं में नशा मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने और उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की दिशा में ये अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के जागरूक करना और स्वस्थ तथा सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
2: देशों के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अवसाद और अवसाद के साथ में नशा। किसी भी देश को यदि आगे बढ़ना है युवा शक्ति को सहेजने संवारने और मोटिवेटेड रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता

0: देश में बढ़ते हुए नशे के प्रभाव को कम करने और नशे से युवा दूर रहें, इस दृष्टिकोण से पिछले एक साल से देश के सरकार के विभिन्न मंत्रालय समन्वित रूप से प्रयास कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन के साथ 100 सप्ताह तक चलने वाला, लगभग 2 वर्ष तक चलने वाला एक महाअभियान, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, वो नशे से मुक्त हों, दूर रहें, इस दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर अभियान साबित होगा।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें ताकि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। कल उदयपुर में राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए हर 2 महीने में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परिषद की बैठक आयोजित की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उदयपुर जिले के प्रगतिशील किसान प्रेमचंद कपाया को जैविक, पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए किसान ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। उन्हें कोटा स्थित जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनर भी नियुक्त किया गया है, जहां वे प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 कल रात संपन्न हुए। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक जीतने में महिला खिलाड़ी पुरुषों से आगे रहीं। 13 स्वर्ण पदकों में से 8 महिला खिलाड़ियों के खाते में गए, जबकि 5 स्वर्ण पदक पुरुष खिलाड़ियों ने हासिल किए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान हासिल किया। भारतीय मुक्केबाजों ने सबसे अधिक 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। इस बार राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वहीं पैरा स्पर्धाओं में भी भारत ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए। समापन समारोह में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद को सौंपी गई। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज सावन के पहले सोमवार पर बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। जयपुर के साथ भीलवाड़ा और जैसलमेर में भी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र के अनुसार आज दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियां कुछ कम होंगी, जबकि जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने के आसार हैं। इधर सावन के पहले सोमवार पर जयपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्त भगवान शिव का जल, दूध, बिल्व पत्र और गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं। जगह जगह बम बम भोले और हर हर महादेव की जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़ियों के दल विभिन्न पवित्र सरोवरों से जल लाकर शिव जी का विशेष अभिषेक कर रहे हैं। कई प्रमुख मंदिरों में विशेष श्रृंगार और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। अजमेर में भी शिवालयों में वातावरण शिवमय बना हुआ है। ब्यौरा दे रही है हमारी संवाददाता।
2: तीर्थराज पुष्कर सहित जिले के शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। झरनेश्वर, शांतिश्वर, पुष्कर, चित्रकूट धाम सहित विभिन्न शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दूधाभिषेक कर श्रद्धालुगणों द्वारा धर्म लाभ उठाया जा रहा है। ब्रह्म सरोवर पुष्कर क्षेत्र में कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोषों के साथ शिव भजनों पर नाचते गाते कांवड़ियों द्वारा पवित्र जल पुष्कर सरोवर से ले जाकर विभिन्न शिव मंदिरों में शिवाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा भक्तों और कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलमदा हदीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
1: इस बीच पाली के डाक विभाग ने सावन के अवसर पर डाकघरों में न्यूनतम शुल्क पर गंगा जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि श्रद्धालु डाकघर से पूजा अर्चना के लिए आसानी से गंगा जल प्राप्त कर सकते हैं।
3: डाकघर के माध्यम से जो है गंगा जल बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस सावन में जो है शिव जी की विशेष आराधना गंगा जल के माध्यम से करें और गंगा जल जो है पवित्र गंगा जल डाकघर में बिक्री के लिए सभी जगह उपलब्ध है, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें सावन में।
1: राजस्थान पुलिस की ओर

0: आयोजित महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता रैलियां और जनसंपर्क कार्यक्रम रखे गए। अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा और सम्मान का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। जिला पुलिस अधीक्षकों ने महिला पुलिसकर्मियों, महिला बीट अधिकारियों और कालिका पेट्रोलिंग टीम के साथ संवाद कर उनके सुझाव भी लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे, इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या से जुड़ा संशोधन विधेयक भी शामिल। कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 संपन्न, भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार है मणिराम राठौड़।

भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनो जिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।

अभी आप मरुमंगल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनते हैं युगल गीत। कार्यक्रम का यह पहला नगमा लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़, और फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आशा भोसले, अमित कुमार, रीमा और साथियों को सुनते हैं फिल्म थानेदार में।

फिल्म संगीत में युगल गीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा एसपी बाला सुब्रमण्यम और राजेश्वरी की आवाज़। फिल्म का नाम है एक ही भूल।

श्रोताओं आइए सुने, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

अभी आप फिल्म संगीत में युगल गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। श्रोताओ, आज के फनकार हैं मोहम्मद रफी। ये कार्यक्रम का यह पहला नगमा फिल्म आन मिलो सजना से।

ये थे मोहम्मद रफी फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा में। आइए सुने फिल्म प्रतिज्ञा का ये नगमा।

हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। श्रोताओ, आज के फनकार कार्यक्रम में इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा। श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म दो रास्ते से।

आज के फनकार कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्मी नगमे। आज के फनकार हैं मोहम्मद रफ़ी, आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा। कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म कश्मीर की कली से।

श्रोता अभी आज की फनकार कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कभी कभी जो चाहते हैं हमें वो मिल नहीं पाता, कोशिश तो कर

करते हैं लेकिन जोर किस्मत पर चल नहीं पाता। रह जाते हैं कुछ ख्वाब अधूरे, इस जिंदगी में हर बार दिल की ख्वाहिश पूरी हो कि मुमकिन हो नहीं पाता। लेकिन श्रोताओं, हम तो यही चाहते हैं कि आप हंसते मुस्कुराते रहें और आपके सभी ख्वाब पूरे हो। तो लीजिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत की। आपकी फरमाइश का ये गीत पहला आपको सुनवाते हैं माचिस फिल्म से, आवाज़ हरिहरन की है।

फरमाइश आई है। गंज टूटवाला उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी और आलिया अंसारी की। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से हमारे श्रोता है अशोक ग्रोवर, परवीन, नीति, पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। ये फरमाइश आई है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मीढ़ा अलका मीढ़ा की। गांव खोखरावाली से विनोद बारसा, विशाल बारसा, विकास, रोशनी और शगुन बारसा की। नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी की। ये फरमाइश है कमल बालूजा, मधु, सागर, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक की। मजनू का टीला से ये हमारे श्रोता है। और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावंकर, निर्मला, विशाल। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिसान खान। और हमारे ये श्रोता है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। और सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। श्रोताओं, आपकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। ये गीत हमने लिया है तनु वेड्स मनु फिल्म से। आवाज़ शफकत अमानत अली की है। राजशेखर के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है कृष्णा ने।

श्रोताओं, इस गीत के लिए फरमाइश आई है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज आयुषी और रमेश चंद्र वर्मा की। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना मयंक और तन्वी गौहर और जयपाल यादव की। ये फरमाइश आई है सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बोरगावंकर, सुषमा प्रांजलि, सोहम सदानंद, विराज स्वीट, अंशुमन और बेबी ओवी की। ये फरमाइश आई है सिद्धार्थनगर दयारपुर भाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येले की। कोल सिटी बरकाकाना से ये हमारे श्रोता है अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। ये हमारे श्रोता है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रजवीन खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत येशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह की। ये फरमाइश है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद की। और ये फरमाइश है श्रीगंगानगर से नेकी राम बंसीवाल, जॉनी धनराज बंसीवाल की। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी की। लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। गीत हमने लिया है सौतन की बेटी फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की है। गीत को लिखा है सावन कुमार ने और संगीत वेदपाल का है।

इस गीत के लिए फरमाइश की है आप सभी ने। मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष विश्वजीत, मोहनलाल प्रजापति और रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। बड़ा बम चौक खांडवा मध्य प्रदेश से ये हमारे श्रोता है ममता, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, अनिल, गौरव, मानसी, कविता, अरोड़ा फैमिली से ये मोतीनगर नई दिल्ली से हमारे श्रोता है। और इस गीत की फरमाइश की है दत्रिंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा ने। गांव हांडी खेला

जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत, जसदीप, ये है गांव 4M से। और हमारे श्रोता है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेहन नाहटा, दीक्षा और कुश मूणत, कवर कॉलोनी बरवाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, चक 58NP रायसिंह नगर से, सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी, हरबंश लाल, बनवीर लाल, गोपी राम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी मलखट और मोनिका, और इनके साथ है गीतांजलि, नई बस्ती गंज डूडावाड़ा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी। लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए, आवाज़ लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की है। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोता अभी अनुरोध गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ से। इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश के गीत हम आपको सुनवाते हैं आपके व्हाट्सएप मैसेजों के माध्यम से। और ये मैसेज हमें मिला है गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक का। सूरतगढ़ से जगदीश ढूकिया, प्रमीला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु, ईवा। और ये फरमाइश है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल की। अमरपुर जालूखाट से जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति और राजेंद्र प्रजापति। गांव बनवाला हनवंत फाजलिका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और सारा मायल की। ये फरमाइश है ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी और हसन सिक्का की। ये फरमाइश है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की। तहसील भादरा अनूपशहर से हमारे श्रोता है गजानन सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, उपेश कुमार, मुरारीलाल शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, मदनलाल शर्मा, फूसाराम मिल, पंकज और हर्ष शर्मा की। ये फरमाइश है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार की। गांव हीरावाली फाजलिका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रिंडवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रंजीत राम किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भांदू जी की। और ये फरमाइश आई है बुलढाणा वडिंगश्री महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार की। लीजिए श्रोताओं आपकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनाते हैं। आवाज़ें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की। फिल्म का नाम है बंटी और बबली। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, इस गीत के लिए फरमाइश की है आप सभी ने गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी ने। और ये फरमाइश आई है शनि मंदिर चौक खांडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी और गौरव सैनी की। फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला जिला चुरू राजस्थान से ये हमारे श्रोता है संदीप सिंह, प्राची सोमल और कार्तिक सोनगरा। और ये फरमाइश है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर राही, श्रीमती सरिता गवानकर, प्रणीता सिद्धांत और अर्जुन गवानकर की। लखुवाली हेड मास्टर भवरलाल, कृष्णा, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहर, मुखनाराम। और ये हमारे श्रोता है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशप सिंह राहुल। गांव ढाणी लाल खा, जावेद खा, अरमान खा, इमरान खा, सीमा बानो, विनोद खा। और ये फरमाइश आई है रंगीनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। एटा रोड गंज डूडवारा मध्य उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम। दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पिंदमणि वर्मा और नोखीलाल। चकपंद्रा पीएसए सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्शपाल सिंह जोसन मेलबर्न, रोबिन सिंह जोसन विंगपुर। और ये श्रोता है श्यामलाल, राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार, चिमनलाल, मंडी केसरी सिंहपुर से। और ये श्रोता है छज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया। लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है बादशाह, आवाजें अलका याग्निक और अभिजीत की है, समीर की शब्द रचनाएं और संगीत अनु मलिक का है। तो लीजिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के लिए फरमाइश आई है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु, और ये फरमाइश है मारहरा दरवाज़ा एंड

से नब्बी हसन अब्बासी, सहनाज नवेद सुहेल, अनम यशफ अब्बासी की, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण कपिल और कुणाल मेहरा की। ये फरमाइश है रानी जम बिट्टू जम रानी बाजार बीकानेर से, और ये हमारे श्रोता हैं ग्राम हिंगड़ी आलोर जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ की, ग्राम फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, और ये श्रोता है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर तुषार सिंह और रिंकी शेखावत की। ये फरमाइश आई है बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय, अंजना रानी, रवि गर्ग, शिल्पा, और ये फरमाइश है नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजलिका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा की। श्रोताओं, ये फरमाइश है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की। आपकी पसंद का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, और ये कुछ फरमाइशें और आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी की। ये फरमाइश है नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ की। ये फरमाइश है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत और कमल साहनी की। ये है पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से हमारे श्रोता है, और उदयपुर राजस्थान से हमारे श्रोता है रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल, और ये फरमाइश है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत वर्मा और सोनम वर्मा की। तो लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

ये गीत आप सुन रहे हैं स्वीकार किया मैंने फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की है। निदा फाजली के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है उषा खन्ना ने।

श्रोताओं, इस गीत के लिए फरमाइश आई है चक छः MSR अनूपगढ़ से रमेश कुमार, रामदेव, अंशु, समीर, और ये फरमाइश है गंज टूडावाड़ा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज़, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख और अमन अफरीदी की। ये फरमाइश है गांव बांडीवाला फाजलिका पंजाब से ओम बागड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बांगड़िया की। ये फरमाइश है गांव कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, किलार सुथार, युवान, नरेंद्र सुथार और लक्षिता की। ये फरमाइश है नेहरू चौक पेठंड से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव और सोनल और सिया जाधव की। ये फरमाइश है गांव कुमारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम की। और इस गीत को सुनना चाहा है चक 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क। और ये फरमाइश है नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद्र, कपिल देव और हिमानी जाखड़। ये फरमाइश है वरवट बकाल बुल्ढाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या। और ये फरमाइश है वडिंग खेड़ा पंजाब से हमारे श्रोता है मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा की। ये फरमाइश है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहिर राही और मेराज जहां की। ये फरमाइश है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान बाबू की। रामगढ़ कैंट से हमारे श्रोता है महेंद्र मोदी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश की। ये फरमाइश है किंदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान, सबीहा जुबेर, अंजुमन खान की। और ये फरमाइश है सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख की। तो लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है हम हेरा ही प्यार के, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की है। तो लीजिए आपकी फरमाइश का ये गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, ये कुछ नाम हम लेना चाहेंगे जिन्होंने फरमाइश की है इस गीत के लिए। अलीका तहसील डब्बाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत सबरजीत और रानी सोनू रजनी, बलहोल नगर से हरीश शैरी, जगतार सुशील डेलू और राकेश चाहर। ये फरमाइश है पद्मा टॉकीज़ नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगला और राजेंद्र जी की। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना आशीष राजा, चैतन्य और मेघा की। ये फरमाइश है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश की। सब्जी मंडी बुलढाणा से हमारे श्रोता है शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मंजू, आयजा अनम और मुदसिर हुसैन की। ये फरमाइश है मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, सायना और निवान की। ये फरमाइश है ग्राम पंचायत बेठना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और बंटी बबली वर्मा की। ये फरमाइश है गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्रीकरणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव सेठी करणपुर, पाल मिस्त्री करणपुरी और पवन गुजर की। ये फरमाइश है मोहम्मद रफी अमरगढ़ सादुल शहर से हमारे श्रोता है कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर, गुरमून मान, कुलविंदर कौर और हरविंदर मान राज सिंह। तो लीजिए आपकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अनुरोध गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और उनके प्रसारण समय की। आज दोपहर 3 बजे श्रोता सुनेंगे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संसद समीक्षा के संपादित अंश श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 8 बजे, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

पब्लिक स्पीक कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात्रि 9:30 पर। खेल जगत कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 10:00 आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से, और आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी श्रोता सुनेंगे आज शाम 6:40 पर। अब से कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर, और इस कार्यक्रम में आज श्रोता सुनेंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में गाई कुछ चुनिंदा गजलें, और सुगम संगीत का समय रहेगा आज रात्रि 9:15 पर। खेत खलियान का समय रहेगा 12:50 पर, और इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा मूंगफली की फसल में सामयिक कार्य, और चौपाल का समय रहेगा आज शाम 7:00। इस कार्यक्रम में आज के विषय रहेंगे बिजली के उपकरणों की देखभाल, सब्जियों में कीट नियंत्रण, मित्र कीटों के बचाव हेतु उपाय, और मौसम और बाजार भाव संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। महिला जगत का समय रहेगा 12:05 पर, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे व्यक्तित्व लक्ष्य निर्धारण, बातों की फुल्की झूठ बोलने की आदत, रेडियो का जनसंचार में योगदान, और कैसे है मखाना व्रत का सुपरफूड और उसके स्वास्थ्य लाभ आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी, और साथ ही होंगे कुछ चुनिंदा गीत संगीत। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति मधुलता पुरोहित की रहेगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं 2:30 पर, रात्रि 10:30 पर और रात्रि 8:15 पर। एक ही फिल्म से जानकारी और गीत होंगे। सिराकी का समय रहेगा आज शाम 6:05 पर, और युवाणी श्रोता सुन सकते हैं आज शाम 5:00। श्रोताओं, हमारी आज की सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर, और ये थे हमारे आज की सभा के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त स्मिति का सहसे नमस्कार। लीजिए श्रोताओं, पहला गीत आपको सुनवाते हैं।

योद्धा फिल्म से अभी ये गीत सुन रहे हैं आप। इस गीत को लिखा है मनोज मुत्तशिर ने, संगीत तनिष बागची का है और आवाज़ बी पारिक के साथ साथ और भी साथी कलाकारों की है।

श्रोता अभी सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुन रहे हैं और अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत को लिखा है मनोज मुत्तशिर ने, संगीत आरको का है और फिल्म का नाम है भुज।

लीजिए अब सुनते हैं रंग दे बसंती फिल्म से अगला गीत, दलेर मेहंदी और चित्रा की मिलीजुली आवाजों में। गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत ए आर रहमान का है।

अभी ये गीत आपने देशप्रेम फिल्म से सुना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इसी गीत के साथ सैनिकों के लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय दोपहर की 12:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में गाई कुछ चुनिंदा गज़लें।

0: श्रोता, अभी सुगम संगीत के अंतर्गत भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में गायक कुछ चुनिंदा गजलें सुन रही थी। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेत खलियान, और आज इस कार्यक्रम का विषय है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति और इसके लाभ।
1: किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के द्वारा किए गए पानी को ज्यादा उपयोग करके खेती में सिंचाई करी जावे। सिंचाई पद्धति के द्वारा बुंटांगी वास्तविक पानी की मांग अनुसार पानी की सही मात्रा बूंद बूंद के रूप में पौधे की जड़ा में दी जाए, और जरूरी होने पर घुलनशील पोषक तत्व और रासायनिक खाद पानी में घोल के समान मात्रा में बुंटे की जड़ा तई पुगाई जाए। इन सिंचाई पद्धति में किए गए पानी ने बुंटे की जड़ा तई ड्रिपर्स, माइक्रोस्प्रिंकलर, माइक्रोस्पेयर आदि इमिशन डिवाइस यानी कि उत्सर्जक युक्ति द्वारा भूमिगत पाइप के द्वारा बुंटे की जड़ा करने पुगाई।

जय। आज सिंचाई पद्धति किसान भाइयों मुख्य तौरों फल बागान और कतार में बोई जाने वाली सब्जियां और गन्ने की सिंचाई में ज्यादा उपयोगी पाई गई है। बात करें किसान भाइयों बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियों फसलों की उपज वृद्धि और पानी की बचत की, तो अंगूर की फसल में 60 ले गए 70% तक पानी की बचत हुआ है और उपज की जी की वृद्धि है वह 30% तक रे हुए। अनार की फसल में 50-55% तक पानी की बचत और 30% उपज में वृद्धि हुए। अमरूद की बात करा तो इन फसल में 55 ले गए 60% तक पानी की बचत और 25%

हैं 50-55% तक पानी की बचत और 30% उपज में वृद्धि हुए। अमरूद की बात करा तो इन फसल में 55-60% तक पानी की बचत और 25% उपज की वृद्धि हुए। नींबू की बात करा तो इनमें 81% तक पानी की बचत और 35% तक के उपज में वृद्धि हुए। टमाटर की बात करा तो 30-79% तक पानी की बचत रहे और 5-43% उपज में वृद्धि हुए। बैंगन की बात करा तो इंगमा 55-80% तक पानी की बचत, 17-5% तक उपज वृद्धि हुए। आलू की बात करा तो इंगमा 46% तक उपज वृद्धि रहे। बात करा किसान भाइयों पत्ता गोभी की तो इंगमा 39-60% तक पानी की बचत और 23-4% तक उपज की वृद्धि हुए। और किसान भाइयों बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियों भिंडी में 49-84% तक पानी की बचत और 7-13% तक उपज में वृद्धि हुए। अब बात करें किसान भाइयों के बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का मोटा मोटा लाभ किए है तो किसान भाइयों औसतन 30-35% तक पानी की बचत हुए और इंगमा किए गए बचेड़े पानी 30-35% ज्यादा माटी में अपना सिंचाई कर सका। और किसान भाइयों औसतन 10-20% तक उपज में वृद्धि होंगे सागे सागे फसल की जगह गुणवत्ता है बिंगमा भी किए सुधार हुए। पार्टिगेशन के द्वारा किए गए उर्वरक और घुलनशील पोषक तत्वन गो आपा समुचित उपयोग कर सका। सागे सागे किए किसान भाइयों बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियों खरपतवार पर भी नियंत्रण रहे क्योंकि पानी की जगह बूंदा है वह सीधी बुनटे की जड़ा तय जावे तो आसपास पानी को फैलाव को रहे यूं किए गए खरपतवार पैदा ही को नहीं हुए। और सागे किसान भाइयों की उबड़ खाबड़ की जमीन है यानी कि ऊंची नीची जमीन है और क्षारीय जमीन है बिंगमा भी किए का बहुत ही उपयोगी साबित हुई है और सागे अगेती फसल प्राप्ति में भी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति बहुत ही सहायक है। सागे अपना टाइम की बचत हुए क्यों आपा तो बा मशीन चला गए और सारा में बाग में या फसला में कट्ठो पानी आपा लगा सका इन खातर के ज़्यादा आदमियों की जरूरत भी कौन पड़े और खारे पानी में भी यह किए गए कारगर साबित हुई है। और सागे किए गए अपनी ऊर्जा की बचत रहे बूंद बूंद सिंचाई माटी में नमी और उर्वरकता जगी है वह किसान भाइयों बनी रहे। और किसान भाइयों बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपने खेत में लगाने खातर सरकार अनुदान भी जारी करे और इन खातर आवेदन पत्र के सागे जरूरी कागज जिया जमा मंदी है पासबुक खसरा गिरदावरी और खेत का स्वामित्व का जगह दस्तावेज है सागी नोट ड्यूज प्रमाण पत्र और खेत के नक्शे की प्रति और जो को अपना उद्देश्य है बिंगो अनुमान पत्र आदि संबंधित कृषि विभाग कार्यालय में या फिर ई मित्र के माध्यम अपना प्रस्तुत कर देना चाहिए। और किसान भाइयों उद्यान विभाग कृषि विभाग के अधिकारियों अनुदान की जानकारी बाबत अपन के टेमो टेम संपर्क करना चाहिए और सागे कृषि पर्यवेक्षक है वह भी आप की एक जानकारी प्राप्त कर सका और कृषि विभाग की वेबसाइट है बी पर भी आप जानकारी ले सक। अब बात करें किसान भाइयों फुहारा सिंचाई पद्धति की तो फुहारा सिंचाई पद्धति एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसके द्वारा पानी ने हवा में छिड़काव कर जावे और वो पानी जमीन पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरे। पानी को छिड़काव दबाव द्वारा छोटी नोजल या ओरिफिस द्वारा करो जावे इंगमा किया के न तो पानी को जमा हुए और न ही माटी यूं दबे और यूं जमीन और हवा को सही अनुपात बने रहे और बीजा को अंकुरण भी जल्दी हुए। किसान भाइयों फुहारा पद्धति में पानी की 30-35% तक बचत हो जावे और आविधि बलुई माटी ऊंची नीची जमीन और जटे पानी कम मात्रा में उपलब्ध हुए बठा उपयोग करी जावे। इन विधि के द्वारा किए गए कणक कपास मूंगफली और कई दूसरी फसला में सिंचाई किसान भाई कर सकें। फुहारा सिंचाई पद्धति के लाभ की बात करा तो सिंचाई का परंपरागत तरीका के मुकाबले इन पद्धतियों सिंचाई करने पर मात्र 50-70% पानी की आवश्यकता हुए। फुहारा पद्धतियों जमीन ने समतल करने की जरूरत को नहीं हुए और ऊंची नीची जगह वाला जगह भूभाग है बंग में भी यह पद्धति कारगर साबित हुई है। फुहारा पद्धतियों सही टाइम पर जुताई और पौध रोपाई को कार्य भी किसान भाई कर सके। किसान भाइयों अब बात करा सोलर पंप की बूंद बूंद सिंचाई पद्धति और फुहारा सिंचाई पद्धतियों भी आप जोड़ सका। किसान भाइयों पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को निरंतर दोहन और पर्यावरण पर इंग उपयोग होने वाला जिसका दुष्प्रभाव है वह बचाव खातर सौर ऊर्जाओं बिजली पैदा करके खेती और बागवानी में सोलर पंपों सिंचाई किसान भाई करण लाग रहे जिसको कम खर्च करके किसानों के आय में वृद्धि होने लाग रही है। सोलर पंप के उपयोग न केवल डीजल और बिजली की बचत हुए बल्कि सोलर पंप के सागे सागे बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली और फुहारा प्रणाली ने जोड़न करोड़ों घन मीटर पानी की बचत भी होने लग रही है और बचेड़े पानी ने सिंचाई पानी के अलावा अतिरिक्त माटी में अपना सिंचाई कर सका। सोलर पंप की तकनीकी सफलता और टिकाऊपन निश्चित करने खातर किए गए इन्हें अति आधुनिक खेती और उद्यानिकी गतिविधियों के सागे सागे

0: पानी संचय और संरक्षण तकनीक सागे भी जोड़े जाने लग रही है। और इन अलावा सोलर पंप उद्यान, सेडनेट हाउस, पॉली हाउस, डिग्गी पानी होज, खेत तलाई, जल संग्रहण ढांचो और राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना के सागे प्रभावी रूप में किसान भाइयों जोड़े गए है। और सोलर पंप में सूरज की किरणा सीधी बिजली या ऊर्जा बनाने को काम सोलर पैनल द्वारा करो जावे। इन सागे एसी या डीसी मोटर लगेड़ी हुए जकी किया कि सौर ऊर्जाओं पानी खींचने को काम करे। सोलर पैनल दिन रात पूरी कुशलता के साथ काम कर सके। इन खातर किया कि पैनल तक सूरज की किरणा हमेशा सीधी पुगनी चाहिए। और जमीन पर लागन वाला यानी सरफेस और पानी अंदर काम करने वाला सबमर्सिबल पंप ए लगभग 250 फीट की गहराइयों भी पानी उठा सके और एक दिन में लगभग 1,00,000 लीटर तक पानी खींच सके। हाँ, सोलर पैनल पर इंगो मॉडल नंबर, क्रम संख्या, कंपनी का नाम, उत्पादन की तारीख आदि सूचनाएं अंकित रहे। जखों किया कि इंगमा की भी प्रकार की छेड़खानी कौन कर सके कोई। और सौर ऊर्जा पैनल ने लगाते टाइम एंटी थेफ्ट नेट को इस्तेमाल करो जाओ। जखों किया गया इन पर लगाया गया नट बोल्ट ने खोलियो कौन जा सके। और इन उपायों किया कि सोलर पंप ने जरूरी सुरक्षा जगी है बा प्रदान करेड़ी है। आपातकालीन किसान भाइयों, सोलर पंप का फायदा की तो सोलर ऊर्जा पंप को सारो मोटो फायदा वही है कि इंगमा लगाने के बाद किसान भाइयों ने ऊर्जा का महंगा स्रोत पर निर्भर को रहना पड़े। और इंग माध्यमों किया कि दूर दराज के क्षेत्र में इन्हें लगा गए फसल में पानी आप उगा सका और पानी के बहाव ने नियंत्रित कर सका। और सोलर पंप के इस्तेमाल में किसान भाई ऊर्जा खपत के मामले में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और सोलर पंप सूरज की किरणों उत्पन्न ऊर्जाओं चलाया जावे जो कि बिजली और ईंधन चलन वाला ऊर्जा स्रोतों पर किसान भाइयों की निर्भरता ने किएगा कम कर दी है। इन चलान में धन की भारी बचत हुए और किसान भाइयों की आय में भी वृद्धि हुए। और सोलर पंपों के इन्हें ऑपरेट करना बहुत ही आसान हुआ और इनमें बहुत ही कम कल पुर्जा लागेड़ा हुआ है। इन अलावा इनमें बिजली चलने वाला पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तरह बिजली कटौती, कम वोल्टेज, बिजली के बिल भर की कोई समस्या कौन रहे। और किसान भाइयों, सोलर पंप दूसरा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तरह ध्वनि और वायु प्रदूषण कौन करे, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल हुए और क्योंकि यह किसे भी इसे ईंधन पर कौन चला जगह के प्रदूषण की वजह बनता हुआ है। सोलर पंप के माध्यम किए कि कोई भी हानिकारक पदार्थ को निकले जो को पर्यावरण नुकसान पुगावे। और बठई पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर्यावरण खातर किए घातक हुए और वह सोलर पंप किसान भाइयों खातर किए बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभरियो है। इंगला किसान भाइयों, सोलर पंप को इस्तेमाल की प्रकार को न्यारो खर्चो को नहीं आवे और रख रखाव भी बहुत ही कम हुआ है। और इसे में किसान भाई सोलर पंप ने आपके उपयोग के बाद बचड़ी सौर ऊर्जा ने ग्रिड में बेच भी इसके और इन खातर किया लागत के हिसाब में काफ़ी किफायती रहे। तो किसान भाइयों, आज गोटे मितो ही देव आ गया। राम राम सा, राम राम।
1: श्रोता अभी खेत खलियान कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होने पर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय एथलीट्स की प्रशंसा की। इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी सदस्यों से अपनी अपनी सीटों पर लौटने और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने के कारण सदन को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज जयपुर दौरे पर हैं। उन्होंने खासाकोटी में प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया है। अब

0: पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने युवाओं से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी भावनाओं को समझती है। श्री अठावले ने कहा कि राजस्थान में 3,84,00,000 जनधन खाते खोले गए हैं और 2,51,00,000 लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला है। उन्होंने राजस्थान सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सभी वर्गों के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने भूमिहीन परिवारों को 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए समिति गठित कर सर्वे कराने का सुझाव दिया और कहा कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री को पत्र भी सौंपेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि समाज में अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अंगदान मानवता के लिए अपने आप को समर्पण करने से जुड़ा महादान है। राज्यपाल आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंगदान की सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के भीतर का डर है। इसे भगाने और इस संबंध में लोगों को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने अंगदान के साथ स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भी अभियान चलाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में श्री बागड़े ने अंगदान जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने वाले चिकित्सकों और अंगदान जागरूकता प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आगामी पर्यटन सत्र के लिए ऑनलाइन एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए पर्यटन सत्र के तहत 31 दिसंबर तक की सफारी बुकिंग 1 अगस्त से की जा रही है। अग्रिम बुकिंग को लेकर देश विदेश के पर्यटकों में उत्साह है। नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पर्यटक आसानी से अपनी सफारी बुक कर रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: एडवांस ऑनलाइन बुकिंग के पहले 2 घंटे में ही 40,000 से अधिक पर्यटकों ने अपनी बुकिंग की, जिसमें 14,000 विदेशी पर्यटकों के टिकट बुक हुए। प्रक्रिया के दौरान पोर्टल पर करीब 20 लाख संदिग्ध अटैक प्रयासों, 150 से अधिक संदिग्ध आईपी और 2 करोड़ से अधिक फर्जी अनुरोधों को सुरक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोका। 200 से अधिक विदेशी पर्यटकों ने स्वयं की ही आधिकारिक पोर्टल पर अपनी सफारी बुक की है। इसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड सहित कई देशों के पर्यटक शामिल हैं। भारी डिजिटल ट्रैफिक के बीच पोर्टल का सुचारू संचालन इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: सावन के पहले सोमवार पर आज प्रदेश की प्रमुख शिवालयों सहित अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। आज भगवान शिव का जल, दूध, बिल्व पत्र और गंगा जल से विशेष अभिषेक किया जा रहा है। कई मंदिरों में भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। जयपुर के प्रमुख ताड़केश्वर महादेव और झारखंड महादेव सहित झुंझुनू के प्रसिद्ध बावलिया के बगीचे स्थित शिव मंदिर, अलवर के त्रिपोलिया मंदिर, बालोतरा के हल्देश्वर महादेव, सवाई माधोपुर के घुश्मेश्वर महादेव और बारा के मनिहारा महादेव मंदिर में कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम हाजिर हैं कुछ अच्छी अच्छी बातों और मीठे मज़ेदार गीतों के साथ। और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो सखी मधुलता पुरोहित। और कार्यक्रम की शुरुआत इस बात के साथ कि फूलों की खुशबुओं की कलियों की बात करें, फूलों की खुशबुओं की कलियों की बात करें, बस मोहब्बत की और मोहब्बत की बात करें।

और सखियों, गीत के बाद अब बात हमारे बच्चों की करते हैं। सखियों, बच्चे होते हैं वो गिली, जो गीली मिट्टी होती है उसकी तरह होते हैं, और जैसे गीली मिट्टी को हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, वैसे ही हमारे बच्चों को भी ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं, उन्हें हम जैसे चाहें व्यक्तित्व दे सकते हैं। बहनों, बच्चे जो हैं वो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम उन्हें प्यार देते हैं, उनकी हर खुशी का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन प्यार और स्नेह के साथ साथ उन्हें अनुशासन सिखाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। लेकिन अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि हम हर समय उनके साथ सख्ती से ही पेश आएं। प्यार के साथ भी अनुशासन सिखाया जा सकता है, क्योंकि अनुशासन का मतलब डांटना, डपटना या डराना नहीं होता है, बल्कि सही दिशा दिखाना होता है। अगर हम छोटी छोटी बात पर उन्हें डांटेंगे तो वो डर तो जाएंगे लेकिन सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हम उन्हें समझाएं शांति और प्यार के साथ। और बहनों, जब विशेषकर बात जब हमारे किशोर वय बच्चों की हो, यानी टीनेजर्स की हो, तो हमें बड़ी ही संजीदगी से सोचना पड़ता है। किशोरावस्था यानी बचपन और युवावस्था के बीच का वो समय जब बच्चों में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के बदलाव आते हैं। इस उम्र में वो कई नई बातें सीखते हैं, अपने विचार बनाते हैं, और कभी कभी बिना किसी वजह के चिड़चिड़े या उदास भी हो जाते हैं। तो ऐसे समय में बच्चों को डांटने या हर वक्त हर बात पर रोकने की बजाय उन्हें समझने की जरूरत होती है। उनकी बात ध्यान से सुनिए, उनकी भावनाओं का सम्मान कीजिए और उनसे दोस्त की तरह खुलकर बात कीजिए। उनकी छोटी छोटी सफलताओं की तारीफ भी करें, लेकिन गलती होने पर प्यार से समझाएं। उन पर अपनी इच्छाएं थोपने की बजाय उनकी रुचियों और सपनों को भी महत्व दें। अब देखिए, अगला गाना हम उन्हीं की पसंद का बजा रहे हैं।

0: और सखियों, कार्यक्रम में अभी है एक छोटे से अंतराल का वक्त, अंतराल के बाद फिर से आते हैं।
1: भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सखियों, अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। सखियों, बरसात का मौसम अभी चल रहा है और बरसात जो है वो हर किसी के दिल में एक अलग एहसास जगाती है, और इन्हीं एहसासों को शब्दों में पिरोने का सबसे सुंदर तरीका होता है शायरी। तो पेश है आपके लिए कुछ शेर। हर मौसम बरसात का मौसम, बेकाबू जज्बात का मौसम। हर मौसम बरसात का मौसम, बेकाबू जज्बात का मौसम। मेरी बांसुरी उसके लबों पर, हो तो हो नगमात का मौसम। बात पते की कह जाता है, बात बात में बात का मौसम।

सखियो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर झूठ बोल देते हैं। छोटी छोटी बातों में भी उन्हें एक आदत सी होती है कि झूठ ही बोलना है। ज़रूरी नहीं कि उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है या उन्हें ऐसा करने से कोई फ़ायदा मिल रहा है। ऐसा नहीं होता, फिर भी वो झूठ बोलते हैं। बस एक आदत सी उन्हें लग जाती है बात बात में सच छुपाने की। कई बार किसी की मजबूरी भी हो जाती है या किसी काम की जिम्मेदारी से बचने के लिए भी लोग झूठ बोल जाते हैं। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, लेकिन झूठ बोलना एक बुरी आदत होती है। एक बार के लिए हमें लगता है जैसे हम झूठ बोलकर बच जाएंगे या कोई काम हम बना लेंगे, लेकिन कभी ना कभी सच सामने तो आता है और फिर वो काम बिगड़ जाता है। उस इंसान की इमेज भी खराब हो जाती है, भरोसा टूट जाता है और हमेशा के लिए वो अपना विश्वास खो देता है। और एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो फिर उसे जीतने में बहुत समय लग जाता है। ऐसा भी नहीं है कि एक झूठ बोलने से ही काम चल जाए। एक सच को छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़ जाते हैं और वो एक जाल में फंसता चला जाता है। और बहनों, याददाश्त भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए झूठ बोलने वाले की, क्योंकि कब कहाँ किसको क्या झूठ बोला था याद भी तो रखना पड़ता है। तो झूठ बोलने से फायदे की जगह नुकसान अधिक होता है, इसलिए झूठ से हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। इससे समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है, लोग हम पर विश्वास करते हैं। और वैसे भी अगर कोई गलती कहीं कभी हो भी जाए तो उसे स्वीकार कर लेने में ही बड़प्पन होता है, वो सुधर सकती है। लेकिन झूठ बोलकर उसे छुपाना एक और गलती हो जाती है। अब सच बोलने का मतलब ये भी नहीं कि हम कभी भी कुछ भी किसी को कह दें और हमेशा कड़वा ही बोलें। सच भी प्यार से, सम्मान से और सही समय पर अगर कहा जाए तो वो बुरा नहीं लगता। हमारे रिश्तों में वो और भी मजबूती लाता है। इसलिए आज से ही संकल्प लें कि हमेशा सच ही बोलेंगे और सच्चाई का साथ भी देंगे। इससे हम अपने आप को मानसिक रूप से हल्का और मजबूत महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे और बाकी लोगों के साथ ही अपनी नज़रों में हमारा सम्मान भी बढ़ता जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात होती है बहनों।

और सखियों, अब बात हमारे व्यक्तित्व की। तो हम सब अपने जीवन में कई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे मुझे आगे चलकर क्या करना है, क्या बनना है, किस तरह की पढ़ाई करनी है या कोई काम सीखना है। ये लक्ष्य छोटे भी होते हैं और कई बार बड़े भी होते हैं। छोटे लक्ष्य जैसे आज मुझे घर का कोई विशेष कार्य निपटाना है, जैसे घर का कोई विशेष कोना साफ करना है या व्यवस्थित करना है, बच्चों के लिए कुछ खाना विशेष बनाना है, कुछ करना है उनके लिए, उन्हें कुछ सिखाना है। और ऐसे ही कितने ही काम हम सोच कर रखती हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करती हैं। कई बार लक्ष्य बड़े भी होते हैं, जैसे हमें क्या करियर बनाना है, हमें कितना बड़ा घर बनाना है, कब बनाना है, गाड़ी कौन सी लेनी है। लेकिन कुछ लक्ष्य हमें हमारे खुद के लिए, यानी अपने आप के लिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने के लिए भी बनाने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और आप चाहती हैं कि मुझे शांत रहना सीखना है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे आज किसी से मीठे शब्दों में बात करनी है, बिना वजह किसी की आलोचना नहीं करनी है, और अगर कोई कुछ छोटी मोटी बात अगर कह भी देगा तो मुझे रिएक्ट नहीं करना है, या मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो इस तरह से वो चीज़ हमारी आदत में आ जाती है। ये लक्ष्य हम बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक में आत्मविश्वास की कमी महसूस करती हैं, बोल नहीं पाती हैं, झिझक होती है, तो उसे दूर करना है और हर दिन आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो पंक्चुअल नहीं होते हैं, हमेशा देर हो जाती है उन्हें किसी भी काम को करने में, तो उठने में, सोने में।

0: कोई भी काम करने में हमेशा ऐसे लगता है कि देर हो गई, समय पर नहीं हो पाया, तो वो लोग अपना लक्ष्य बना सकते हैं कि अपने आप को व्यवस्थित कैसे रखें, उसकी प्रैक्टिस करें, उन्हें सुव्यवस्थित अपने आप को रखने की कोशिश हर समय करनी चाहिए। सखियों, किसी भी इंसान का व्यक्तित्व सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने या सुंदर दिखने से अच्छा नहीं होता, बल्कि हमारी अच्छी सोच, अच्छी आदतों और दूसरों के प्रति हमारे अच्छे आचरण और सम्मान से अच्छा होता है। कोई भी इंसान जन्म से परफेक्ट नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान कहा भी गया है। इसलिए अगर हम अपने लिए छोटे लक्ष्य बनाएं और उन पर लगातार काम करें, तो हम जैसे चाहें वैसे बन सकते हैं, जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं।
1: I said name's Aditya. You can call me Adi.
2: I'm Panna.
1: Hi. Feel like a spin? Upar chalogi?
2: Kahan?
1: Mars. Mars pe chalenge.
2: His plane mein.
1: Of course. Don't underestimate this fly. It can fly really high. Chalo.

सखियों, हम और आप जिस माध्यम से मिलती हैं, बातें करती हैं, वो है हमारा प्यारा साथी रेडियो। जी हाँ, रेडियो की बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं। और सबसे बड़ी खूबी पता है क्या होती है? कि ये सुनने वाले की कल्पना को उड़ान देता है। यहाँ आवाज़ ही तस्वीर बन जाती है। शायद यही वजह है कि रेडियो सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे हमारे दिलों तक पहुंचता है। बहनों, रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हमारा सच्चा मित्र भी है, क्योंकि ये बिना किसी व्यवधान के हर दम हमारे साथ चलता है। ना ये समय मांगता है, ना आंखें, बस सुनते रहिए और काम करते रहिए। और विशेष तौर पर हम महिलाओं के लिए तो रेडियो बड़े ही काम का है। सुबह का काम करते समय, खाना बनाते समय, और यहाँ तक कि पढ़ाई करते समय भी अगर धीमी आवाज़ में रेडियो चालू रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमारा मनोरंजन भी होता रहता है, अच्छी अच्छी नई नई जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं, चाहे वो घर गृहस्थी की हों, स्वास्थ्य संबंधी हों, सरकारी योजनाओं की हों, या फिर कानूनी अधिकार और आत्मनिर्भर बनने की। बहनों, आज मोबाइल और इंटरनेट का दौर है, लेकिन रेडियो आज भी अपनी जगह कायम है। आज भी ये आवाज़ उतनी ही भरोसेमंद और अपनापन लिए हुए लगती है जितना पहले के समय में।

बहनों, बात हम रेडियो की कर रहे थे और अब जानते हैं कि रेडियो का जनसंचार में क्या योगदान है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जनसंचार का मतलब क्या होता है। जनसंचार का मतलब है एक संदेश को एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना। और इस काम को रेडियो ने बरसों से बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाया है। देश दुनिया की खबरें हों, मौसम की जानकारी हो, किसानों के लिए खेती की नई तकनीक या विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हों या फिर हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी बातें, रेडियो हर उम्र और हर वर्ग के लोगों तक जानकारी पहुंचाता है, चाहे वो गांव हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या समुद्र। इसकी पहुंच सब जगह होती है और बहनों, इसके लिए किसी बड़े तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक रेडियो सेट काफ़ी है। बिना बिजली, बिना इंटरनेट, बिना किसी तार के इसको हम कहीं भी सुन सकते हैं। और हाँ, बिना किसी रिचार्ज या फीस के भी। किसी तरह की आपदा या मुश्किल समय

में भी रेडियो हमारे सच्चे साथी की तरह साथ निभाता है और सही, सटीक और विश्वसनीय सूचना और जानकारियां हम तक पहुंचाता है, जिससे हम कई मुश्किलों से बच सकते हैं। तो ऐसा है हमारा रेडियो। आइए अगला गीत सुनते हैं।

सखियों, जब भी हम व्रत करती हैं तो एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा क्या खाया जाए जिससे पेट भी भरा रहे, शरीर को भरपूर ऊर्जा भी मिले। तो ऐसे में एक विकल्प हमारे पास हो सकता है मखाना, जिसे हम व्रत का सुपर फूड कह सकते हैं। मखाना हल्का, सुपाच्य और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे खाने से लंबे समय तक हमारा पेट ऐसे लगता है जैसे कि भरा हुआ है और हमें भूख महसूस नहीं होती, और इससे शरीर को लगातार एनर्जी भी मिलती रहती है। तो अगर आप व्रत में तली भुनी चीज़ों की जगह हल्का भोजन चाहती हैं तो थोड़े से घी में भुना हुआ मखाना, मखाने की खीर या दही के साथ मखाना एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प हो सकता है। हाँ, अगर आप वजन नियंत्रित करना चाहती हैं, वजन नियंत्रित रखना चाहती हैं, तो फिर ज़्यादा घी का इस्तेमाल

नहीं करें। मक्खन या चीनी को भी आप अवॉइड ही करें। सादे या हल्के मसालों के साथ खाया गया मखाना सबसे अधिक लाभकारी रहता है। और इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं।

और सखियों कार्यक्रम का समय अब पूरा होता है, अब समय है आपसे आज्ञा लेने का। तो दीजिए अपनी सखी मधु को आज्ञा। नमस्कार।

0: inflow. Our correspondent reports that the state government has announced financial assistance for damaged houses and crop losses as restoration gathers pace.
1: The flood situation in Odisha continues to improve as water has receded in all major rivers and their tributaries, including the Mahanadi. With inflow into the Hirakud Reserve declining, authorities have closed 3 spillway gates, reducing flood water discharge to 19 gates from 22 earlier. The state government has begun a detailed assessment of flood damage and announced financial assistance of up to 1,20,000 rupees for families whose houses were completely destroyed. Compensation has also been announced for partially damaged houses and crop loss. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: News just in, the Lok Sabha has been adjourned till 11 a.m. tomorrow. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. Heavy rainfall is also expected tomorrow over Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have congratulated the Indian contingent on its impressive performance at the Glasgow Commonwealth Games by bringing 39 medals. President Murmu expressed confidence that the sportspersons of the country will bring greater glory to the nation in the future international events. We have news just in, the Lok Sabha has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in 3 assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित बिहार गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित और अरुणाचल प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका अब समाचार विस्तार से विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट
3: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर

0: दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
1: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े तो

0: समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही DK शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की

0: आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5,00,000 से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत सुनते हैं याराना फिल्म से। आवाज किशोर कुमार की है, अनजान की शब्द रचना है और तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने। तो लीजिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, अनामिका फिल्म से। गीत को लिखा है मजरू ने और संगीत में पिरोया है आर डी बर्मन ने।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश में आइए सुनते हैं अनुरोध फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वो कौन थी? चीहा इस फिल्म से अभी ये गीत सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत मदन मोहन ने दिया था। लीजिए श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवाते हैं नदिया के पार फिल्म से। गीत संगीत रविंद्र जैन का है और आवाज़ें हैं हेमलता और जसपाल सिंह की।

लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का आखिरी नगमा बेमिसाल फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत आर डी बर्मन का है।

श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑनएआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। भारत में आधार के जरिए तस्दीक शुदा आजादियां देने में 5 लाख से ज्यादा वादे पूरे किए गए। आजा बदलने की तादाद के एतबार से भारत आलमी सतह पर तीसरे मकाम पर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद मारे गए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान अगले दौर की अमन बातचीत आज होने की उम्मीद है। मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है और ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों के अख्तितामी तकरीब में अहमदाबाद को 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाजाब्ता तौर पर मिल गए हैं। भारत में 2023 में डिजिटल प्लेज पोर्टल के आगाज के बाद से 3 साल के अरसे में आधार के जरिए तस्दीक शुदा आजा अतिया में देने के 5 लाख से ज्यादा वादे किए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर मुमलकत अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में आजा के अतिये के 16वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए इस बात को उजागर किया कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत में आजा बदलने के मामलात बढ़कर 20,000 सालाना हो गए हैं। मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि आजा बदलने की तादाद के एतबार से अमरीका और चीन के बाद आलमी सतह पर भारत तीसरा मुल्क है। उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा सैदोव बख्तियार ओदिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत उज़्बेकिस्तान के गहरे तारीखी, सकाफती और तहजीबी रिश्ते हैं जो कदीमी तजारती रबतों पर मबनी हैं। अपनी मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर रजामंदी का इजहार किया कि यह दौरा बाहमी इश्तराक के नए शोबों की निशानदेही करता है और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तौर पर सूदमंद शराकतदारी को मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब किस्मत साथ न दे तो उस वक्त भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक हुनरमंद मल्लाह जिसकी कश्ती बीच समंदर में फंस जाती है वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता बल्कि तैर कर कोशिश जारी रखता है और यही मुसलसल कोशिश और सब्र किसी शख्स को फिर अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कल पुरमन रैली के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर हुए खुदकुश हमले में सिक्योरिटी के 5 अहलकारों समेत कम से कम 14 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। खुदकुश बम धमाके का वाकया उस वक्त पेश आया जब स्वात पुरम रैली स्वात जिले में कबल कस्बे के पुलिस स्टेशन से गुजर रही थी। किसी ग्रुप या फर्द ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के इलाके में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान पुरतशद

0: लीडर फिल्म का नाम आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। मौसीकी से सजाए थे इस नगमे को नौशाद ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश बिन बादल बरसात फिल्म का नगमा हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।
1: एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के

खैर दा फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ों में, नगमानी गाती शकील बदायूं, मौसीकार रवि। और अब शकील बदायूं का लिखा एक और खूबसूरत नगमा आप तमाम सामाईन की नज़र है, आवाज़ गीता दत्त की है, फिल्म है साहिब बीबी और गुलाम।

की खूबसूरती कहा जाएगा कि इस भजन को लिखने वाले शकील तो मुसलमान थे ही, नगमे के मौसीकार नौशाद और गुलुकार मोहम्मद रफी भी मुसलमान ही थे। इस बेमिसाल भजन की उम्दा गायकी आज तक कानों में रस घोल रही है।

शकील की नगमा निगारी ने कई नए गुलकारों को भी खूब शोहरत दिलाई। महेंद्र कपूर को सन 1968 में पहला गुलकारी का एजाज जिस गीत के लिए मिला उसकी मौसीकी नौशाद साहब ने दी थी और गीत शकील ने लिखा था। इस गीत की कामयाबी ने महेंद्र कपूर को गुलकारी के सख्त मुकाबला जाती दौर के बावजूद शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।

शकील की शोहरत भले ही चारों तरफ फैल रही हो, भले ही उनके चाहने वालों का मजमा उन्हें देखने को स्टेशनों पर उमड़ आता हो और भले ही उनके गानों से मुल्क के गली कूचे गूंज रहे हों।

लेकिन शकील के मिजाज की सादगी हमेशा बरकरार रही। उनके अंदर बनावट नहीं आई। उन्होंने खुद को कभी गुरूर से करीब नहीं होने दिया और वो हमेशा इनकिसारी का दामन थामे रहे। खुद एक जगह अपने शेर में उन्होंने अपने इस मिजाज का इजहार भी कर दिया। जिनसे नायाब मोहब्बत की खुदा खैर करे, बुलहवस इसके खरीदार नजर आते हैं। हम न बदले थे, न बदले हैं, न बदलेंगे शकील, एक ही रंग में हर बार नजर आते हैं।

शकील के नगमों को जब जब नौशाद की मौसीकी का साथ मिला, धूम मच गई। एक के बाद एक मशहूर गीत फिल्मी दुनिया पर छा गए। दोनों की जोड़ी ने भारतीय फिल्मी मौसीकी की तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया। नौशाद साहब शकील को जितना करीब रखते थे, शकील के दिल में भी उनके लिए उतनी ही उनसियत थी। शकील का शीरी मजमुआ छपा तो उन्होंने इस मजमुए को नौशाद साहब के नाम मंसूब किया।

नौशाद साहब के साथ काम करके शकील को शोहरत तो खूब मिली, लेकिन उन्हें ये एहसास भी रहा कि उनकी माली हालत में बहुत ज्यादा बेहतरी नहीं आ रही। इसीलिए शकील ने बाद में दूसरे मौसीकारों के लिए भी गीत लिखने शुरू कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि जिन नौशाद साहब के साथ काम करके शकील को बेपनाह शोहरत मिली, उनके साथ किसी भी नगमे पर उन्हें कभी कोई एजाज नहीं मिला। हैरतनाक तौर पर शकील ने जैसे ही दूसरे मौसीकारों के साथ काम करना शुरू किया, उन्हें पाए दर पाए बड़े एजाज मिले। शकील को पहला फिल्म फेयर अवार्ड सन 1960 में 14वीं का चांद के नगमे के लिए मिला।

सन 1961 में शकील को फिल्म घराना के नगमे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ। इस फिल्म के मौसीकार रवि थे, जिन्हें इसी फिल्म के लिए बेहतरीन मौसीकार का फिल्म फेयर अवार्ड अता हुआ।

1962 में फिल्म 20 साल बाद के एक नगमे के लिए शकील को मुसलसल तीसरे साल फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म के गीत कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए शकील को बेहतरीन नगमा निगार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो इसी नगमे के लिए लता मंगेशकर को बेहतरीन गुलोकारा का फिल्म फेयर अवार्ड मिला।

शकील के फिल्मी नमूने हर प्लेटफॉर्म पर अपना एक नुमाया मकाम हर हाल में हासिल किया। यूं तो अमर, चौदवी का चांद, गंगा जमुना, आन और राम और श्याम जैसी तमाम ही फिल्मों में उनके गीत गैर मामूली शोहरत पाते रहे। बना का गीतमाला जैसे तकाबुली स्टेज पर उनकी शोहरत हमेशा रही, लेकिन उनके लिखे हुए मुगल-ए-आज़म फिल्म के गीतों ने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म के गीतों को दुनिया भर में शोहरत मिली। मुतअद्दिद माहिरीन ने कहा कि इस फिल्म के गीत बॉलीवुड की तारीख के सबसे बेहतरीन गीत हैं। इन गीतों ने कारोबार के भी नए रिकॉर्ड कायम किए।

शकील की नगमा निगारी की एक सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि उन्होंने नाजुक एहसास को बड़े सलीके और एहतियात से अशार के कालिब में ढाला। कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे किसी नाजुक शीशे में एहसास की मैं भर के कोई शहराए मोहब्बत पर बड़े एहतियात से चलता चला जा रहा हूँ। शकील ने क्या सेहरा, क्या अलमिया और क्या हिजर, हर एक को ऐसी चाबुक दस्ती से अपने नगमों में पिरोया कि सुनने वाले मरूब हुए बिना न रह सके। बाबुल फिल्म का वो नगमा कौन भूल सकता है जिसमें एक लड़की अपनी रुखसत के मौके पर अपने एहसासात को जाहिर कर रही है। शायद ही कोई दिल हो जो वो नगमा सुनकर न भर आए।

0: शकील की जिंदगी में धूप छांव खूब आए। जहां एक तरफ उनका खूब उरूज का जमाना आया, उन्हें उनके गीतों का अच्छा नजराना मिला, वहीं ऐसा वक्त भी पड़ा जब सरमाया नहीं रहा और जिम्मेदारियों ने परेशान करके रख दिया। सन 1964 से तवील अलालत के सबब शकील की माली हालत बुरी तरह खस्ता होकर रह गई। हालात ऐसे हो गए कि सन 1968 में उन्होंने जब अपनी बेटी सफिया की शादी की तो अपना मकान बेचना पड़ गया। हालात और हवादिस के बावजूद शकील की शायरी जिंदगी और मुस्कुराहटों से सदा इबारत बनी रही।
1: उड़ाई वाइज ने छिप के पहम, चढ़ाए रिंदों ने मिल के बाहम, यहाँ तो ये सोचते ही गुजरी कि बादनोशी हराम क्यों है। उन्हीं को थी जिक्र में ऐसी नफरत, यही थे जाहिद, यही थे हजरत, जरा कोई इनसे ये तो पूछो कि इनके हाथों में जाम क्यों है।
0: ऐसा नहीं है कि शकील की जिंदगी सिर्फ इश्किया, रोमानी और तंजिया मबाहिस से इबारत हो, इनकी मजहबी शायरी भी लाजवाब है। एक जगह हजरत इमाम हुसैन के लिए लिखते हैं, सलाम उन पर शहीदे करबला कहते हैं सब जिनको, जियाए कल्बो ऐने मुस्तफा कहते हैं सब जिनको, वो जिनकी एक ठोकर से रवा चश्मे हो कौसर के, रहे जो तीन दिन प्यासे मगर साए में खंजर के, उन्होंने कर दिया जाहिर हकीकत किसको कहते हैं, शहादत का है क्या मतलब, शहादत किसको कहते हैं।
1: शकील बदायूनी का नातिया कलाम भी बहुत काबिले तवज्जो है। उनकी नादगोई की इनफरादियत का अंदाजा उनके नातिया अशार पढ़कर होता है।
0: तमन्ना है कि मरते वक्त हम भी मुस्कुराते हों, ज़बां पर या मोहम्मद हो जब इस दुनिया से जाते हों।

शकील ने एक भरपूर जिंदगी जी। उन्होंने 100 से जायद फिल्मों के गीत लिखे। इनकी दर्जनों गजलें बड़े बड़े गुलकारों ने गाई। इनके शेरी मजमुए छपे। मुल्क के तूलो अर्ज की अदबी महफिलों में इनके शैदाइयों का हमेशा मचमा रहा। इन पर मजामीन लिखे गए, किताबें मुरतब हुई, इन्हें एजाज मिले, इनके नाम से सड़कें मंसूब हुई। इनके कलाम की उम्दगी का एतराफ दिलीप कुमार से लेकर साहिर लुधियानवी तक ने किया। मोहब्बत और रोमानियत के हसीन जज्बात का ताना बाना बड़ी खूबसूरती से बुनने वाला ये नगमा निगार 20 अप्रैल सन 1970 को बंबई में शुगर के मौरूसी मर्ज से दाइये अजल को लबैक कह गया। तवील अलालत के दौरान इन्होंने

एहसास का कफील शकील। सामिन भी आप शकील बदायूनी के यौम पैदाइश के मौके पर जनाब मालिक अश्तर की तहरीर का द फीचर का ये दूसरा और आखिरी हिस्सा सुन रहे थे। पेशकश अली मोहतशिम रजा की थी, माविन थे मोहम्मद अनस फैजी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे जावेद अली खान, शगुफ्ता यासमीन, एम रजा, मोहम्मद अनस फैजी, अब्दुल खालिक और मोहतशिम हसन। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब हम आपको कुछ और नगमे सुनवाते हैं शकील बदायूनी के लिखे हुए। प्रोग्राम की पहली पेशकश आप तमाम सामईन के लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पहली बाबरा फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है नौशाद ने।

पालकी फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे महमूद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे मौसीकी सजाया था नौशाद ने। और आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश सन ऑफ इंडिया फिल्म का नगमा, आवाज़ें शांति माथुर और साथियों की, नगमा निगार शकील बदायूं, मौसीकार नौशाद।

trong đàn bài trầm. Để mình bay, để mình bay, thắm.

मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ।

नाम ना रही हूँ।

नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे

और समिंदी जब सुनी गंगा जमुना फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मौसीकार नौशाद, नगमा निगार शकील बदायूनी।

0: கிடைக்காது.
1: आंखों मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है.

कोहिनूर फिल्म के नगवाब सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामीन के लिए नूरजहां फिल्म का नगमा सुमन कल्याणपुर की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया है रोशन ने।

दीदार फिल्म का दुकान आप सुन रहे थे जी एम दुर्रानी और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। और लीजिए सामी ने सुनी प्रोग्राम की अगली पेशकश दो बदन फिल्म का है नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है रवि ने।

0: सामिन, आज के फिल्म मौसीकी के प्रोग्राम में आप सुन रहे थे शकील बदायूनी के लिखे हुए कुछ फिल्मी नगमे उनके यौम पैदाइश के हवाले से। ये प्रोग्राम खराज अकीदत था मारूफ नगमा निगार शकील बदायूनी के लिए उर्दू सर्विस की जानिब से। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के इलाके में पुरअमन मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी मुसल्ह अफवाज के वहशियाना हमले का सिलसिला जारी है। 80 से ज़्यादा अफराद मारे गए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद की मौत हो गई। अमरीका ईरान के दरमियान अगले दौर की अमन बातचीत आज होने की उम्मीद है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान और ज़्यादा मजबूत इक़्तिसादी साझेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया है और अगले 3 साल में 2 तरफ़ा तजारत को दुगना करने का निशाना रखा है। और ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों की इख्तितामी तकरीब में अहमदाबाद को सन 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों की मेज़बानी के हुकूक बाज़ाबता तौर पर मिल गए हैं। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर इलाके पुरअमन मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी मुसल्ह अफवाज के वहशियाना हमले का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें होने की इत्तला मिली है। POJK की इंसानी हकूक से मुतालिक कौंसल के आदादोशुमार के मुताबिक मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी दस्तों की फायरिंग में 80 से ज़्यादा अफराद मारे गए हैं। इधर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वाच, ज़राए इबलाग की बैन अल-अक़वामी तंजीमों और सिफारती मिशनों से अपील की है तशद्दुद के वाक़ियात की फौरी तौर पर आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए दस्तियाब फुटेज और अखबारी इत्तला की जाँच करें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कल पुरअमन रैली के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर हुए खुदकुश हमले में सिक्योरिटी के 5 अहलकारों समेत कम अज़ कम 14 अफराद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। खुदकुश बम धमाके का वाक़िया उस वक्त पेश आया जब स्वात पर अमन रैली स्वात ज़िले में काबल कस्बे के पुलिस स्टेशन से गुजर रही थी। किसी ग्रुप या फर्द ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सालिसों के तवस्सुत से ईरान के साथ बातचीत आज होने वाली है। एयरफोर्स वन में सवार नामा निगारों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की कि मुज़ाकरात के वसीले सरगर्म हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारती रबतों के तनाजुर में उन्होंने उस कार्रवाई को रोक दिया जिसके तहत एक बड़ा हमला करने का मंसूबा बनाया गया था। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने इसी तरह का इंदिया दिया है कि बहरी राहदारी का इंतजाम संभालने के लिए एक मुश्तरका निज़ाम के ताल्लुक से ईरान और ओमान के दरमियान तबादला ख्याल हतमी मराहिल में है। जापान और अमेरिका ने जापानी करेंसी येन की कदर को गुज़िश्ता 40 साल की कम तरीन सतह पर गिरने से रोकने के लिए येन की ख़रीदारी के लिए एक गैर मामूली और मरबूत इकदाम करने की तस्दीक की है। जापान ने इंदिया देते हुए कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह इस सिलसिले में मज़ीद कदम उठाएगा। जापान के वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि वजारत ने पिछले हफ्ते अमरीका के महकमा ख़जाना के इश्तराक से जापानी येन ख़रीदा था। वज़ीर ख़जाना कटेम्मा ससुकी ने आज मुश्तरका इकदाम की तस्दीक करते हुए एक बयान जारी किया। जापानी वजारत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए उस बयान के बाद मुश्तरका इकदाम की तस्दीक की जिसमें वाशिंगटन दोस्ती की खातिर जापानी करेंसी येन को सहारा देने और आलमी मीशन में ताउन करने में मदद कर रहा है। रूस के मुख्तलिफ खित्तों में यूक्रेन की जानिब से उसके फौजी तवानाई और शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर रात भर के ड्रोन हमलों में कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए। रूस की वजारत दिफा के मुताबिक इस हमले के दौरान उसके फजाई दिफाई निज़ाम ने 635 ड्रोन्स को बीच में ही रोक दिया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव की अफवाज ने एंजिल्स में एक फौजी फजाई अड्डे को निशाना बनाया जहाँ रूस के तवील दूरी वाल बार्मस होते हैं। इसके साथ सरतोव में एक तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी अफवाज ने रूस के

ने भी कलुगा खित्ते में तेल के एक डिपो को भी निशाना बनाया और वहां आग लगा दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनअतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान और ज़्यादा मजबूत इकतसादी साझेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने सरमाकारी में इजाफा करके तजारती रुकावटों को कम करके और इजान सेहत और दवासाजी जैसे शोबों में इश्तराक बढ़ाकर अगले 3 साल में 2 तरफा तजारत को दोगुना करने का निशाना रखा है। जनाब पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत उज्बेकिस्तान कारोबारी फोरम में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के कारोबारी अफराद को एक दूसरे के यहाँ दस्तियाब मौक़ों को बरूए कार लाकर सरमायाकारी करने पर गौर करना चाहिए। जनाब गोयल ने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में मजबूत इश्तराक कायम कर सकते हैं। इनमें कानकनी, टेक्सटाइल्स, फार्मा, हिफ्जान सेहत, ज़रई और खुराक को डब्बाबंद करने की सनत, IT और डिजिटल मीशत शामिल हैं। उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा साडव ऑलविच ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया के पोस्ट पर

0: सासाजी जैसे शोबों में इश्तराक बढ़ाकर अगले 3 साल में 2 तरफा तिजारत को दोगुना करने का निशाना रखा है। जनाब पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत उज्बेकिस्तान कारोबारी फोरम में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के कारोबारी अफराद को एक दूसरे के यहाँ दस्तियाब मौक़ों को बरूए कार लाकर सरमायाकारी करने पर गौर करना चाहिए। जनाब गोयल ने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में मजबूत इश्तराक कायम कर सकते हैं। इनमें कानकनी, टेक्सटाइल्स, फार्मा, हिफ्जान सेहत, ज़रई और खुराक को डब्बा बंद करने की सनत, IT और डिजिटल मीशत शामिल हैं। उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा साडव ऑडविच ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया की पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत उज्बेकिस्तान के गहरे तारीखी, सकाफती और तहजीबी रिश्ते हैं जो कदीमी तजारती रबतों पर मबनी है। अपनी मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर रजामंदी का इजहार किया कि यह दौरा बाहमी इश्तराक के नए शोबों की निशानदेही करता और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तौर पर सूदमा शराकतदारी को मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेगा। भारत में सन 2023 में डिजिटल प्लेस पोर्टल के आगाज़ के बाद से 3 साल के अरसे में आधार के जरिए तस्दीक शुदा आज़ा अतीय में लेने के 5 लाख से ज़्यादा वादे किए गए हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में आज़ा के अतीय के 16वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए इस बात को उजागर किया। गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत में आज़ा बदलने के मामले बढ़कर 20,000 सालाना हो गए हैं। मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि आज़ा बदलने की तादाद के एतबार से अमरीका चीन के बाद आलमी सतह पर भारत तीसरा मुल्क है। उड़ीसा में सभी बड़े दरियाओं और उनकी माबीन नदियों में पानी की सतह कम होने के साथ ही सैलाब की सूरत हाल में रफ्तार रफ्तार बेहतरी आ रही है। हमारे नामा निगार ने खबर दी कि रियासती हुकूमत ने तबाह हुए मकानात और फसलों को हुए नुकसान के सिलसिले में माली मदद का ऐलान किया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जैली हिमालयी, मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 2 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरल में भी इसी तरह के मौसम रह सकता है। ग्लासगो में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में अहमदाबाद को सन 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों की मेज़बानी के हुकूक बाज़ाब्ता तौर पर मिल गए हैं। इख्तितामी तकरीब में भारत ने कदीम फलसफे, जदीद फ़नून और अपनी शानदार सकाफती रिवायत का हसीन इम्तिजाज पेश करते हुए दुनिया भर के मुल्कों को अहमदाबाद आने की पुरजोश दावत दी। इस तकरीब के जरिए सन 2030 में मुनक़िद होने वाले दो दौलत मुश्तरका खेलों के 7 साला एडिशन की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज़ भी हो गया है। बरतानिया के 4 स्वयं के नुमाइंदे प्रिंस एडवर्ड्स ड्यूक ऑफ एडवर्डा ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरक खेलों अख्तितम का बाज़ाब्ता ऐलान किया। तमाम शरीक ममालिक और खित्तों के खिलाड़ियों को अहमदाबाद आने की दावत दी। मेज़बानी की जिम्मेदारियों की मुंतकली की तकरीब का आगाज स्कॉटलैंड और भारत के कौमी परचम बरदारों से हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरक खेलों में शानदार कारकर्दगी मुजाहरा करने वाले भारतीय खिलाड़ी को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि भारत ने जो सोने के 13 तमगे जीते हैं उनमें से 8 तमगे खवातीन को मिले हैं। वजीर आजम तमगे जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को उनकी काबिल कदर कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि इन खेलों के दौरान भारत के बासलाहित एथलीट ने गैर मामूली महारत, पुख्ता अज़म और लगन का मुजाहरा किया। खास खास खबरें एक बार फिर। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के इलाके में पुरअमन मुजाहरीन पर पाकिस्तानी मुसल्ह अफवाज के वहशियाना हमले का सिलसिला जारी है। 80 से ज़्यादा अफराद मारे गए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक पुरअमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद की मौत हो गई। अमरीका ईरान के दरमियान अगले दौर की अमन बातचीत आज होने की उम्मीद है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान और ज़्यादा मजबूत इक़्तिसादी साझेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया है और अगले 3 साल में 2 तरफ़ा तजारत को दोगुना करने का निशाना रखा है। और ग्लासगो में दौलत मुश्तरक खेलों की इख्तितामी तकरीब में अहमदाबाद को सन 2030 के दौलत मुश्तरक खेलों की मेज़बानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर मिल गए हैं। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल।

मित्रों, आज का ये युववाणी का अंक लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। शुरुआत करते हैं राजेश रेड्डी की इन पंक्तियों के साथ। वो लिखते हैं, सब कुछ नया है, कुछ भी पुराना नहीं रहा। मैं रह गया हूं, मेरा जमाना नहीं रहा। सूखा हूं जब से, शाख पर आता नहीं कोई। अब मैं किसी का ठोर ठिकाना नहीं रहा। कुछ इस तरह से खो गया तुझ में मेरा वजूद, मेरा फसाना नहीं रहा। पढ़ने लगे हैं लोग मेरे चेहरे पर तुझे, अब मेरे बस में कुछ भी छुपाना नहीं रहा। उसमें भी आ गया है जरा सा सयानापन, मैं भी तो पहले जैसा दीवाना नहीं रहा। एक उम्र काटनी है सो काटेंगे तेरे बाद, जीने का यूं तो कोई बहाना नहीं रहा।

दोस्तों, जीने के बहाने चाहे लाखों हों, लेकिन जीने के लिए जिन मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत एक इंसान को रहती है, जिसमें पहले रोटी, कपड़ा, मकान हम कहा करते थे, लेकिन आज के इस आधुनिक और भौतिक युग में संचार के साधनों के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। संचार के, सूचना संप्रेषण के आज अनेक साधन मौजूद हैं। तेज गति का इंटरनेट, विभिन्न तरह के टीवी चैनल, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, ये एक संचार का सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब संचार का जो सबसे सशक्त, सटीक और विश्वसनीय माध्यम था, वो था रेडियो। और आज भी चाहे संचार के कितने ही आधुनिक साधन हमारे बीच में, हमारे आसपास मौजूद क्यों ना हो, रेडियो की आज भी एक अलग महत्ता है। उसकी बातों पर आज भी विश्वास किया जाता है। रेडियो की पहुंच हर स्थान तक है। कहते हैं कि हमारे देश में 99% क्षेत्र ऐसा है जहां रेडियो ने अपनी पहुंच बना ली है। देश में रेडियो की जो विधिवत शुरुआत हुई थी वो 1936 में तब हुई जब इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की भारत सरकार ने शुरुआत की, और जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो बना 1936 में, और 1957 में इसे

आकाशवाणी नाम दिया गया। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से पहले आधिकारिक प्रसारण की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर ज्ञान, सूचना और मनोरंजन का जो सबसे सशक्त माध्यम है वो है आपके हाथ में वो रेडियो, जिसके माध्यम से आज आप मुझसे मुखातिब हैं। आकाशवाणी के इस कॉटन सिटी चैनल को आप सुन रहे हैं। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने प्रसारण की शुरुआत की और 26 अगस्त से यानी इसी महीने में कोलकाता से नियमित प्रसारण इसके आरंभ किए गए थे। 8 जून 1936 को इसका नाम बदला गया और ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती सेवा आरंभ हुई, जिसके आने के बाद रेडियो घर घर पर लोकप्रिय हो गया। 1977 में 30 जुलाई को चेन्नई से देश की पहली FM सेवा की शुरुआत की गई, जिससे इसकी गुणवत्ता में विस्तार हुआ और आज तो हम अपने मोबाइल में, चाहे वो सेल फोन किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, कोई स्मार्टफोन हो, और यहाँ तक कि आपके हाथ में जो कीपैड फोन भी हैं उसमें भी आप रेडियो को सुन सकते हैं। हर गाड़ी में सफर करते समय रेडियो के माध्यम से आप गीत संगीत का आनंद उठा सकते हैं। आज भी रेडियो के जो समाचार हैं उनको कितने ही टीवी चैनलों के आने के बाद भी सबसे विश्वसनीय माना जाता है, और यही कारण है कि रेडियो का महत्व आज से पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसके लिए आप सब जो हमारे सुधी श्रोता हैं, जो नियमित रूप से रेडियो सुनते हैं, हमें पत्र लिखते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपने सुझाव हम तक प्रेषित करते हैं, अपनी फरमाइश हम तक भेजते हैं, इसकी वजह से रेडियो दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और इसके सुनने वालों की संख्या में अभी वृद्धि भी हो रही है। दोस्तों, रेडियो के महत्व को हम इस बात से भी आंक सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात कहने के लिए रेडियो को चुना, जो आप महीने के आखिरी रविवार को इस माध्यम से सुना करते हैं।

दोस्तों, आज आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी का, सूरत का रेडियो स्टेशन यानी आपका अपना कॉटन सिटी चैनल। और आज इस युवानी कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ साथ कुछ समसामयिक विषयों पर जानकारी भी लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। जैसे आज के दिन को ले लें, आज दिन है 3 अगस्त का, और आज के दिन 1886 में उत्तर प्रदेश के चिरगांव में एक ऐसे महान कवि का जन्म हुआ जिन्हें प्यार से लोग दद्दा कहा करते थे। उन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि का दर्जा दिया और पूरी दुनिया ने उन्हें मैथिली शरण गुप्त के नाम से जाना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गुप्त को खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाने के लिए प्रेरित किया और अपनी कविताओं के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी साहित्य को अपना जो योगदान दिया, जो अमर कृतियां उन्होंने लिखी, वो किसी से भी छिपी नहीं है। उनकी कृति भारत भारती जो 1912 में आई थी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे महान कवि को सन 1954 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया, उन पर डाक टिकट भी जारी की गई। अनेक रचनाएं मैथिली शरण गुप्त ने लिखी जिनमें भारत भारती के साथ साथ प्रथम उनका काव्य जो संग्रह था वो था रंग में भंग, और बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुआ। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध और ब्रजंगाना का अनुवाद भी किया। उनकी लोकप्रियता पूरे देश में फैली हुई थी। उन्होंने संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्न वासवदत्ता का

अनुवाद भी प्रकाशित किया। 1916 और 17 में उन्होंने साकेत महाकाव्य की रचना आरंभ की। ये महाकाव्य उर्मिला के प्रति जो उपेक्षा भाव था उससे प्रेरित होकर लिखा गया था। उसके बाद पंचवटी उनका काव्य प्रकाशित हुआ। इसी दौरान वो गांधी जी के संपर्क में आए। 1932 में उन्होंने यशोधरा लिखी। 1941 में सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। उन्हें झांसी जेल लगाया ले जाया गया। आगरा जेल में भी वो रहे और आरोप चूंकि सिद्ध ना हो सके इसलिए उन्हें 7 महीने बाद जेल से रिहा भी कर दिया गया। 1948 में स्वाधीनता के बाद आगरा यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। 1952 से लेकर 1964 तक 12 वर्ष वो राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए और उसके बाद 53 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि थी। वहां वो मानद प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त किए गए। चिरगांव में उन्होंने एक साहित्य सदन के नाम से अपनी प्रेस भी शुरू की थी और झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की उन्होंने स्थापना की थी। भगवान श्री राम जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं उन्हीं के बारे में उनकी पंक्तियां, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कही हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। राम के चित्रांकन में गुप्त ने जीवन के रहस्य को उद्घाटित किया है। राम के जन्म हेतु उन्होंने कहा, किस लिए यह खेल प्रभु ने किया है, मनुष्य बनकर मानवी का पै पिया, भक्त वत्सलता इसी का नाम है और वह लोकेश लीला थाम है।

मैथिली शरणगुप्त उस समय नारियों की दुर्दशा से काफी प्रभावित थे। नारी की दशा ने उनके मन में करुणा के भाव भर दिए थे और यही कारण था कि उनके अनेक काव्य ग्रंथों में नारी की पुनर्प्रतिष्ठा और पीड़ित नारी के प्रति सहानुभूति साफ साफ झलकती है। नारी की दशा को व्यक्त करती उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां पाठक के हृदय में करुणा के भाव उत्पन्न करती है। हम सब ने ये पंक्तियां सुनी हैं, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। मैथिली सेनगुप्त ने विरहिणी नारियों के दुख से द्रवित होकर अनेक साहित्य की रचना की। उनकी वियोगिनी नारी पात्रों में उर्मिला तो साकेत महाकाव्य में नजर आती हैं, यशोधरा और विष्णुप्रिया खंड काव्य प्रमुख हैं। उनका करुणा विप्रभ तीनों पात्रों में सर्वाधिक मर्म स्पर्शी बन गया। उनके जीवन संघर्ष, उदात विचार और आचरण की पवित्रता, ये जो मानवीय जिजीविषा और स्वदेशीयता को प्रमाणित करते हैं। गुप्त जी की तीनों विरहिणी नायिकाएं विरह ताप में तपती हुई अपने तन मन को भस्म नहीं होने देती, बल्कि सोने की तरह उज्जवल वर्णी हो जाती है। नारी की दशा के साथ साथ चूंकि उस समय देश गुलाम था, मैथिली सेन की रचनाओं में देशभक्ति का भी उचित समावेश रहा। अनेक काव्य रचनाओं में उनका देश प्रेम झलकता था जो देश के उन वीरों में उत्साह का संचार करता था जो आजादी के दीवाने थे और मातृभूमि को बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जिन वीर सैनिकों ने, वीर जवानों ने अपने प्राणों की बलि तक लगा दी थी। उन्हीं की एक कविता के कुछ अंश हैं जो वो देश के वीरों को समर्पित करते हैं। वो लिखते हैं, शत शत सम्राटों के स्वामी, हे अनंत, हे अंतर्यामी, सुख का स्वप्न है कि आशा है यह स्वराज्य, किसने इसको उदित किया है, मूर्छे मन को मुदित किया है, तुमने केवल तुमने प्रभुवर, कहती है अंतर्भाषा यह स्वराज की अभिलाषा। बैठ तुम्हारे साहस रथ में, हमने रुकेंगे अपने पथ में, नाथ तुम्हारी इच्छाओं को बाधा ही बल देंगी, सत्य और विश्वास मिलेंगे, कांटों में ही फूल खिलेंगे, उद्योगों की कल्पताएं मन भामने शुभ फल देंगी। काला रंग बाधक होगा, गोरों का गुण साधक होगा, एक हृदय का मिलन हमारा तीर्थराज संगम होगा, उन्नति में न रुकावट होगी, होंगे योग्य उच्च पद भोगी, आत्मा की सच्ची समता से मनुज मनुज के सम होगा। वो आगे लिखते हैं, कभी न नैतिक घाते होंगी,

मुक्त मानसिक बातें होंगी। विधि विधान से फिर निजत्व का हमको अटल गर्व होगा। पक्षपात मतभेद न होगा, ग्लानी न होगी, खेद न होगा। नए सभा में विचार का प्रकटित पुण्य पर्व होगा।

वो सुबह कभी तो आएगी। हम सबको सुबह की तलाश है, जब किसी में भेदभाव नहीं होगा, हर व्यक्ति सुखी होगा, उसे बराबर का अधिकार मिलेगा। ऐसी परिकल्पना बरसों पहले की गई थी, लेकिन आज भी वो इतने बरसों बाद भी साकार नहीं हो पाई है। आज भी देश के अनेक हिस्से ऐसे हैं जहां आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह झुकी झोंपड़ियों में निवास करता है। जिस तरह से, जिस गति से शहरों का विकास हुआ है, उसी तरह से शहरों के आसपास झुकी झोंपड़ियों का भी विकास हुआ है। ऐसी मलिन बस्तियां, ऐसी झुकी झोंपड़ियां जहां कच्ची झोंपड़ियों में ठूंस ठूंस

इंसान भरे गए हैं। इतनी जगह भी नहीं है कि इंसान आराम से पैर पसार कर सो सके। उन बस्तियों में ना तो कहीं शिक्षा की गुंजाइश है, ना स्वच्छ शौचालय हैं, ना गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था है, ना चिकित्सीय सुविधाओं का विस्तार है। रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कहीं जाती हैं, ऐसी मलिन बस्तियों में उनका सर्वथा अभाव देखा जाता है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे लोग, जो बड़ी मुश्किल के साथ अपने दिन गुजारते हैं, हालांकि उनके पुनर्वास के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, उनकी माली हालत सुधारने के लिए अनेक योजनाएं भी बनती हैं, लेकिन देश के विकास के साथ साथ ऐसी झोंपड़ियों में रहने वालों के जीवन स्तर में भी कोई सुधार नहीं देखा गया है। वहां साफ पानी की कमी है, बिजली की कमी है, पक्के रास्तों का अभाव है, और जिस तरह से मानसून का मौसम अब चल रहा है, पानी की निकासी की वहां कोई व्यवस्था नहीं है। गंदे पानी में जहां चारों ओर कीड़ों मकोड़ों का, मच्छरों का वास रहता है, वहीं इंसानों को निवास करना पड़ता है। ना तो उनके बच्चे स्कूल जा पाते हैं ताकि वो देश के विकास में अपना योगदान दे पाए, और ना उनके पास रोजगार के स्थायी साधन हैं जिससे वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठ पाए। और ऐसी बस्तियों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की तलाश में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। ऐसी बस्तियों के सुधार के लिए सरकार के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है या वहाँ के जो सामाजिक संगठन हैं, उनको भी चाहिए कि वो उनके विकास के लिए प्रयास करें। बस्तियों में पक्के मकान बने, गंदे पानी की निकास के लिए नालियों की अच्छी व्यवस्था हो, पीने के लिए उन्हें स्वच्छ पेयजल मिले, साफ और सही शौचालयों की वहाँ व्यवस्था हो, युवाओं के लिए शिक्षा के साधन उपलब्ध हों, और उन्हें कौशल विकास के लिए, रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाए, समय पर वहाँ स्वास्थ्य की जांच हो, उप स्वास्थ्य केंद्र बने, दवाइयों की वहाँ उचित व्यवस्था हो, तभी ऐसे लोगों का जीवन स्तर सुधर सकता है। वरना एक ओर नेताओं की जय जयकार होती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी बस्तियों में आज भी जब हम वहाँ जाकर देखते हैं तो जीवन स्तर निम्न से निम्नतर हमको नज़र आता है। उसको सुधार करने के लिए सामूहिक प्रयासों की हम सबको आवश्यकता है।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, सावन का महीना आरंभ हो गया है और देश के अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बारिश की बूंदें बरस रही हैं और ये मौसम सबसे अच्छा मौसम है किसी पेड़ को लगाने का। मानसून इस समय देश के कई हिस्सों को भिगोए हुए है, हालांकि कई हिस्से अभी भी बारिश की बूंदों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके आसपास कहीं बारिश पड़ी है और ऐसा कोई स्थान

आपको रिक्त नजर आता है जहां पौधारोपण किया जा सकता है, चाहे वो किसी हॉस्पिटल की बाउंड्री के अंदर हो या किसी विद्यालय की बाउंड्री में। यानी ऐसा स्थान जहां पौधा सुरक्षित रह सके और जहां पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, ऐसे स्थान का चयन करके हम सघन पौधारोपण कर सकते हैं। एक पौधा अपने जीवन भर में जितनी ऑक्सीजन, जितनी प्राणवायु हमें प्रदान करता है, उसे कीमत में आंकना मुश्किल है। जीवन भर में इतने फल, इतनी लकड़ियां एक पेड़ हमें दे देता है, जिसका मूल्य हम रुपए पैसों में नहीं चुका सकते। जिस तरह से देश का औद्योगिकरण हो रहा है, नई नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, सड़कों की चौड़ाई बढ़ रही हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और उसका खामियाजा पेड़ों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि कहते हैं कि जब विकास होता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं विनाश भी रहता है, लेकिन जितना हम पेड़ लगा पाए, उस विनाश को रोक पाए, ना केवल हमारी मानवता के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी प्रीति के लिए, वो आवश्यक भी है, जरूरी भी है। क्योंकि यदि पेड़ नहीं होंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, ये सृष्टि का अंत हो जाएगा। और जहाँ भी कहीं पेड़ लगे हुए हैं, हम नए पेड़ नहीं भी लगा सकते तो उनकी रक्षा तो कर सकते हैं, उनमें समय समय पर पानी देकर, वहाँ से खरपतवार को साफ करके, यदि उसमें कोई रोग लग गया है, कोई कीड़ा लग गया है या कोई दीमक लग गई है, तो उसकी रक्षा करके आसपास कहीं ट्री गार्ड लगा करके या ईंटों का एक सुरक्षा चक्र बना के हम उन पौधों की रक्षा कर सकते हैं। और एक पौधा यदि 2-3 साल पनप गया तो फिर वो खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाता है। तो इस सावन के मौसम में हम सभी प्रण लें कि अपनी इस वसुंधरा को हरा भरा बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।

दोस्तों, अब समय है आज के इतिहास के बारे में जानकारी लेने का। 3 अगस्त का इतिहास यानी देश और दुनिया में आज के दिन जो प्रमुख घटनाएं घटित हो रही थीं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपके साथ साझा कर लें। आज ही के दिन सन 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। 2004 में अमेरिका ने अपना अंतरिक्षयान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना किया था। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, आज ही के दिन 1846 में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म हुआ था। 3 अगस्त को भारत में पहली बार हृदयारोपण किया गया था और इसी उपलक्ष्य में देश में हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज करने के लिए अपने 3 पोतों के साथ यानि 3 जहाजों के साथ समुद्री मार्ग से रवाना हुए थे। 3 अगस्त 1985 को सुप्रसिद्ध समाजसेवी बाबा आमटे को जन सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1914 में पनामा नहर में पहली बार एक समुद्री जहाज चलाया गया था। 3 अगस्त 1960 को नाइजर देश फ्रांस से आजाद हुआ था। सन 2000 में ब्रिटेन की क्वीन मदर ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई थी। आज के दिन सिने जगत में 2 ऐसे महान कलाकारों को जन्म हुआ था जिन्होंने अपने गीतों से और अपने संगीत से फिल्मी दुनिया में एक अलग मकाम हासिल किया था। 1916 में आज ही के दिन सुप्रसिद्ध उर्दू शायर शकील बदायूनी का जन्म हुआ था और 1919 में आज ही के दिन सुप्रसिद्ध संगीतकार जयदेव का जन्म हुआ था। खैर, चलते चलते आज के इस प्रोग्राम में हम आपको जयदेव का संगीत बद्ध किया एक फिल्मी गीत सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है गमन।

से लेकर 8 बजे तक चौपाल कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे बिजली के उपकरणों की देखभाल, सब्जियों में कीट नियंत्रण, मित्र कीटों के बचाव के लिए उपाय, साथ ही होंगे गीत, भजन और बाजार भाव। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से रात 8:15 पर। आज की फिल्म रहेगी दिल दिया दर्द लिया। सुगम संगीत का समय रहेगा रात्रि 9:15। 9:30 पर पब्लिक स्पीक हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे खेल जगत कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब जान लेते हैं कल के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 7:30 पर सुप्रभात कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे जीवों पर दया, सहकार की भावना और आत्मसम्मान। कुछ युगल गीत आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आज के फनकार। दिन में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। कल का ये कार्यक्रम फेसबुक पर आपकी पहुंची गई फरमाइश पर आधारित रहेगा। कार्यक्रम होगा एक ही शीर्षक से दिन में 12:05 पर। कल आप सुनेंगे मोहब्बत शीर्षक के कुछ फिल्मी नगमे। खेत खलिहान कार्यक्रम में कल दिन में 12:50 पर बातचीत का विषय रहेगा भिंडी की फसल में सामयिक कार्य। घर आंगन में कल ग्रामीण महिलाओं के लिए चर्चा के विषय रहेंगे इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, बढ़ती आबादी, बढ़ता संकट, मेहंदी का महत्व और पारंपरिक डिजाइन। जानेंगे गुजरात के प्रमुख व्यंजनों के बारे में। कल शाम 7 बजे से लेकर 7:30 पर किसान वाणी हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:30 पर कल चौपाल कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी फसलों में जैव उर्वरकों का महत्व, दुधारू पशुओं का परजीवी कीटों से बचाव। राजस्थानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम होगा गोरबंद कल 9:15 पर। कल 10 बजे जयपुर केंद्र से रिले करेंगे आपनों राजस्थान।

अभी युवा साथी युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारी सभा के शेष और कल के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सराइकी भाषा में कार्यक्रम। आज शाम 7 बजे

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुने सराय की भाषा में कार्यक्रम।

वाकई गीत बहुत मजेदार है ना। ते हुन तू हाकू सुनवेंदे हां सुरेंद्र कौर दा गाया एक गीत, चन किथां गुजारी आई रात वे।

सुंदर कौर देखाए इस गीत तुम बाद प्रोग्राम दी आखरी पेशकश है महक मलिक दा गाया गीत कदी यार होन दा साडा कदी प्यार होन दा साडा। क्या बोल हिन ते क्या गायकी है लो चस घिनो।

0: अभी आप सराइकी भाषा में एक कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है 918 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:30 हो रहे हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके बाद जिले की चिट्ठी और तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार राजस्थान अंगदान जागरूकता में देश में पहले स्थान पर नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला आरयूआईडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से प्रदेश के 84 शहरों में 9,500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य करेगी राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में अगले दो दिनों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात के आसार और सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर भक्तिमय माहौल समूचे प्रदेश में महादेव के जयकारों की गूंज समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर अंगदान जागरूकता के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है आज नई दिल्ली में 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे समारोह में राजस्थान को अंगदान संकल्प अभियान में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह सम्मान चिकित्सा शिक्षा विभाग की निदेशक डॉ रश्मि गुप्ता और सोटो राजस्थान की निदेशक डॉ चित्रा सिंह को प्रदान किया चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने यह सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की है उन्होंने कहा कि अंगदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के साथ ही प्रभावी जनसंपर्क अभियान चलाने से ये उपलब्धि मिली है देश में आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का आंकड़ा 5 लाख से अधिक हो गया है साल 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुरू होने के बाद ये उपलब्धि हासिल की गई है आज नई दिल्ली में 16वां भारतीय अंगदान दिवस समारोह आयोजित किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले एक दशक में देश में अंग प्रत्यारोपण की संख्या बढ़कर सालाना 20,000 से ज्यादा हो गई है इस मौके पर श्रीमती पटेल ने अंगदान के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले एक साल के जुग जुग जियो अभियान की शुरुआत की
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा हमने आज जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया है ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर जाएगा और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया है
0: राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना आरयूआईडीपी प्रदेश में संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी आरयूआईडीपी परियोजना निदेशक हरिमोहन मीणा ने बताया कि ये संवाद कार्यक्रम 5 से 11 अगस्त तक 84 शहरों में होगा जिसमें आरयूआईडीपी 5वें चरण में होने वाले कामों की जानकारी देगी साथ ही प्रतिभागियों से सुझाव और फीडबैक लिया जाएगा उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इन शहरों के विकास के लिए 9,500 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करेगी इस चरण में अपशिष्ट जल और ठोस प्रबंधन के लिए शहरी यातायात सुधार और विरासत संरक्षण सहित अन्य कामों के जरिए इन शहरों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाया जाएगा श्री मीणा ने बताया कि 67 शहरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से अपशिष्ट जल प्रबंधन किया जाएगा वहीं जयपुर जोधपुर कोटा और भरतपुर तथा 28 शहरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शामिल किया गया है प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा वंचित और पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है उन्होंने कहा कि ये कुल खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों का लगभग 23% है राज्य के 4,35,00,000 लोगों को खाद्य सुरक्षा दी जा रही है श्री गोदारा ने बताया कि 26 जनवरी 2025 से खोले गए खाद्य सुरक्षा पोर्टल से 88,00,000 से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को NFSA में शामिल किया गया है इससे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है उन्होंने ये भी बताया कि मॉनसून को देखते हुए लाभार्थियों को 3 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया है इससे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी श्री अठावले ने युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख

0: करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को गांवों के गरीब और भूमिहीन परिवारों को जमीन देने का प्रावधान करना चाहिए, इससे रोजगार के लिए गांव के लोगों का शहरों की ओर पलायन रुकेगा। पीएम आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिला है शहरों में और गाँव में, और अभी 3 करोड़ लोगों को मकान देने के लिए बजट मंजूर किया है। एक भी मकान देश में कच्चा ना रहे, ये हमारी सरकार की भूमिका है और मुझे लगता है कि उसी तरह हम काम कर रहे हैं।
0: श्री अठावले ने लोक भवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से भी मुलाकात की। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 में विभिन्न कार्य समूहों की बैठक हो रही है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक कल हैदराबाद में शुरू होगी। वहीं जयपुर ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 21 और 22 अगस्त को होगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में खास तौर पर पर्यटन क्षेत्र में AI के उपयोग और सस्टेनेबल टूरिज्म पर चर्चा की जाएगी।
2: G20 की अपार सफलता, सफल आयोजन और उसकी देश भर में हुई गूंज के बाद में ब्रिक्स की मीटिंग्स भी देश के विभिन्न कोनों में हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सुनिश्चित किया है। अभी आने वाले सप्ताहांत में भोपाल में ब्रिक्स देशों के सभी सदस्य मंत्री और इसके अतिरिक्त इन्वाइटेड कंट्रीज के सभी मंत्री जो है भोपाल में 2 दिन तक इस पर चर्चा करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से भारत ने जो कुछ पिछले 10-12 साल में जिस गति के साथ में प्रगति करते हुए अचीव किया है, भारत का सम्मान पुनः स्थापित हो रहा है, ऐसे समय में ब्रिक्स का आयोजन भारत के प्रति इस सम्मान को और अधिक ऊंचाई प्रदान करने वाला है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में इस बार मॉनसून की अधिक सक्रियता नहीं रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार इस सीजन में अब तक सिर्फ फलौदी जिले में ही असामान्य बारिश हुई है। वहीं बाड़मेर और बीकानेर सहित 5 जिलों में अत्यधिक पानी बरसा है। अजमेर, जोधपुर और भरतपुर सहित 16 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा जयपुर, कोटा और उदयपुर सहित 19 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। इस बीच आज श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के साथ सूरतगढ़, सादुल शहर और श्रीकरणपुर में अच्छी बरसात हुई। भरतपुर में भी दोपहर बाद घनघोर घटाएं छा गई और देखते ही देखते झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। नदबई, उज्जैन, भुसावर, बयाना और रूपवास इलाकों में जोरदार बारिश हुई। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज कम दबाव का परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मॉनसून टर्फ लाइन बीकानेर से होकर गुजर रही है। आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। हालांकि जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में आज से ही कमी आने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत अगले साल फरवरी महीने से होगी। इसके लिए प्रशासनिक और लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में जनगणना कार्य निदेशालय का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जिला जनगणना पुस्तिका और प्रशासनिक एटलस को जल्द अपडेट करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिलों, तहसीलों और कस्बों की तादाद में बढ़ोतरी को देखते हुए विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में ये दस्तावेज काफी अहम हैं। मुख्य सचिव ने जनगणना के पहले चरण के तहत हुई मकान सूचीकरण और गणना पर संतोष जताया। उन्होंने 17 अगस्त से पहले भूस्थानिक और डिजिटल टूल्स के उपयोग पर कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। चूरू जिले में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 13 श्रद्धालु घायल हो गए। दुर्घटना सुजानगढ़ क्षेत्र में बोबासर पुलिया पर टेम्पो ट्रैवलर और ट्रेलर के बीच आमने सामने की टक्कर से हुई। पुलिस के अनुसार हादसे के शिकार ये लोग कोलकाता के एक ही परिवार से हैं और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा पर आए थे। सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद पुष्कर धाम के लिए रवाना हुए थे। घायलों को सुजानगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन के पवित्र महीने के

0: पहले सोमवार पर आज समूचे प्रदेश में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। व्रत, उपवास और जप तप से लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। शिवालयों में अल सुबह पट खुलते ही अभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ और समूचे वातावरण में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। जयपुर, कोटा, उदयपुर, दौसा, भरतपुर, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू सहित सभी जिलों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर भस्म आरती हुई। इसी तरह रंगीला महादेव, रोजगारेश्वर, चमत्कारेश्वर मंदिरों में लोगों का सैलाब उमड़ा। उदयपुर के प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कांवड़ यात्राओं और भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रमुख मंदिरों में बैरिकेडिंग तथा प्रवेश, निकास और पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए दोपहिया रोड एम्बुलेंस शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे दुर्घटना और आपात स्थिति में पीड़ितों तक जल्द पहुंचना आसान होगा। खासकर दूर दराज और संकरी जगहों में लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा। मंत्रालय ने एक और अधिसूचना जारी की है। इसके तहत वाहनों में व्हीकल टू व्हीकल संचार प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान अंगदान जागरूकता ने देश में पहले स्थान पर नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। IDP एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से प्रदेश के 84 शहरों में 9,500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य करेगी। राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में अगले दो दिनों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात के आसार और सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर भक्तिमय माहौल। समूचे प्रदेश में महादेव के जयकारों की गूंज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अजय सिंह शक्तावत। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग को केंद्र सरकार की डेवलपमेंट ऑफ एक्सकेवेटेड साइट्स एंड हेरिटेज कॉम्प्लेक्स योजना में शामिल किया गया है। इसके तहत लगभग 108 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। योजना के तहत पद्मिनी महल में नई हिस्ट्री गैलरी, आधुनिक संग्रहालय, वॉकवे, इंटरप्रिटेशन सेंटर और अन्य सुविधाएं विकसित होंगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। रेल परियोजनाओं के क्षेत्र में भी जिले के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। सांसद सीपी जोशी ने बताया कि नई रेल लाइन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और रेलवे स्टेशनों के विकास के कार्य जारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रारंभिक सर्वे में चित्तौड़गढ़ और देवारी में स्टेशन बनने की संभावना है। वहीं चित्तौड़गढ़ अजमेर रेलखंड पर कार्य प्रगति पर है और चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन की स्वीकृति प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं से जिले की रेल संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और पर्यटन तथा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर विद्युत गृह में सुरक्षा तैयारियों की जांच के लिए एटीएस कोटा और इमरजेंसी रिस्पांस टीम की संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास के दौरान आतंकवादी हमले का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया। सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आतंकियों को निष्क्रिय किया और बंधक बनाए गए कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पिछले दिनों निम्बाहेड़ा में लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली, सड़क, पीने के पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ

0: गांवों और शहरों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सांसद सीपी जोशी ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। बैठक में जल जीवन मिशन, विद्युत अवसंरचना, सड़क परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, टीबी मुक्त अभियान और जन औषधि केंद्रों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। प्रदेश के बालोतरा जिले के पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण चित्तौड़गढ़ जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों और ग्राम पंचायतों में किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी ऑडिटोरियम में हुआ। इस अवसर पर आयोजित रोजगार उत्सव में 527 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी, यमुना जल परियोजना और जयपुर मेट्रो सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। मॉनसून की सक्रियता के साथ ही जिले में खरीफ फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। कृषि विभाग के अनुसार इस साल किसानों ने सबसे अधिक क्षेत्र में मक्का की खेती की है। इसके अलावा सोयाबीन, उड़द तथा अन्य खरीफ फसलों की भी बुआई की गई है। कृषि विभाग किसानों को उन्नत खेती और फसल प्रबंधन के संबंध में तकनीकी सलाह उपलब्ध करा रहा है। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत जिले में इस साल 32.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में विभिन्न विभागों, ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, उद्योगों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वन विभाग ने बस्सी अभयारण्य में ड्रोन के माध्यम से बीजों का छिड़काव कर पौधरोपण का नवाचार किया है। इसके तहत स्थानीय प्रजातियों के बीज का छिड़काव किया गया है। विभाग आगामी सितंबर और फरवरी में सर्वे कर इस प्रयोग के परिणामों का आकलन करेगा। प्रशासन ने लगाए गए पौधों की नियमित देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि अभियान का स्थायी लाभ मिल सके और जिले का हरित क्षेत्र बढ़ सके। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राजस्थान अंगदान जागरूकता रा मामला में देश में अव्वल, नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार उन नवासी जियो, RUIDP री ओर एशियन डेवलपमेंट बैंक री मदद, प्रदेश में 84.5 करोड़ रुपए रा खर्च विकास रा काम कराया जावेला। राज्य रा उत्तराद और उगनी हल्का में आवता दो दिन हल्क्यों मझला दर्जारी बरसात रा आसार, और सावन रा पहला सोमवार रे मौके राज्य माय महादेव रा जयकारा री गूंज। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरबे समाचार विगतवार। राजस्थान ने अंगदान जागरूकता रा हल्का माय बेहतरीन काम सारू राष्ट्रीय स्तर में उत्कृष्टता पुरस्कार नवाजी चियो है। आज नई दिल्ली में 16वां इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे समारोह में राजस्थान ने अंगदान संकल्प अभियान में अव्वल रहवण पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर रश्मि गुप्ता और सोटो राजस्थान के निदेशक डॉक्टर चित्रा सिंह ने ओ इनाम देर नवाजा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ओ मान मिलन पर खुशी जाहिर कीनी। वे कहो कि अंगदान सारू जागरूकता बधावण सागे असरदार जनसंपर्क अभियान चलावण आ उपलब्धि हासिल वे सकी। ए बीच देश में आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञा री तादाद में 5 लाख न पार कर की है। आज नई दिल्ली में राखी जिया 16वां भारतीय अंगदान दिवस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लाडला 10 साल में देश में हर साल 20,000 बत्ता उपतु अंग लकैचिया। ई मौके मंत्री अंगदान बारा माय जाग जगावन रा मकसद एक साल ताई चलाए जावन वाला जुग जुग जियो अभियान री शुरुआत कीनी।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े तो

0: समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा। हमने आज जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया है। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर जाएगा और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया है।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो के अंगदान इंसानियत सारो खुद ने समर्पित कर देवण जुड़ियो महादान है। वह राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय माए राखी ज्या अंगदान जागरूकता कार्यक्रम माए बोल रहा है। श्री बागड़े कार्यक्रम माए मौजूद लोगों ने अंगदान री शपथ दिलाई। भारतीय अंगदान दिवस रे मौके जनता माए जाग जगावण रा मकसद प्रदेश माए कई कार्यक्रम राखी ज्या। पाली माए चिकित्सा विभाग और सामाजिक संस्थाओं की ओर अंगदान महादान जागरूकता रैली निकाली जी जिनमें शामिल होने वाला अंगदान करण री सोगन लीनी। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP प्रदेश श्री ओरू राज्यमय संवाद कार्यक्रम रखियो चावेला। RUIDP रा परियोजना निदेशक हरिमोहन मीना बतायो कि वो कार्यक्रम 5-11 अगस्त ताई 84 ठोड़ा रखियो चावेला। इन तहत RUIDP 5वां दौर माए कराया जावन वाला कामा री जानकारी देवन सागे राय लेवेला। वे बतायो कि राज्य सरकार 8 ठोड़ा रा विकास सारू 9.5 करोड़ रुपया रा खर्च न्यारा न्यारा काम करावेला। इन दौर माए गंदा पानी और ठोस कचरा रा प्रबंधन शहरी यातायात सुधार और विरासत न सहेज राखण समेत न्यारा न्यारा काम रे जरिए 8 ठोड़ा ने स्मार्ट और आगेरी पीढ़ी रा रहवास लायक बनाया जावेला। श्री मीना बतायो कि 67 शहरा माए एशियन डेवलपमेंट बैंक री मदद गंदा पानी रो प्रबंधन करियो जावेला जदके जयपुर जोधपुर कोटा और भरतपुर समेत 28 शहरा माए ठोस कचरा प्रबंधन रा काम कराया जावेला। प्रदेश रा 1 करोड़ बत्ता वंचित और पात्र लोगों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाओं जोड़ी चिया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित कोदारा बतायो कि आ तादाद खाद्य सुरक्षा योजना रो फायदो लेवन वाला री कुल तादाद रो करीब 23% है। मंत्री बतायो कि राज्य में 4,35,00,000 जना ने खाद्य सुरक्षा दी जा रही है। श्री गोदारा बतायो कि 26 जनवरी 2025 शुरू करी जिया खाद्य सुरक्षा पोर्टल रे जरिए 88,00,000 उम्बत्ता पात्र लोगों ने NFSA में शामिल करी जिया है। वह कहो कि चौमासा ने ध्यान रखता थका लोगों ने 3 महीना रो राशन एक सागत दियो चारियो है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत कर केंद्र सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। वह कहो कि सरकार पेपर लीक री घटनावां माथे लगाम लगावन सारू करडो कानून बनायो है। इणु आवण वाला भगत में एड़ी घटनावां माथे रोक लागेला। श्री अठावले नौजवानों शांति सागे वारी बात राखण री अपील कीनी। वह कहो कि राज्य सरकार ने गांवारा गरीब और भूमिहीन परिवारा ने जमीन देवन रो प्रावधान करनो चाहिए। इनु रोजगार सारू गांव रा लोगां ने शहरा ओड़ी नी जावनो वेला। PM आवास योजना रा तहत पात्र परिवारा ने पक्का मकान मुहैया कराया जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान में मिला है शहरों में और गांव में, और अभी 3 करोड़ लोगों को मकान देने के लिए बजट मंजूर किया है। एक भी मकान देश में कच्चा ना रहे, ये हमारी सरकार की भूमिका है और मुझे लगता है कि उसी तरह हम काम कर रहे हैं।
1: श्री अठावले लोकभवन में राज्यपाल हरिभाव बागड़े सागे मुलाकात की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कहो कि सरकार पेपर लीक रा वाकया रोकण सारू करडो कानून लाई है और अब पेपर लीक करण रा दोषियां ने 10 साल ताई रे कैद री सजा रो प्रावधान करी चियो है। भारत री सदारत माए ब्रिक्स 2026 माए न्यारा न्यारा कार्य समूह री मीटिंग राखी जा रही है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली रा बारा माए विशेषज्ञ नेटवर्क री दूजी बैठक काल हैदराबाद में शुरू हैला। दूजी कानी जयपुर ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह री बैठक री मेजबानी करेला। आ मीटिंग 21 और 22 अगस्त ने फैला। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि इणु ब्रिक्स सदस्य देशों बीच पर्यटन सहयोग ने बधावो मिलेला। वे बतायो कि मीटिंग में खास तौर पर्यटन हलका में AI काम लेवन अर्स

0: સસ્ટેનેબલ ટુરિઝમ રેબારા માય ચર્ચા કરી જાવેલા
1: G20 की अपार सफलता सफल आयोजन और उसकी देश भर में हुई गूंज के बाद में ब्रिक्स की मीटिंग्स भी देश के विभिन्न कोनों में हो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सुनिश्चित किया है अभी आने वाले सप्ताहांत में भोपाल में ब्रिक्स देशों के सभी सदस्य मंत्री और इसके अतिरिक्त इनवाइटेड कंट्रीज के सभी मंत्री जो है भोपाल में दो दिन तक इस पर चर्चा करेंगे मैं मानता हूं कि जिस तरह से भारत ने जो कुछ पिछले 10-12 साल में जिस गति के साथ में प्रगति करते हुए अचीव किया है भारत का सम्मान पुनः स्थापित हो रहा है ऐसे समय में ब्रिक्स का आयोजन भारत के प्रति सम्मान को और अधिक ऊंचाई प्रदान करने वाला
0: है समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो अरब मौसम प्रदेश में इन दफा हालताएं चौमासारी बिरखा मंदी वेवणु किसाना रे चिंता पत की है जल संसाधन विभाग रे मुजब हालताई केवल फलौदी जिला में घनी जोरदार बिरखा हुई है जबकि बाड़मेर और बीकानेर समेत 5 जिला में बत्तो पानी बचियो है अजमेर जोधपुर और भरतपुर समेत 16 जिला में सामान्य बारिश हुई

0: रब मौसम प्रदेश में इन दफा हालत चौमासारी बिरखा मंदी वेवणु किसाना रे चिंता पतकी है। जल संसाधन विभाग रे मुजब हालत केवल फलौदी जिला में घनी जोरदार बिरखा भी है, जबकि बाड़मेर और बीकानेर समेत 5 जिला में बत्तो पानी बचियो है। अजमेर जोधपुर और भरतपुर समेत 16 जिला में सामान्य बारिश हुई। जयपुर कोटा और उदयपुर समेत 19 जिला में सामान्य कम पानी बरसो है। आज श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सागर सूरतगढ़ सादुल शहर और श्रीकरणपुर में चोखो में बरसियो। भरतपुर में दोपहर पाछे झमाझम बारिश हुई। नदबई उच्चैन भुसावर बयाना और रूपवास हलका में जोरदार बिरखा हुई। आज भरतपुर जयपुर और बीकानेर संभागरा कुछ हलका में मझलाऊ तेज दर्जारी बारिश की संभावना है। हालांकि जोधपुर उदयपुर और कोटा संभाग रा कुछ हल्का माए बारिश माए आज हुई कमी आवण रा आसार है। सावण रा पहला सोमवार रे मौके आज पूरा राज्य माए भांत भांत रा कार्यक्रम राखी जिया। शिवालय माए तड़के पट खुलताई अभिषेक रो सिलसिलो शुरू हो गयो और पूरा वातावरण माए हर हर महादेव रा जयकारा गूंज उठ्या। जयपुर रा ताड़केश्वर महादेव मंदिर माए उज्जैन रा महाकाल मंदिर रिभांत भस्म आरती भी। उदयपुर रा नीलकंठ महादेव मंदिर माए मोटी तादाद माए जात्रु पूग रिया है। कावड़ यात्रावां और भक्तां ने मोटी तादाद न ध्यान रखता थका प्रशासन री ओर उन हिफाजत रा खास इंतजाम करी चिया है। ड्रोन और CCTV कैमरा रे जरिए निगरानी राखी जा रही है। भरतपुर माए नाग पंचमी रे मौके किलारा बांके बिहारी परिक्रमा गेला माए जात्रु नाग देवतारी पूजा अर्चना कर और खुशहाली और बरकत री कामना कीनी। सवाई माधोपुर जिला माए शिवाड़ रा घुष्मेश्वर महादेव और भगवतगढ़ रा अरणेश्वर महादेव समेत न्यारा न्यारा शिव मिंद्रा माए भक्त जल दूध दही और पंचामृतु शिवलिंग रो अभिषेक कर और पूजा अर्चना कीनी। कावड़ियाई पवित्र सरोवराऊ जल्लार भोलेनाथ रो अभिषेक कीनो। सवाई माधोपुर रा जूना शहर माए कावड़ यात्रा निकाली जी वटा सिंजानी पोर भजन संध्या रोई कार्यक्रम है। हनुमानगढ़ रा शिव मिंद्रा माए जात्रु भगवान शिव रे दूध जल और बेल रा पत्ता चढ़ार सुख समृद्धि री कामना कर रिया है। झुंझुनू माए ADM डॉक्टर अजय आर्य बतायो के देवस्थान विभाग री ओरू लावरेश्वर महादेव मंदिर माए सवारे 9-10 बजे ताई रुद्राभिषेक महोत्सव राखी चियो। बाड़मेर जिला रा न्यारा न्यारा शिव मिंद्रा माए मोटी तादाद माए जात्रु भगवान शिव री पूजा अर्चना कर रिया है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। राजस्थान अंगदान जागरूकता रा मामला माए देश माए अव्वल। नई दिल्ली माए उत्कृष्टता पुरस्कार उन नवाजी जियो। RUIDP पीरी और एशियन डेवलपमेंट बैंक री मदद हूँ प्रदेश माए 84 ठोड़ा 9,500 करोड़ रुपया रा खर्च हूँ विकास रा काम कराया जावेला। राज्य रा उत्तराद और उगनी हल्का माए आवता 2 दिन हल्क्यू मझला दर्जा री बरसात रा आसार। और सावन रा पहला सोमवार रे मौके राज्य माए महादेव रा जयकारा री गूंज। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के ठीक 7 बजे हैं। ये समय है ग्रामीण परिवारों के कार्यक्रम चौपाल का।

कूलर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मोटर, पंप सेट, टेलीविजन, कंप्यूटर, इन्वर्टर, आम वर्गा बहुत सारा विद्युत उपकरण अपने दैनिक जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों आप बन चुका है। और जे आपां गी नियमित रूप में देखभाल करा तो यह लंबे टाइम तक सुरक्षित और बेहतर तरीकों की एक काम कर सके। बिजली का उपकरणों की सही देखभाल करनू उपकरणों की जी कार्य क्षमता है बाकी किसान भाई बढ़ है। बिजली की बचत भी हुए और सगी खराबी और दुर्घटना की संभावना की है थोड़ी कम हो जाए। मरम्मत पर होने वालों खर्चों भी आपनों घट जाए और जो को उपकरण है बिंगी आयु भी बढ़ जाए। सारों पहला अपना है वो सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी उपकरण को उपयोग बिंगे देड़ा जी का निर्देश है भी हिसाब में अपन है करना चाहिए। गीला आता हूँ कभी भी बिजली का उपकरण अपन है नहीं छूना चाहिए। खराब या कटेड़ा तारों को उपयोग अपन है नहीं करना चाहिए। सागी की है कि बिजली को प्लग अपा निकालते टाइम तार खींचने की बजाय प्लग पकड़ के अपन है निकाल लेना चाहिए। ओवरलोडिंग अपन है नहीं करनी चाहिए। यूँ की है कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहे और एक ही बोर्ड में बहुत सारा उपकरण अपन है नहीं लगाना चाहिए। सागी की है कि अपन है घर में या खेत में किए गए अर्थिंग की सही व्यवस्था टेमो टेम अपन है कर लेनी चाहिए। और धूल और गंदगी जिकी है बा उपकरण ने सारों ज़्यादा नुकसान भुगावे। पंखा की टेमो टेम पर सफाई अपन करनी चाहिए। फ्रीज के लारे लागड़ी कोयल जिकी है बिना भी अपन ने टेमो टेम पर साफ रखनी चाहिए। कंप्यूटर और टीवी ने सूखे मुलायम कपड़ों अपन ने साफ कर लेना चाहिए। मोटर और पंप पर जमेड़ी जिकी धूल है वह अपन ने हटाता रहना चाहिए। और अपन ने ध्यान रखना चाहिए कि सफाई करने पहला किया गया मुख्य बिजली की सप्लाई जरूर अपन ने बंद कर देनी चाहिए। और किसान भाइयों अचानक वोल्टेज बढ़नू या घटनू अपना उपकरण जगह है वह खराब हो सके इन खातर स्टेबलाइजर को अपन उपयोग करना चाहिए। सर्च प्रोटेक्टर अपन लगाना चाहिए। बिजली चमकने के टाइम संवेदनशील उपकरण ने बंद कर देना चाहिए। अपना जगह ग्रामीण क्षेत्र में पंप सेट और मोटर को ज़्यादा उपयोग अपना किसान भाई करे। मोटर ने अपना किया क्या सूखी जगह पर रखना चाहिए। सागे ही बिंगी जी की वायरिंग है बिंगी नियमित रूप में अपन जांच करनी चाहिए। और मोटर का जगह बेरिंग और दूसरा हिस्सा ये टेमो टेम पर किया अपन निरीक्षण जो को है वो करवा लेना चाहिए। और जरूरी पड़न पर किया जगह अपना बिजली का मिस्त्री एवं मरम्मत भी करवानी चाहिए। सागी किया क्या इन्वर्टर की जगह बैटरी है बिंगो पानी अपना टेमो टेम पर जांच लेना चाहिए। टर्मिनल ने किए साफ रखना चाहिए और बैटरी ने हवादार जगह पर अपन रखनी चाहिए। और ओवरलोड लोडिंग जी की है वह अपन नहीं करनी चाहिए। और रेफ्रिजरेटर को जो को दरवाजो है वो बार बार अपन नहीं खोलना चाहिए। गर्म भोजन सीधा अपन फ्रीज में नहीं रखना चाहिए। और किसान भाइयों गैस लीक होने की स्थिति में जो को विशेषज्ञ मिस्त्री है भी अपन संपर्क करना चाहिए। और रबर गैसकेट की नियमित जांच अपन करवा लेनी चाहिए। और मौसम शुरू होने पहला की एक है पंखे कूलर की अपन सर्विस करानी चाहिए। कूलर की घास अपन नियमित रूप बदलनी चाहिए। पानी की टंकी अपन साफ रखनी चाहिए और मोटर में आवश्यकता अनुसार ग्रीस या तेल टेमो टेम पर देता रहना चाहिए। और बच्चा ने खुला बिजली की तारों अपन दूर रखना चाहिए। बिजली के झटके की स्थिति में सारों पहला मेन स्विच अपन बंद रखना चाहिए। और आग लगने की स्थिति में पानी की बजाय CO2 या ड्राई पाउडर अग्निशामक को अपन उपयोग करना चाहिए। और किसी भी बड़ी खराबी की स्थिति में खुद मरम्मत करने के बजाय प्रशिक्षित तकनीशियन की सहायता अपन लेनी चाहिए। और किसान भाइयों उपकरण की सही देखभाल बिजली बचत भी हुए उपयोग न होने पर उपकरण ने अपन बंद रखना चाहिए। सागे किए गए LED बल्ब को अपन इस्तेमाल करना चाहिए। सागे ऊर्जा दक्ष उपकरण अपन खरीदना चाहिए और नियमित रूप में सर्विस करता रहना चाहिए। तो किसान भाइयों बिजली का उपकरण अपनी सुविधा बढ़ावे पर बांगी सुरक्षा और देखभाल अपनी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी, नियमित सफाई और टाइम पर रख रखाव ना केवल उपकरण की आयु बढ़ावे बल्कि दुर्घटनाओं भी अपने बचावे और बिजली की बचत में भी मदद करे। तो किसान भाइयों बातचीत आप और करशा पर अब टाइम है एक भजन सुन गो तो थाने सुनावा धर्मपाल भारती को गाइडो ओ भजन।

कार्यक्रम सुनने सगला परिवारों ने वेद भाई की घनी घनी राम राम, मोकले मोकले राम राम। किसान भाइयों, आज बे फिर हाजिर हाँ चौपाल कार्यक्रम ले गए और आज अपां सारों पहला बात कर सा बिजली का जका कृषि उपकरण है और सागे अपना जका घरेलू उपकरण है बांगी देखभाल के बारे में बतांगी। तो किसान भाइयों, आज के टाइम में जका अपना कृषि उपकरण है सागे घरेलू पंखो

0: किसान भाइयों, अब आपको बात करा इसे विषय की जो को हर एक सब्जी उत्पादक किसान भाई खातर बहुत ही जरूरी है। बात करा पा सब्जियां में कीट नियंत्रण की, तो जे टेम रहता पा कीटा को सही प्रबंधन ना करा तो वह फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों ने गंभीर रूपों की है प्रभावित करे। तो भारत में किए गए अपने टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, गोभी, लौकी, खीरा, बरगा बहुत सारी सब्जियां जगी है वह अपना किसान भाई उगावे, और आम फसलों पर फल छेदक, माहू, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, तेला, इली और लाल मकड़ी बरगा कई कीट आक्रमण करे, और टेम पर नियंत्रण नहीं होने पर किए गए अपने फसल उत्पादन में 20 से लेके 60% तक की कमी आ जावे। बात करें किसान भाइयों प्रमुख कीट और बांगी पहचान की, तो फल और तना छेदक की जो बात करें तो वो कीट किए के बैंगन, टमाटर और मिर्च में ज़्यादा नुकसान पुगावे। इंगी सुंडियाँ तना और फला में छेद कर दे जकों किए के फल सड़न लाग जाए। बात करा माहू कीट की, तो यह छोटा छोटा हरा या फिर काला रंग का कीट पौधा को रस चूसे, यूं किए के पत्तियाँ मुड़ जाए और पौधा कमजोर हो जाए। बात करा सफ़ेद मक्खी कीट की, तो यह पत्तियाँ को रस चूसने के सागे सागे कई विषाणु रोग भी फैलावे। थ्रिप्स की बात करा ओ कीट पत्तियां और फूलों ने नुकसान पुगावे जकों के कह पौधे की वृद्धि जगी है वह प्रभावित होवे। सब्जियां में किसान भाइयों कीट नियंत्रण खातर केवल रासायनिक दवाओं पर आपने निर्भर रहना सही को नहीं, आपने एकीकृत कीट प्रबंधन IPM सारों प्रभावी और सुरक्षित तरीको है जो को हर एक किसान भाई ने अपनाना चाहिए। सागी के एक आपने सांस्कृतिक उपाय भी करना चाहिए। इनमें किया कि स्वस्थ और प्रमाणित बीजाओं को अपने प्रयोग करना हुआ है, सागी टाइम पर अपन बुआई करनी चाहिए, खेत की नियमित रूप में निगरानी करनी चाहिए और टेमो टाइम पर खरपतवार अपन हटाता रहना चाहिए, सागी संक्रमित पौधा और फलाना अपन नष्ट कर देना चाहिए। बात करें किसान भाइयों यांत्रिक उपाय की, तो कीटग्रस्त पत्तियां और फलाना तोड़ के अपन नष्ट कर देना चाहिए, सागी फेरोमोन ट्रैप और पीला चिपचिपा ट्रैप अपन लगाना चाहिए, सागी प्रकाश प्रपंच यानी लाइट ट्रैप को उपयोग करना चाहिए। जैविक उपाय की जो बात करा तो नीम आधारित कीटनाशकों का अपन उपयोग करना चाहिए, ट्राइकोग्रामा बरगज का मित्र कीट है अंग उपयोग अपन करना चाहिए, ब्यूवेरिया बेसियाना और वर्टिसिलियस बरगज का जैविक उत्पाद है वह अपन उपयोग करना चाहिए। रासायनिक उपाय की जो बात करा तो जरूरी होने पर अनुशंसित कीटनाशकों का अपन प्रयोग करना चाहिए, दवाई की सही मात्रा और टाइम को पालन अपन करना चाहिए, और एक ही दवाई को बार बार अपन उपयोग नहीं करना चाहिए। दवाई छिड़काव के टाइम सुरक्षा उपकरण अपन जरूर पहन लेना चाहिए, और सप्ताह में कम से कम 2 बार अपन खेत को निरीक्षण करना चाहिए। शुरुआती अवस्था में ही कीट अपन नियंत्रित कर लेना चाहिए, संतुलित उर्वरकों को प्रबंधन अपन अपनाना चाहिए, सागी किए के सिंचाई को सही प्रबंधन अपन कर लेना चाहिए, और किसान भाइयों दवाई खरीदते टाइम अधिकृत विक्रेताओं अपन दवाई खरीदनी चाहिए और खरीद को पक्को बिल अपन ले लेना चाहिए। तो किसान भाइयों सब्जियों में कीट नियंत्रण खातर किए गए टाइम पर पहचान, नियमित निगरानी और एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाना बहुत ही जरूरी है। यूँ किया गया अपनी फसल को उत्पादन बढ़ाएगो, लागत कम होगी और अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियाँ अपन प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों बातचीत आप और कर सा प्राप्त था सुनावा सुलोचना खमीर को गायडो ओ गीत।
1: ओम हर चुड़लेरा चिरंगार बलम थारी ओड़ुआ वेरे मिर्गा नैनी रा भरतार बलम थारी ओ।

वो सारा कीट इसे है जका फसलों ने नुकसान पहुँचाने वाला कीटा ने नियंत्रित करे। अन आपा मित्र कीट या फिर लाभदारी कीट जका है बह के वहाँ जे आपां की सुरक्षा करा तो रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम हो सी सगे अपनों फसल को उत्पादन बढ़ेगा और पर्यावरण भी जो है वो सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों मित्र कीट बह हुए जका फसलों का हानिकारक कीटा ने खावे या फिर बंगे जीवन चक्र ने रोके। इनमा प्रमुख है लेडी बर्ड बीटल, क्राइसोपा, मकड़ियाँ, ड्रैगन फ्लाई, ट्राइकोगामा परजीवी ततैया और मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ जी की है वह परागण में सहायक हुए। और किसान भाइयों मित्र कीटांग महत्व की जब बात करा तो हानिकारक कीटांग की संख्या ने प्राकृतिक रूप में कम करे। सगी किए गए अपनों जो को कीटनाशकों पर होने वाला खर्चो है वो भी घटा दे और अपनों जो को पर्यावरण है और माटी की गुणवत्ता बनाए रखे। सगी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि करे और जैविक खेती ने बढ़ावा देवे। बात करें किसान भाइयों मित्र कीटांग का बचाव का क्या उपाय है तो सारों बेला पाने रासायनिक कीटनाशकों को सीमित उपयोग करना चाहिए और बिना आवश्यकता के कीटनाशकों को छिड़काव आपने नहीं करना चाहिए और केवल आर्थिक क्षति स्तर पर ही उचित दवा को अपने उपयोग करना चाहिए। चयनात्मक कीटनाशकों का अपन उपयोग करना चाहिए और इसी दवा का उपयोग अपन करना चाहिए जगह को प्रभाव जो को किया के हानिकारक कीटा पर ही हुए और मित्र कीट जगह है वह सुरक्षित रहे। सगी किसान भाइयों मधुमक्खियाँ और दूसरा परागण करने वाला कीट दिन में सक्रिय रहे इन खातर शाम के टाइम दवाई को छिड़काव करने किए गए अंगी सुरक्षा हुए। सगई समेकित कीट प्रबंधन अपन अपनाना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप, प्रकाश प्रपंच, जैविक नियंत्रण और फसल चक्कर वर्गी तकनीकी को अपने उपयोग करना चाहिए। जैविक कीटनाशकों को अपना उपयोग करना चाहिए। नीम आधारित कीटनाशक, जैव कीटनाशक और सूक्ष्म जीव आधारित उत्पाद मित्र कीटा खातर अपेक्षाकृत सुरक्षित हुए। खेत की जैव विविधता अपने बनाए रखनी चाहिए। डोली पर फूलदार पौधा लगाना चाहिए जो किए गए मित्र कीटा ने पराग और आश्रय मिल सके। सागी किए के अनावश्यक छिड़काव में अपन बचना चाहिए। हरे कीट ने देख के दवाई का उपयोग अपन नहीं करना चाहिए। पहला अपन है बिंगी पहचान करनी चाहिए कि वह लाभकारी है या फिर हानिकारक। संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपन करना चाहिए और सागी किसान भाइयों ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन देणु हानिकारक कीट बढ़ सके और संतुलित पोषण मित्र कीटाणु जो है वो संरक्षण हुए। इन खातर किसान भाइयों ने क्या करना चाहिए कि नियमित रूप किए गए अपन खेत में जाना चाहिए। मित्र और हानिकारक कीटांग अपने पहचान जगी है बस सीख लेनी चाहिए और कृषि विभाग की सलाह के हिसाब में अपने दवाई का प्रयोग करना चाहिए और जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीक जगी है वह अपने अपनानी चाहिए। तो किसान भाइयों मित्र कीट प्रकृति का ईशा प्रहरी है जका बिना किसी लागत गए अपनी फसलों की रक्षा करे। जे आप अंगों संरक्षण करा तो अपनी फसल को उत्पादन बढ़ सी, अपनी लागत घटेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे सी। इन खातर किसान भाइयों मित्र कीट अपन बचाना चाहिए और जको कहेगा अपनी फसल बचे और टिकाऊ खेती भी अपनी बनी रहे। किसान भाइयों बात चीता और कर सियाँ पर आप थाना सुना दिया एक और गीत जकने गायो है सहनाज।

देश की बड़ी आबादी आपकी आजीविका खातर की है क्या खेती पर निर्भर है? बढ़ती जनसंख्या, बदलती जलवायु और सीमित खेती भूमि और प्राकृतिक संसाधना पर बढ़ते दबाव के बीच में खेती उत्पादन बढ़ाना आज के टाइम की सारों बड़ी आवश्यकता बन गई है। केवल खेती को क्षेत्र बढ़ा के उत्पादन बढ़ाना अब संभव को नहीं, यही खातर की है कि अपन ने प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना हो सी। वही खेती उत्पादकता वृद्धि को मूल उद्देश्य है। उत्पादकता को पहले मूल मंत्र की जो बात करा तो अपने उन्नत और प्रमाणित बीजा को उपयोग करना चाहिए। जगह खेती वैज्ञानिक है बंग मानना है कि अच्छी फसल की शुरुआत अच्छे बीजों हुए प्रमाणित और उन्नत किस्मों को बीज ज़्यादा उत्पादन देने के संगे संगे रोग और कीटों को भी बेहतर सामना कर सके। बीज खरीदते टाइम अपन किया के थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाणित बीज अपन लेना चाहिए और सागे किया के बीज क्षेत्र की जिकी जलवायु के हिसाब में अपने किस्मों को चयन करना चाहिए। सागे अपने टाइम पर बीजोपचार अपनाना चाहिए और अंकुरण क्षमता वाला बीज ही अपने बोना चाहिए। अच्छा बीज एकलाई उत्पादन में किए के 15 लेके 20% तक वृद्धि कर सके। किसान भाइयों बात करा उत्पादकता के दूसरे मूल मंत्र की तो वो है माटी परीक्षण और संतुलित उर्वरक प्रबंधन। हरेक खेत की माटी किसान भाइयों न्यारी न्यारी हुए, इन खातर किया कि बिना माटी परीक्षण के उर्वरकों का प्रयोग करना ज़्यादा लाभदायक को नहीं हुए। माटी परीक्षण में अपना पता चले कि खेत में किसा किसा पोषक तत्वों की कमी है और बिंग हिसाब हुई उर्वरकों का प्रयोग करूँ उत्पादन बढ़ा है और सागे किए के लागत भी कम हो जावे। संतुलित उर्वरक प्रबंधन हो किए के इंगमा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास सल्फर जिंक जैव उर्वरक गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद की है वह शामिल है। जैविक और रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग माटी की उर्वरता बनाए रखे। अब बात करें किसान भाइयों उत्पादकता के तीसरे मूल मंत्र की तो वो है जल प्रबंधन। खेती की सफलता को सारो मुख्य आधार पानी है। सागी किए के बदलते मौसम में पानी की कमी बड़ी चुनौती अपने सामने बन जावे, इन खातर किया गया पानी को सही उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। इन खातर किया गया अपने कई प्रकार का उपाय भी कर लेना चाहिए जिया ड्रिप सिंचाई स्प्रिंकलर सिंचाई वर्षा जल सिंचन खेत तालाब मेड़बंदी और मल्चिंग और आवश्यकता अनुसार सिंचाई पानी प्रबंधन का मुख्य उपाय है। कम पानी में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना आज की ज़रूरत भी है। बात करें किसान भाइयों उत्पादकता के चौथे मूल मंत्र की यानी आधुनिक कृषि यंत्रीकरण की। खेती में किसान भाइयों आधुनिक मशीनों का उपयोग श्रम टाइम और लागत तीनों ने के कम करे और आजकल का जो अपना किसान भाई है वह आधुनिक मशीनों का उपयोग करने लाग रहे हैं। जकों के है जिंगमा ट्रैक्टर सीड ड्रिल हैप्पी सीडर जीरो टिलेज मशीन रिपर हार्वेस्टर पावर वीडर ड्रोन स्प्रेयर आदि शामिल है। यंत्रीकरण की है कि टेम पर बुआई और कटाई संभव हो सके, जगह की है कि अपनी फसल उत्पादन में वृद्धि हुए। बात करें किसान भाइयों उत्पादकता के पांचवें मूल मंत्र की तो वो है समेकित कीट और रोग प्रबंधन। फसल में लागन वाला रोग और कीट जगह है वह किसान भाइया की मेहनत ने नुकसान पुगा सके, इन खातर की है कि केवल रासायनिक दवाइयां पर ही अपने निर्भर रहने की बजाय समेकित कीट प्रबंधन जो को है वो अपना लेना चाहिए। इंगमा की ओसी रोग रोधी किस्म सम्मिलित रहे, सागे टाइम पर अपना निरीक्षण करना चाहिए। फेरोमैन ट्रैप प्रकाश प्रपंच जैविक कीटनाशक और आवश्यकता अनुसार रासायनिक दवाओं का अपना उपयोग करना चाहिए। इंगमा लागत कम हुए और सागे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। उत्पादकता को छोटो मूल मंत्र किसान भाइयों फसल चक्र अपनाना है। एक ही खेत में लगातार एक ही फसल बोण किए गए माटी की उर्वरकता घटे। फसल चक्र अपना लेना किए गए किसान भाइयों माटी जी की है स्वस्थ रहे सागी पीएच मान संतुलित रहे कीट और रोग कम लगे उत्पादन बढ़ रहा है नाइट्रोजन की पूर्ति सही तरीके हुए और कणक के बाद दलहन या तिलन की खेती बहुत ही लाभकारी जी की है वह मानी जावे। अगलो मूल मंत्र है जैविक और प्राकृतिक खेती। तो किसान भाइयों गोबर की खाद बर्मी कंपोस्ट हरी खाद जीवामृत बीजामृत और दूसरा जैविक उपाय आपा किया गया माटी की गुणवत्ता बेहतर कर सका। प्राकृतिक खेती की लागत कम करने को भी प्रभावी माध्यम है। सागी किसान भाइयों मौसम आधारित खेती और कृषि विविधीकरण डिजिटल खेती और कृषि विशेषज्ञ की सलाह ले गया आपा किया गया खेती बाड़ी की है बिना आप बढ़ा सका। सागी किया

सरकारी योजना की भी इन अंदर भूमिका रहे, केंद्र और राज्य सरकार की है कि किसान भाइयों खातर बहुत सारी योजना चला रखी है। एक वहाँ मुख्य योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, माटी स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि यंत्रीकरण योजना। और किसान भाई आ योजनाओं को लाभ लेके आपकी फसल को उत्पादन बढ़ा सके। तो किसान भाई वो बातचीता और कर सा, पर आप टेम है एक गीत सुन गो, तो थाना सुनावा मंथन डाबरा को गायडो ओ गीत।

किसान भाइयों, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधन की है बहुत ही कम मात्रा में है, पर जे अंग माऊ किसी भी एक तत्व की जे कमी हो जाए तो फसल की वृद्धि, उत्पादन और गुणवत्ता पर किए गए बहुत ज़्यादा बुरो प्रभाव पड़े है। बात करें किसान भाइयों, सूक्ष्म पोषक तत्व हुए किए तो किसान भाइयों पौधन है जका तत्वों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में हुए बन आप सूक्ष्म पोषक तत्व के वहाँ इंगमा प्रमुख रूपों जस्ता, लोहा, बोरोन, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल प्रमुख हुए। और आपने देश के ज़्यादातर राज्य में किया गया विशेष रूप में जस्ता और बोरोन की कमी जगह है बापाई जावे। जस्ता के जो महत्व की बात करा तो वो पौधे के विकास खातर सारों महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक हुए। वो पौधा में बहुत सारा एंजाइमा ने सक्रिय करे और वृद्धि हारमोन्स के निर्माण में सहायक हुए। इनका प्रमुख काम जो है वह यह है कि जड़ों को विकास करना, कला बनाने में सहायता करना, नई पत्तियों के विकास में सहयोग, प्रोटीन निर्माण, सागी दाना को अच्छो विकास हो करे और पौधे की बढ़वार में तेज़ी आवे। सागी जस्तो जो को है वो धान, कणक, मक्का और फल सब्जियां में इनको विशेष जरूरत पड़े। जस्ते की कमी के लक्षण की बात करें तो वो खेत में जे जस्ते की कमी हो जाए तो नई पत्तियां छोटी रह जाए, पत्तियां पर के पीली धारियां दिखाई देने लग जाए, सागी के पौधा बोना रह जाए और धान में खेरा रोग वर्गा लक्षण दिखाई देने लग जाए, सागे किए के कला कम बने और फसल उत्पादन में कमी आ जाए। इनकी पूर्ति करने खातर अपने जिंक सल्फेट लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर माटी में अपने रलना चाहिए और आवश्यकता होने पर 0.5% जिंक सल्फेट गो पत्तियां पर छिड़काव अपन करना चाहिए और सागे गोबर की अच्छी सडेडी खाद को प्रयोग करना चाहिए और माटी परीक्षण के आधार पर किए मात्रा अपन निर्धारित कर लेनी चाहिए। अब बात करें किसान भाइयों लोहे की, तो लोहो जो को है वो पौधे में क्लोरोफिल बनाने में ज़्यादा भूमिका निभावे और लोहो जो को है वो पर्याप्त मात्रा में जो उपलब्ध नहीं हुए तो पौधा भोजन नहीं कौन बना पावे। क्षारीय और चूनायुक्त माटियाँ में इनकी कमी ज़्यादा देखने की अपन मिले। कमी के लक्षण की जी बात करा तो नई पत्तियां की एक है लोहे की कमी हो, पीली पड़ जाए, पत्तियां की नशा हरी हो जाए और पूरा पौधों कमज़ोर दिखाई देने लग जाए और सागी किए के पौधे की वृद्धि धीमी हो जाए और फल और फूल की एक है सागे कम बने। इनकी पूर्ति करने खातर फेरस सल्फेट को अपन प्रयोग करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार पत्तियां पर इनको छिड़काव करना चाहिए। सागे माटी में जैविक पदार्थ जगह है वह अपन बढ़ाना चाहिए और पानी निकास की सही व्यवस्थापन है रखनी चाहिए। अब बात करें किसान भाइयों बोरान तत्व की, तो बोरान जो को है वो पौधे में फूल, फल और बीज बनाने की प्रक्रिया में बहुत ही आवश्यक तत्व है और वो कोशिकांग है विभाजन और परागण में किए के सहायता करे। और बोरान की किए के सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, आम और अमरूद में ज़्यादा आवश्यकता रहे। बुरान की कमी का लक्षण की जब बात करें तो यूँ उसी किए कि फूल जड़न लगेगा, फल फट जाए, नई कलियाँ सूख जाए, फल विकृत हो जाए, बीज अच्छी तरह कौन बने। इन प्रबंधन खातर आप बोरेक्स को संतुलित उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किए गए वो पर्याप्त हुए और आवश्यकता होने पर 0.2% घोल को छिड़काव करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा अपन कभी नहीं देनी चाहिए क्योंकि बुरान की आवश्यकता भी यानी कि इंगीज की अधिकता है बाबी किसान भाइयों हानिकारक हुए। बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो को है वो प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभावे और वो पौधे में कई जैव रासायनिक क्रिया ने नियंत्रित करे। पत्तियां पर हल्का पीला धब्बा, नशा के बीच पीलोपन, पौधों की धीमी वृद्धि और दाना को किए गए कम विकास हुआ है। इनकी पूर्ति करने खातर मैग्नीज सल्फेट को अपन प्रयोग करना चाहिए। पत्तियां पर छिड़काव लाभकारी रहे और सागी किसान भाइयों माटी परीक्षण के अनुसार मात्रा भी अपन है निर्धारित कर लेनी चाहिए। बात करें किसान भाइयों तांबे की, तो तांबो किए गए पौधे गए एंजाइमा ने सक्रिय करे और वो पौधे की मजबूती और बीज ब्रांड में किए सहायता करे और इनकी कमी का लक्षण अपन है

यह दिखाई देवेगा कि नई पत्तियां मुरझाण लाग जाए, तनांगी वृद्धि कम हो जाए, पौधा कमजोर दिखाई देने लाग जाए, फूल कम लागे। इनकी पूर्ति करने खातर कॉपर सल्फेट को अपन संतुलित उपयोग करना चाहिए और सागी जैविक खाद को प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। तो किसान भाई वो बात चीत आपा और कर सा, पर अब थाना सुनावा राजीव खानगी का ही आलोक रचना।

किसान भाइयों, मूंगफली की फसल के पहला 40-45 दिन जका है वे बहुत ही महत्वपूर्ण हुए, और इन अवधि में किए गए खरपतवारों को नियंत्रण ज्यापा ना करा तो आपने उपज जकी है बिगमा 30-50% तक किए गए कमी आसक है। खरपतवार जका है वह फसलों पानी, पोषक तत्व, प्रकाश और स्थान खातर किए के प्रतिस्पर्धा करे, और सगी किए के बहुत सारा कीट और रोगों का आश्रय स्थल भी किए के बन जावे। खरपतवार नियंत्रण खातर अपा पहली निराई गुड़ाई बुआई के लगभग 20-25 दिन बाद अपन करनी चाहिए, दूसरी निराई गुड़ाई 35-40 दिन बाद अपन करनी चाहिए, और जरूरी होने पर हाथों खरपतवार अपन निकाल देनी चाहिए। जठे किए के श्रमिकों की कमी हुए बठे खेती विशेषज्ञ की सलाह के हिसाब में अपन ने उपयुक्त खरपतवार नाशी को प्रयोग करना चाहिए। टेम पर करेड़ी निराई गुड़ाइयों की है माटी भुरभुरी रेवे और पौधा की जड़ों जो को विकास है वो किसान भाइयों अच्छो हुए। मूंगफली की यह विशेषता है कि फूल आने के बाद डंठल माटी के माँ जागे फलियां बनावे, इन खातर पौधे के आसपास माटी मुलायम और भुरभुरी रहनी चाहिए। फूल आने के बाद किसान भाइयों 35-40 दिन बाद हल्की माटी अपन चढ़ा देना लाभदायक रहे। इंगो लाभ वो है कि पैग जो को है वो आसानी हूँ माटी में प्रवेश कर सके, फलियां को विकास सागे अच्छा हुए, पौधा मजबूत बने और नमी ज़्यादा टाइम तक बनी रहे, और सागे अपन ध्यान रखना चाहिए कि माटी चढ़ाते टाइम पौधा की जड़न की है कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और मूँगफली में क्या है कि ज़्यादा पानी जितो हानिकारक हुए बितो ही हानिकारक पानी की कमी भी हुए। जे फसल वर्षा आधारित है तो वर्षा की स्थिति के हिसाब में अपन खेत को निरीक्षण करता रहना चाहिए। सिंचाई फसल में सामान्यतया नमी बनाए रखना जरूरी है, और सागी किए गए अंगूरन के टाइम फूल आने की अवस्था पर, पेग बनने की अवस्था पर, फलियां बनने की अवस्था पर, और दाना बनने की अवस्था पर, और सागी आ अवस्था में पानी की कमी होने पर उत्पादन में किए गए प्रतिकूल प्रभाव पड़े, और फिर आपा किए गए खेत में पानी कभी जमा नहीं होने देना चाहिए, हल्की और समान सिंचाई अपन करनी चाहिए। बरसात टाइम पर हुए तो सिंचाई अपन रोक देनी चाहिए, पानी निकासी की साग अपन सही व्यवस्था रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आपने कहना है बाजार भाव भी आड़ा है तो वह भी थाना पता सा, पर पहला सुन लिया कमलेश भारद्वाज की गाड़ी आ रचना।

किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।

0: किसान भाइयों अपना कहना है बाज़ार भाव भी ऐड है तो बाकी बात कर लिया तो सारों पहला बात करा आप श्री गंगानगर अनाज मंडी के भाव की। तो अठे कणक का भाव रहा 2660 हो ले गए 2730 रुपया प्रति क्विंटल। चना का भाव रहा 5315 हो ले गए 5621 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों का भाव रहा 7450 हो ले गए 7767 रुपया प्रति क्विंटल। ग्वार का भाव रहा 5500 हो ले गए 5850 रुपया प्रति क्विंटल। जौ का भाव रहा 2470 ले गए 2501 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग का भाव रहा 5800 ले गए 6471 रुपया प्रति क्विंटल। साकी सूरतगढ़ अनाज मंडी के भाव की बात करा तो कणक का भाव रहा 2575 ले गए 2801 रुपया। चना का भाव रहा 5500 रुपया प्रति क्विंटल। और इंग ऐसा गई आज को टाइम इतो ही तो किसान भाई वेद भाई ने देव आ गया। राम राम सा राम राम।
1: अभी ग्रामीण परिवार चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे संसद समीक्षा।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय

मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद MSME क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए

मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाईं, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकाट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्जवल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगुदेशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से, अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एम

0: सैमिक क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते ना देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफ़ायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। मीडिया
1: वेव 326.79 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DRM चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। कार्यक्रम सुने एक ही फिल्म से। सभी सुनने वालों को आज नमस्कार, संजय बैद की ओर से। दोस्तों, दो पंक्तियों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दुनिया की रिवायत से बेगाना नहीं हूं, छेड़ो न मुझे, मैं कोई दीवाना नहीं हूं। इस कसरते गम पर भी मुझे हसरते गम है, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हूं। मित्रों, ये पंक्तियां मशहूर शायर शकील बदायूनी की, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 3 अगस्त को 1916 में बदायूं में हुआ। हालांकि बैकग्राउंड उनका फिल्मी नहीं था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें घर पर ही अरबी, उर्दू, फारसी और हिंदी की शिक्षा दिलाई। एक दूर के उनके रिश्तेदार थे, वो कविता लिखा करते थे, जिससे शकील में भी काव्य के प्रति आकर्षण पैदा हुआ और उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में इंटर कॉलेज काव्य संगोष्ठी में भाग लेना आरंभ कर दिया और अक्सर वो उसमें विजयी भी रहते थे। शकील 1944 में फिल्मों में गाने लिखने के लिए मुंबई चले गए, जहाँ उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता AR कारदार के साथ हुई और वहीं नुशा

से वो मिले। उन्होंने शकील को कहा कि वो एक पंक्ति में अपनी काव्य प्रतिभा को उजागर करे। तब शकील ने लिखा, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की आग लगा देंगे। नौशाद ने तुरंत उन्हें कारदार की फिल्म दर्द, जो 1947 में आई थी, उसमें गीत लिखने का अवसर दिया और उन्हीं का लिखा पहला गीत बहुत सफल रहा, जिसे उमा देवी यानी टुनटुन ने गाया था और गीत के बोल थे, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। खैर, शकील के बारे में जितनी भी बात करें कम है, आज के इस प्रोग्राम में उनकी फिल्म हमने चुनी है, दिलीप कुमार की फिल्म दिल दिया दर्द लिया, जिसके सारे गीत शकील ने लिखे और संगीत तैयार किया नौशाद ने। शुरुआत करें इस पहले गीत के साथ, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी।

दोस्तों, फिल्म दिल दिया दर्द लिया 1966 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एमिली ब्रोंटे के उपन्यास वुथरिंग हाइट्स पर आधारित थी। फिल्म का निर्देशन किया अब्दुल रशीद कारदार और दिलीप कुमार ने। इस फिल्म को लिखा कौशल भारती ने और मुख्य कलाकारों में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, रहमान, प्राण, जोनी वॉकर और स्प्रू रहे। छायांकन किया

का दिवेचा ने, संपादक थे MS हाजी। फिल्म ज्यादा चली नहीं, लेकिन फिल्म का एक एक गीत सुपरहिट हुआ था। फिल्म में लगभग 8 गीत थे और सभी गीत हिट रहे थे। फिल्म के सारे नगमे शकील ने लिखे, संगीत नौशाद ने तैयार किया था। इन कलाकारों के अलावा फिल्म में श्यामा थी, सज्जन थे, उमा देवी ने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, मुराद ने भी बेलापुर के महाराजा के रूप में काम किया था। यह फिल्म 1967 में 2 श्रेणियों में नामांकित हुई, फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर दिलीप कुमार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में प्राण को नॉमिनेट किया गया था। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, जिसे लता ने अपनी आवाज दी थी।

दोस्तों, फिल्म की कहानी इस तरह से है। एक गांव में एक ठाकुर स्प्रू रहते हैं जो विदुर हैं। उनके एक लड़का रमेश है प्राण और एक लड़की रूपा वहीदा रहमान। उन्होंने एक अनाथ बच्चे शंकर दिलीप कुमार को भी गोद ले रखा है जो असल में एक राजा का पुत्र है। रमेश शंकर से नफरत करता है और उसको बात बात पर मारता पीटता है। ठाकुर की मृत्यु हो जाती है, सभी बच्चे बड़े हो जाते हैं। रमेश के शंकर पर जुल्म जारी रहते हैं, लेकिन शंकर चुपचाप सब कुछ सह लेता है क्योंकि वो रूपा से प्यार करता है। और जब रमेश को इस बात का पता लगता है तो वो रूपा की सगाई एक अमीर खानदान में सतीश यानी रहमान के साथ कर देता है और शंकर को एक टीले से मार पीट कर फिंकवा देता है। रमेश का एक तवायफ तारा के यहाँ आना जाना रहता है, जहाँ उसे नशे की लत भी लग जाती है और नशे के चक्कर में वो अपनी सारी जायदाद तारा के नाम कर देता है और पैसे पैसे को मोहताज हो जाता है। कुछ साल बाद शंकर बेलापुर का राजा बनकर वापस लौटता है। वो रमेश को माफ़ करना चाहता है क्योंकि वो रूपा से शादी करना चाहता है, लेकिन वहाँ पहुँच कर वो ये देखते हैं कि सब कुछ बदल गया है। रूपा की सगाई हो चुकी है, उसकी शादी होने वाली है। रमेश अब भी शंकर से उतनी ही नफरत करता है।

लेकिन अब शंकर का जो प्यार था वो नफरत में बदल जाता है। वह रमेश, रूपा, सतीश और सतीश की बहन माला से बदला लेने की ठान लेता है। रूपा को भला बुरा कहता है और रूपा को नीचा दिखाने के लिए माला से प्यार का नाटक भी करता है। उनसे बदला लेने के लिए अलग अलग योजनाएं बनती हैं, लेकिन अंत में प्यार की जीत होती है। रूपा और दिलीप कुमार यानी शंकर का मिलन हो जाता है। कार्यक्रम का एक और गीत हम आपको सुनवा दें रफी की आवाज़ में।

एक ही फिल्म से। अभी आप इस कार्यक्रम में फिल्म दिल दिया दर्द लिया के नगमे और जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब आप कार्यक्रम सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन और उसके बाद बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों के भव्य समापन समारोह की, जहां भारतीय खिलाड़ियों के बाद भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया ने देखी है और भारत ने एक और कदम बढ़ाया है 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दिशा में। और गुजरात के अहमदाबाद तैयार है विश्व के दूसरे सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए। इसके बाद कार्यक्रम में बात होगी भारतीय दल के प्रदर्शन की, जिसने सीमित अवसरों पर बड़ी सफलताओं में बदलकर 39 पदक देश के खाते में जोड़े और ध्वस्त किया है कई स्थापित कीर्तिमानों को। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता की, जिसका कल भव्य समापन हुआ नई दिल्ली में। और अंत में नजर डालेंगे दक्षिण कोरिया में भारतीय चुनौती रखने जा रही देश की बैडमिंटन टीम पर। सबसे पहले कार्यक्रम में आज बात की जाए राष्ट्रमंडल खेलों की, जिनका कल भव्य समापन समारोह के साथ समापन हो गया। इसके साथ ही भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की औपचारिक मेजबानी सौंप दी गई है। इस भव्य समापन समारोह के दौरान भारत के शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिली, जहां भारतीय गायक शंकर महादेवन, ऋषभ शर्मा और भूमि त्रिवेदी ने अपनी आवाज से ग्लासगो में शानदार समा बांधा। सुनते हैं अतर सईद की ये रिपोर्ट।

0: दर्शकों से खचाखच भरे ग्लासगो के ओवीओ हाइड्रो में कल 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। वंदे मातरम, शिव स्तोत्र और मशहूर गाना सुनो गौर से दुनिया वालों पर हजारों भारतीय दर्शक अपनी जगह पर खड़े होकर झूमते नजर आए। विदेशी दर्शकों ने भी भारतीय कार्यक्रमों का भरपूर लुत्फ लिया इस दौरान राष्ट्रमंडल मशाल स्कॉटलैंड से भारत को सौंपे जाने के समय स्टेडियम का दृश्य देखने लायक रहा। इस शानदार समारोह ने खेलों के 11 यादगार दिनों का समापन किया और राष्ट्रमंडल अभियान के एक नए अध्याय का आगाज किया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा प्रतीकात्मक रूप से सौंपे जाने के साथ ही 2030 में अहमदाबाद में खेलों के ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण की मेजबानी की दिशा में भारत की यात्रा की शुरुआत हो गई। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को भी सीडब्ल्यूजी ध्वज थमाया गया।
1: अहमदाबाद में 2030 में 100वां कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जाएगा और हाल ही में प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद हैं भारत से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पीटी उषा जो प्रेसिडेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गुजरात के हर्ष संघवी।
0: समापन समारोह में स्कॉटलैंड की संस्कृति की भी बड़ी झलक देखने को मिली। मशहूर रॉक बैंड सिंपल माइंड्स, डांस ग्रुप डाइवर्सिटी और कई मशहूर स्थानीय कलाकारों ने संगीत, नृत्य और विजुअल स्टोरी टेलिंग के जरिए ओवीओ हाइड्रो में धूम मचाई। इसके बाद भारतीय संगीतकार ने अलग अलग गानों पर अपनी प्रस्तुति देकर पूरे अरीना में समा बांध दिया। राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी चैंपियन जैस्मिन लेम्बोरिया ने तिरंगा थामा और सभी 74 राष्ट्रमंडल देशों और क्षेत्रों के एथलीटों ने दोस्ती, एकता और खेल कौशल के जश्न में एक साथ मार्च किया। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा औपचारिक रूप से अहमदाबाद को सौंपा गया, जो मेजबानी की जिम्मेदारी के हस्तांतरण का प्रतीक था। 2030 का आयोजन ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि ये कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं वर्षगांठ होगी। अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, जहां भारत दुनिया के सामने अपनी खेल और आतिथ्य की संस्कृति की शानदार झलक पेश करेगा।

0: तो आपने अतर सईद की ये रिपोर्ट सुनी, और अब अहमदाबाद भी कह रहा होगा कि अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेल 2030 नू माटे तैयार छे। तो इसी के साथ भारत ने मेज़बानी की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के साथ ही अब दुनिया की निगाहें इस अहमदाबाद की तरफ मुड़ गई हैं, जो 2030 में विश्व के इस दूसरे सबसे बड़े खेल आयोजन की मेज़बानी करेगा। ग्लासगो में खेलों के भव्य समापन समारोह में औपचारिक राष्ट्रमंडल मशाल हाथ में थामने के साथ ही गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर श्री संघवी ने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों के इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है।
1: इन 2030 द कॉमनवेल्थ विल सेलिब्रेट इट्स सेंटेनरी 100 इयर्स ऑफ ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर थ्रू स्पोर्ट एंड इंडिया बीन एंट्रस्टेड टू होस्ट द हिस्टोरिक एडिशन दैट इज अ सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वी एम्ब्रेस विथ डीप ग्रेटिट्यूड। अहमदाबाद इज रेडी, अवर सिटी इज कॉम्पैक्ट वेल कनेक्टेड एंड वाइब्रेंट विथ पॉसिबिलिटी।
0: तो कहा जा सकता है कि तमारू स्वागत छे, अहमदाबाद बिल्कुल तैयार है स्वागत करने के लिए। और इस दौरान श्री सांघवी ने कहा कि भारत बड़े वैश्विक आयोजनों के लिए उत्साहित है, और वैश्विक खेल राजधानी के रूप में भारत अपनी पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: अहमदाबाद 2030 इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन अ लार्जर एस्पिरेशन। इंडिया इज कमिटेड टू एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ स्पोर्टिंग कैपिटल ऑफ अ ग्लोबल स्टेज। वी एस्पायर टू होस्ट द ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स इन अहमदाबाद इन 2036। द कॉमनवेल्थ गेम इज अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट एट स्केल इंडिया इज रेडीनेस टू डिलीवर वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग इवेंट्स फॉर एथलीट्स, फॉर स्पेक्टेटर्स एंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड।
0: तो भारत ने तो अपनी पहचान विश्व में बनाई ही पहचान बनाई है। उन भारतीय खिलाड़ियों ने जो जब जब ग्लासगो के मैदान पर उतरे तो उनकी नज़र थी

किसी पदक पे, किसी रिकॉर्ड पे, और वो सब कुछ ध्वस्त होते नजर आए एक के बाद एक। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने अभियान का समापन 39 पदक के साथ चौथे स्थान पर किया, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। आइए सुनते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ये रिपोर्ट।

0: भारत ने 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चले इस आयोजन में कुल 39 मेडल के साथ चौथा स्थान हासिल किया। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने हर खेल में कई ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाए और देश का गौरव बढ़ाते हुए पोडियम पर तिरंगा लहराया। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में देश के नाम 16 पदक रहे, इनमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत और 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। जबकि स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक भारत की झोली में डाला। मुक्केबाजी में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा और सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इस खेल में भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिनमें 3 रजत पदक भी शामिल है। भारत ने जूडो में भी अपना भरपूर दमखम दिखाया। अस्मिता डे और हर्ष सिंह दोनों ने इस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक अपने नाम किए। जूडो में भारत ने कुल 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य से समेत कुल 4 पदक जीते। भारोत्तोलन में भारत की झोली में कुल 8 पदक आए। मीराबाई चानू इस खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकलौती भारतीय रही। पुरुषों ने 4 रजत पदक अपने नाम किए, जबकि महिलाओं ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में झंड कुमार ने भारत के लिए पदक जीतकर पदक तालिका में देश का पर्दापण कराया। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जब भी भारतीय खिलाड़ी उतरे, उनकी नजर थी पदक पर। और इस खेल आयोजन से पहले लगातार ये चर्चाएं थी कि कई खेलों को सूची से हटाया गया है, भारत कैसा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन भारत ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से बेहतर परफॉर्मेंस किया है और देश दुनिया से, राजनीति से, सिनेमा से, हर जगह से आज इन खिलाड़ियों को, अपने इन स्टार्स को शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारतीय खिलाड़ियों को ग्लासगो के इस यादगार प्रदर्शन पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सभी पदक विजेताओं और खेलों के दौरान योगदान देने वाले दल के प्रत्येक सदस्य को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश के खिलाड़ियों के भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में देश को एक और गौरवान्वित करने के मौके दिए हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का इस तरह का बेमिसाल प्रदर्शन अनगिनत युवा भारतीयों को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय दल के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पूरे खेलों के दौरान हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने बेहतरीन कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण दिखाया है और उनकी ये कड़ी मेहनत हमारे युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। खेल मंत्री ने कहा है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान भारत ने हासिल किया है। श्री मांडविया ने कहा कि हमें हर उस एथलीट, कोच और सपोर्ट स्टाफ पर गर्व है जिसने तिरंगे के सम्मान के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। संसद के दोनों सदनों ने भी भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने क्या कहा, सुनते हैं।
2: On behalf of the House and on my own behalf, I extend our heartiest congratulations to all the athletes, coaches, support staff, the Indian Olympic Association, the Paralympic Committee of India and the National Sports Federations. Our medal winners will surely serve as an inspiration not only to the budding sports talent in our country but also to every young Indian to pursue excellence through hard work, discipline, determination and perseverance.
1: वहीं दूसरे सदन लोकसभा में भी अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है।
3: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
1: 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समाप्त हो गई।

0: 25 से अधिक देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प ले चुकी है। इस दौरान उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
1: हमारे प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीत करके दिल्ली को दिया, भारत को दिया, और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये बात कही है, केवल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है बल्कि ऐसे गेम्स की मेजबानी भी करनी है। मुझे खुशी है कि दिल्ली ने ये मेजबानी बड़े मन से की है।
0: तो एक शानदार आयोजन और जिसकी भारत ने मेज़बानी की है। और अब बात की जाए बैडमिंटन की, जहां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। हाल ही में ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा और स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे।
2: ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। उनके अलावा अनमोल खरब, मालविका बंसोड, इश्रानी बरुआ, श्रेयांशी वली शेट्टी, रक्षिता रामराज, अश्मिता चालिहा, तान्या हेमंत, आकर्षी कश्यप और मानसी सिंह भी महिला सिंगल्स दल का हिस्सा है। वही पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, थारून मन्नेपल्ली, मिथुन मंजुनाथ, रौनक चौहान और सनेत दयानंद पर नजरें होंगी, जबकि एस शंकर सुब्रमण्यन और तुषार सुवीर क्वालिफायर के रास्ते मुख्य ड्रॉ की राह तलाशेंगे। भारत ने पुरुष डबल्स में 3 और महिला डबल्स में 2 जोड़ियों को उतारा है, जबकि मिक्स डबल्स में भारत की 3 जोड़ियां मैदान में हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जापान में शुरू होने जा रहे अगले महीने एशियाई खेलों से पहले भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक और बड़ा मंच, जहां वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। और अब बात की जाए कुश्ती की, जहां अजरबैजान के बाकू में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की फ्री स्टाइल टीम ने 13 पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। इसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। सितेंद्र मलिक ने कल चैंपियनशिप के कड़े मुकाबले में रूस के सर्गेई कार्मिलियन को 3-1 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता और 2025 के अपने अंडर 17 विश्व खिताब को भी उन्होंने बरकरार रखा है। और क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी की आगामी सीजन 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होगी। तो श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
4: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में

0: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
1: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से

0: हराया।
1: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
3: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज

0: AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
1: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर

0: द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनयिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by-polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar, BJP retains Manjalpur in Gujarat, Congress keeps Datia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. Young cyclist Harshita Jhakar becomes first Indian woman to feature at Tour de France Fama in Switzerland. And now the news in detail. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m, Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में भी आप नुसरत फतेह अली खान को सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम पब्लिक स्पीक हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। UPI, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, OTP का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहाँ मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भारत में सबसे आम तीन तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी हैं? डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगा कर आता है।
0: जी
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये साइबर फेंसेस देख रहे हैं
0: जी,
1: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल रेस्ट जो होता है, उसमें भी जितने भी

0: साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं. जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो एआई द्वारा जनरेटेड होता है. जो आवाज़ होती है वो एआई द्वारा जनरेटेड होती है. अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है, और अब जो ठगाई करनी है वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
1: तो पकड़ नहीं
0: आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और साइबर क्रिमिनल मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा. तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है.
1: जी बिल्कुल. तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए तीन रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
0: तीन रेड फ्लैग. पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है. दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है. और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है. बॉटम लाइन ये है कि आज हमारा जो ना कोविड-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि दो चीज़ें कोविड-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है. एक है डर और दूसरा है पैनिक. साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही कारण वर्ष है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हों, चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हों, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं.
1: बिल्कुल. और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह. महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से.
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय, नमस्कार.
0: नमस्कार
2: महोदय. मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी ओटीपी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है. आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है. तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास दो विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं. पहला, कुछ हो या ना हो अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए. नंबर है 1930 1930. ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है. अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी. अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है.
1: जी,
0: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब यह है कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा.
1: जी,
0: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे. लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है. अपने घर बैठे हुए, बिना थाने जाए हुए, आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है. ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
1: उसके बारे में
0: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीज़ें आप याद रखिए, 1930 1930 और cybercrime.gov.in. क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं. एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
1: जी,
0: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं. तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है, या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूँ, विक्टिम बन गया हूँ साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए. बहुत इफेक्टिव हैं, और मोर इम्पॉर्टेंट, सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है.
1: बिल्कुल. और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन. विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में. पूछें क्या सवाल है आपका.
3: जी नमस्कार सर.

0: मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से
1: जी।
0: सर मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है?
2: विपिन जी, आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कुछ चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है तो, और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
1: जी,
2: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब FD 7% देती है और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं, और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है, अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
1: जी,
2: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए करीबन 12,300, तो भैया
1: पहले ही काट लिया।
2: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12% इंटरेस्ट। तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं, प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार
3: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ
1: जी। सवाल पूछिए।
3: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है?
2: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है
1: जी।
2: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर पकड़े हो गए, और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं, अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत, शक्की हो जाइए। दूसरी आदत, कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता

0: धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशंस होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है, आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है, आस्था ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच हैं जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से, अमित उपाध्याय। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: जी नमस्कार विशेषज्ञ जो भी हमारा टीम है, मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लूप में उसको सर्कुलेट करके बना दिया था, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग को पीएफ कटता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाए, तो उसको लेकर थोड़ा सा।
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है जी। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं, आपकी कितना टोटल अमाउंट तो आया है, कितना आगे बढ़ने वाला है, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिरहाने पे जो दूध है आके पी जाएगी। तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूँ कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो, अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हूँ। इसके अलावा सावधानी सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूल मंत्र रहेगा।
1: बिल्कुल, तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से।
3: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर को भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी।
3: और सर मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट की अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं, है ना, रोक टोक की। तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं, क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं, ताकि किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, हत्याएं कर रहे हैं ये लोग, ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई किसी युद्ध से कम है क्या ये?
0: देखिए, बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए, इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी। लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए, ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है, इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पस।

0: एक्सेस, अब एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए, रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी, थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ, इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी, बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी उसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज़रा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नज़र नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कॉपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज़्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
1: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा।
0: जी,
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: मुकेश कुमार जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है।
2: नमस्कार
1: जी।
0: जी नमस्कार,
2: मैं विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवा छत्तीसगढ़ जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
1: जी
2: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
1: जी,
2: मेरा बटन का फोन है।
1: वेरी गुड।
2: और ये बटन के फोन में धोखाधड़ी हो सकती है क्या, ये सवाल मेरा है।
0: देखिए, धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल,
0: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए। तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं हैं, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाज़त के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर भेजते हैं, बेचते हैं। और फिर यही कारणवश है, देखिए मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि सर बॉम्बे की चीप फ्लाइट ले लीजिए या ये यहाँ पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तब वो फीचर फोन होता है, फीचर फोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है, कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
1: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या करने होते हैं, और 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
0: देखिए, जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
1: जी,
0: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है, तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है। कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है, आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला है, बैंक
1: में जाना चाहिए।
0: भाई बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब आपको पता लगता है कि आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है। अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया फिर तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
3: जी, मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
1: जी नमस्कार।
3: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं, यदि

0: कि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाएं, थोड़ा सा बताइएगा।
1: देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिला हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहें और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
2: जी,
1: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ, एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है, ये इंटरमीजरीज हैं, उनका दायित्व बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है।
2: बिल्कुल।
1: और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए, बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए, बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलिजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है। यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत। और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
2: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है।
3: जी जी, नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
2: जी जी, सवाल पूछिए।
3: जी, प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
1: जी,
3: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें? अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
1: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपको मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ये होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फ़ोन चुराते हैं, फिर आपके नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं। और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे ओटीपीज आपके अकाउंटों में जाने हैं, आपके फ़ोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है। एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फ़ोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफकोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है। तो आप इसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ब्लॉक करवाना ज़रूरी है और डुप्लीकेट सिम बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
2: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी, क्या सवाल है आपका?
4: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला
2: जी।
4: और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी

0: कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
1: देखिए, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोज़मर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फ़ोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका

0: नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी OTP CVV पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का, जिन हमसे आज जुड़े हैं, और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे दो भेंट वार्ताएं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी अभिषेक चौधरी से श्यामवीर सिंह की बातचीत। यह आकाशवाणी जैसलमेर का अंशदान है।
1: श्रोताओं, इस समय हमारे साथ हैं बास्केटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अभिषेक चौधरी। अभिषेक जी, हम आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सर।
1: अभिषेक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब शुरुआत की आपने खेलने की, तो बास्केटबॉल ही क्यों चुना? क्या खास लगा आपको, या अन्य खेलों को भी आपने ट्राई किया था, आप इसमें कंफर्टेबल थे, तो कैसे शुरुआत हुई?
2: सर, जब मैं छोटा था तब मेरे भैया बास्केटबॉल खेलते थे, तो मैं उनको देखता था। जिस अकेडमी में खेलने जाते थे मैं उनके साथ जाता था, देखता था बस। फिर मैं क्रिकेट में गया, बैडमिंटन में गया, मैंने थोड़ी दिन बास्केटबॉल भी खेला। फिर मेरे को बास्केटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, मज़ा आता था मतलब। तो मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन करने का सोचा कि यही खेलते हैं एक ही गेम। पढ़ाई भी थी उस टाइम, फिर मेरे को किसी ने बताया कि इसमें फ्यूचर भी होता है, अपन बास्केटबॉल में आगे भी बढ़ सकते हैं।
1: अच्छा, शुरुआत में जब हम ऐसे ही खेलते हैं एक शौक के तौर पर, और फिर जब अच्छा लगने लगता है, फिर कहीं कोई जैसे बड़े बुजुर्ग या हमारे स्कूल के टीचर देखते हैं कि बच्चा अच्छा खेल रहा है, तब सलाह देते हैं कि आप इसको ट्राई करो और अच्छा प्रशिक्षण लेके आगे जाओ। तो पहली बार आपको किसने देखा अच्छा खेलते हो, किसने सलाह दी कि इसको करियर के रूप में ले सकते हो?
2: ये सर, मेरे भैया खेलते थे, फिर उनने मैं उनके साथ खेलने लग गया थोड़ी दिन बाद। फिर उनको लगा कि मैं इसमें खेल सकता हूँ, मेरे को भी मज़ा आने लग गया था। फिर मेरे को उनने बताया कि उनको थोड़ी नॉलेज थी इस बारे में, तो उनने मेरे को बताया कि इसमें ये होता है वो।
1: मतलब आपकी पारिवारिक

0: पृष्ठभूमि रही, पहले से इस खेल के बारे में आपको जानकारी थी और इसलिए आप यहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा, जो बच्चे जिनको कुछ भी पता नहीं होता, परिवार में कोई खिलाड़ी भी नहीं रहा होता और कोई सलाह देने वाला नहीं होता, तो वो बच्चे यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, अकादमी में कैसे अपना एडमिशन ले सकते हैं?
1: सर, आजकल सबके पास फ़ोन अवेलेबल है, तो जब भी ट्रायल्स होती है अकेडमी की, ये बहुत बेस्ट अकेडमी है राजस्थान की बास्केटबॉल की, बहुत मेडल्स लगते हैं यहाँ पे, तो फ़ोन पे जैसे ही अपना सेशन ख़त्म होता है स्कूल का, तो फ़ोन पे सब कुछ अपलोड हो जाता है कि कौन सा बच्चा किस गेम में जाना चाहता है, वो उसकी ट्रायल दे सकता है। हर गेम की अकेडमी है, क्राइटेरिया पता चल जाता है क्या क्या चाहिए अपन को ट्रायल देने के लिए, अगर वो है तो अपन ट्रायल दे सकते हैं। जयपुर में SMS स्टेडियम में ट्रायल होती है।
0: जो ट्रायल होती है वो पात्रता क्या है, जो पढ़ने वाले ही बच्चे देते हैं या जो मान लो कभी स्कूल गया ही नहीं, गांव में रह रहा है या कोई काम कर रहा है, क्या वो भी ट्रायल दे सकता है?
1: नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने वाला भी दे सकता है, जो गांव में रहता है वो भी दे सकता है, बस उसको खेलना आना चाहिए थोड़ा बहुत, बाकी तो सीख जाएगा वो।
0: और उम्र का क्या रहता है, कितना होनी चाहिए मिनिमम और अधिकतम क्या है
1: उनका? सर, बास्केटबॉल एकेडमी में तो अंडर 14 से सर लेते हैं, अंडर 14 के बच्चे लेते हैं और हाईएस्ट अंडर 19 जूनियर तक के बच्चे लेते हैं।
0: अच्छा, यानी जो पहली बार अगर बच्चा कोई आ रहा है अकेडमी में तो 14 साल से कम होना चाहिए?
1: 14 साल
0: और मान लो जूनियर स्तर पर है तो 19 से
1: कम होना चाहिए।
0: अच्छा, जैसे कि आपने वहाँ पर ट्रायल पास करने के बाद में पास कर लिया और आप किसी दूसरे क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद में जो मान लो आपको जैसलमेर मिल गया, तो फिर यहीं पे एडमिशन लेना पड़ता है क्या पढ़ाई?
1: यस सर, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन होती है, स्पोर्ट्स, खाना पीना रहना सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो जैसे यहाँ पे आते हैं तो सर यहाँ पे जैसलमेर में एडमिशन दिलवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लेना इसलिए ज़रूरी क्योंकि स्कूली स्टेट नेशनल जो भी होता है वो जैसलमेर अकेडमी से खेलना होगा, जैसलमेर से।
0: अच्छा, सेशन क्या रहता है स्पोर्ट्स का और पढ़ाई का, तो फिक्स रहता ही है।
1: यस सर,
0: स्पोर्ट्स का जो सेशन क्या रहता है?
1: स्पोर्ट्स का सेशन सर अभी जैसलमेर अकेडमी में तो सुबह ट्रेनिंग होती है सर हमारी, 2 and 2.5 hours।
0: सुबह कितने बजे शुरुआत होती है?
1: सुबह सर हम उठते हैं 4:30 बजे, 5 बजे ग्राउंड टाइम होता है हमारा, क्योंकि अभी स्कूल्स ओपन है और जैसे जैसे हम थोड़े दिन हो जाते हैं, अभी एकेडमी खुली ही है तो जैसे टाइम हो जाता है तो 4:30 भी ग्राउंड टाइम हो जाता है, अगर टूर्नामेंट्स क्लोज आते हैं तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो 4:30 बजे आते हैं फिर ग्राउंड।
0: और शाम को?
1: शाम को सर जैसे जिसको पर्सनल प्रैक्टिस करनी है, इंडोर हमेशा अवेलेबल है 24/7, कभी भी जाके कोई प्रैक्टिस कर सकता है, जिसको दिन में प्रैक्टिस करनी है वो सेल्फ प्रैक्टिस कर सकता है। शाम को जो सर की तरफ से कोचिंग होती है वो 5 बजे से होती है और टूर्नामेंट क्लोज होते हैं तो 4 बजे से होती है, और दिन में भी अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिस करनी है तो सर बता देते हैं।
0: अच्छा, जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तब क्या ये सुबह की और शाम की प्रैक्टिस बंद हो जाती है?
1: बंद तो नहीं होती सर, बिल्कुल बंद नहीं होती, क्योंकि रेगुलर रहना तो ज़रूरी है गेम में भी, मतलब ग्राउंड टाइम जैसे पहले हम 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो उसको सर 2 घंटा कर देते हैं, बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, इस वजह से प्रैक्टिस कम करनी पड़ती है एग्ज़ाम के टाइम।
0: अच्छा, स्पोर्ट्स के जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक रूप से और यूँ कहें कि मानसिक रूप से भी एक स्ट्रांग होते हैं। और जो यूँ कहें कि उनको समय भले ही कम मिलता हो पढ़ाई का, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना होता है, लेकिन फिर भी अच्छा आजकल परफॉर्म कर रहे हैं, आपने भी 10th में 60% जो अंक हासिल किए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो देखिए, अगर आप बच्चा हमारे स्पोर्ट्स के साथ साथ फर्स्ट डिवीज़न ला रहा है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स में हमको जाएंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई हमारी अंक प्रभावित होंगे, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे?
1: सर, सबसे पहली चीज़ है सर मेरे हिसाब से एजुकेशन ज़रूरी है थोड़ी बहुत। अगर आपको स्पोर्ट्स में करियर बनाना है तो एजुकेशन भी ज़रूरी है, सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को, एजुकेशन भी ज़रूरी है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन सिर्फ स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स में तो एजुकेशन के लिए अपने पास टाइम नहीं, टाइम है, बस पढ़ने का मन होना चाहिए थोड़ा बहुत फोकस। अब बस लोग बोलते हैं कि ऐसा कठिन है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे, पर टाइम अवेलेबल रहता है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, और मेरे हिसाब से मेरे परसेंटेज कम है।
0: नहीं देखिए, स्पोर्ट्स आप इतना राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे हो और 60% ला रहे हो तो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में बच्चे होते हैं उनका अतिरिक्त नौकरी में किसी में जाओगे तो उनको कोटा होता है, तो
1: यस सर, स्पोर्ट्स कोटा होता है,
0: हाँ, तो उसमें आपको ज्वाइनिंग जल्दी से मिल जाती है।
1: यस सर,
0: तो आप राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बार खेलने गए?
1: सर, मैं राष्ट्रीय स्तर पर 5 बार खेला।

0: उसमें से मेरे पास दो में मेडल है, एक में सिल्वर मेडल, एक में ब्रॉन्ज मेडल, तीन नेशनल पार्टिसिपेट।
1: अच्छा, जब पहली बार गए थे मतलब आपकी टीम में, तो जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं पहली बार खेल रहे होते हैं, जो सीनियर खिलाड़ी किस प्रकार उनको मोटिवेशन करते हैं कि देखो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के जो प्रतियोगिता होती हैं उनमें खिलाड़ी पूरे इंडिया से मतलब अच्छे लेवल के
0: यस
1: आते
0: सर,
1: हैं, तो क्या कुछ वहाँ पर स्ट्रेटजी होती है आपकी, क्या सलाह दी जाती है आपको, किस प्रकार से जो मतलब अच्छा खेल के लिए प्रेरित करते हैं
0: यस
1: वो?
0: सर। सर मैं फर्स्ट नेशनल खेला था हिमाचल प्रदेश में, उसमें मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल था, वो मेरा फर्स्ट नेशनल था। जो भी हमारी स्ट्रेटजी होती है, कोच की अलग होती है, बच्चों की मेंटलिटी अलग होती है। तो मेरा मानना यह है कि सबको यूँ मानना चाहिए कि अभी अपन अपने स्टेट से खेल रहे हैं, राजस्थान से खेल रहे हैं, हम कोई डिस्ट्रिक्ट से या कोई खुद की पर्सनल टीम से नहीं खेल रहे। हमें राजस्थान को रिप्रेजेंट करना है तो सबको यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी, उस हिसाब से खेलना है, खुद का सेल्फ नहीं खेलना चाहिए। और जैसे ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर्स आते हैं तो कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो कोच भी देखता है, हम भी देखते हैं बैठ के कि वो क्या कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं। कोई अच्छे प्लेयर होता है तो उनसे पूछते हैं कि भाई कोई ये चीज़ में कमी है तो इसको कैसे फुलफिल करें, कोच से सीखा जाता है। बहुत सारे कोई इंडिया लेवल का कोच होता है तो उससे सीखते हैं कि सर अगर कोई कमी हो तो कैसे पूरी करें।
1: देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतियोगिता आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं उसके बाद संभावना बढ़ जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की,
0: यस सर,
1: तो आपके साथियों में से जैसे हमारे जैसलमेर अकादमी से अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं?
0: सर मेरे आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 या 5 प्लेयर खेले, उससे पहले भी खेल रखे हैं। मेरे आने के बाद अभी करंट में मोहम्मद रजा खान एंड संस्कार सैनी खेल गए हैं स्कूली इंडिया, एंड मोहम्मद रजा फीबा साबा अंडर 17 में खेल गए हैं।
1: अच्छा, जैसे कि इनका किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीम में सिलेक्शन होता है, जैसे आपका भी यहाँ पर जैसलमेर में प्रैक्टिस कर रहे हो अकादमी, तो उनको क्या राष्ट्रीय स्तर की अकादमी में प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है?
0: नहीं सर, वो यहीं प्रैक्टिस करते थे, हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते थे। मैं उनके साथ नेशनल भी खेला हूँ, नेशनल में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो इंटरनेशनल हो। अब जैसे वो इंटरनेशनल खेल के आए तो उनने बाहर का एक्सपीरियंस लिया, आउट ऑफ इंडिया कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे लोग खेल रहे, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब वो वापस यहाँ पर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपन इंटरनेशनल खेले तो नेशनल लेवल की अकेडमी हो, अपन जैसे जैसलमेर में अकेडमी हो तो यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर बहुत सारे खेल रहे हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, अच्छे कोच हैं हमारे पास।
1: अच्छा, शारीरिक रूप से स्पोर्ट्स में जो बच्चे आते हैं उनकी फिटनेस के लिए वो क्या अतिरिक्त एनर्जी के लिए क्या कुछ खाते हैं, या जैसे आम बच्चा जो पढ़ाई करता है उसकी डाइट अलग होती है, आपकी
0: यस
1: कितना फर्क होता है?
0: सर, जो सिर्फ स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं है और जो स्पोर्ट्स में, उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है डाइट में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हैं, वो कम करते हैं, तो हमें उस हिसाब से डाइट लेनी पड़ती है। हमारे कोच अच्छे हैं तो वो हमें बता देते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए तुम्हें, ड्राई फ्रूट्स, चिकन, नॉन जो नॉन वेज खाते हो नॉन वेज, जो वेज खाते हो वेज, स्प्राउट्स एंड एग वेग।
1: फ्यूचर में स्पोर्ट्स में ही आप रहोगे, कैरियर इसमें बनाना है, या कोई कुछ और सोचा आपने?
0: सर मैंने अभी आगे का कुछ नहीं सोचा, सिर्फ मेरा गोल है मेरे को इंटरनेशनल खेलना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद मेरा सपना है कि मैं इंडियन नेवी या एयरफोर्स में।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा, आप इंडिया को रिप्रेजेंट भी करोगे और एयरफोर्स या
0: थैंक यू
1: नेवी
0: सर,
1: ज्वाइन करके आप
0: सर।
1: भारत की सेवा करते रहोगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी अभिषेक चौधरी से श्यामवीर सिंह की बातचीत। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से की गई बातचीत। ये आकाशवाणी झालावाड़ का अंशदान है।
3: खेल जगत के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, खेल जगत के इस अंक में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वर्तमान में श्रीमती विजय राजे सिंधिया खेल संकुल झालावाड़ में स्थानीय खिलाड़ियों को सॉफ्ट बॉल के गुर सिखाने वाले सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से। विशाल चौधरी के बारे में आपको बता दें मित्रों कि खेलो इंडिया से लेकर कई बार आप नेशनल सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और झालावाड़ जिले का नाम रोशन कर चुके हैं, साथ ही बेसबॉल में भी आप नेशनल खेले हैं और इसी साल यानी 2026 में भी विशाल ने उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित वेस्ट जोन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 में पार्टिसिपेट किया और अपने खेल कौशल से सभी को प्रभावित किया है। विशाल नमस्कार, खेल जगत में आपका हार्दिक स्वागत है।
4: नमस्कार सर।
3: विशाल, सबसे पहले आपसे जानना

0: चाहेंगे कि सॉफ्ट बॉल की दुनिया में आपका सफर कैसे शुरू हुआ?
1: सर, मेरा सॉफ्ट बॉल की दुनिया में सफर जब मैं सिक्स क्लास पढ़ता था तब से शुरू हुआ। जो मेरे सीनियर थे वो इस गेम को बहुत ही आकर्षक रूप से खेल, तो मेरा भी उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा और फिर उनके साथ खेलने लगा तो मेरे को अच्छा लगा। एक्चुअली में क्या है, अलग से गेम लगता था, अलग से खेलना, उसे बैट गोल वाला स्लाइड और बड़ा सा बॉल, तो एक अलग सा मजा आता कि इतने इस बॉल को पकड़ने के बाद बहुत मजे आएंगे।
0: आज के जमाने में क्रिकेट का बोलबाला है
1: जी,
0: और लगभग हर युवक चाहता है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बने, ऑलराउंडर बैट्समैन बने।
1: सर, मेरा भी एक क्रिकेट का एक्चुअली में था, हम भी क्रिकेट बहुत खेलते थे, बट जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखते हैं, लोगों को देखते हैं क्रिकेट में डिमोटिवेट होते हुए, कुछ ही लोग सक्सेस हो पाए हैं, बट मेरे को अलग से अच्छी फीलिंग आई इसको खेलने के बाद कि नहीं, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये भी अच्छा है, तो फिर जब से हम इससे जुड़े हुए हैं। सर,
0: किसी भी युवा को, किसी भी खिलाड़ी को अपने करियर में आगे बढ़ाने के लिए उसके परिवार की, उसके दोस्तों के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है।
1: जी जी जी।
0: तो आपको ये सपोर्ट कैसा मिला?
1: एक्चुअली मेरे पापा को भी शुरू से यही शौक था, हमारे गांव में वॉलीबॉल फुटबॉल जो गेम चलता, मेरे पिताजी भी इसे गेम से जुड़े, पापा को एक्चुअली उनको पता था कि गेम खेलेगा तो कोई ना कुछ करेगा, और मेरे दोस्त भी मेरे साथ जितने भी साथी रहे मेरे, वो भी इसी गेम से जुड़े हुए थे, तो मेरे को अच्छा लगता था। सर,
0: पहली बार सॉफ्ट बॉल मैच आपने कहां और कैसे खेला और किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आप नेशनल तक पहुंचे और आज आप सॉफ्ट बॉल के सफल प्रशिक्षक हैं, इस दौरान आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या अचीवमेंट आपने हासिल किए?
1: सर, मैं पहली बार 2013 में डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, तो उसमें मैं हमारी टीम ने पार्टिसिपेंट किया था हमने, तो वहां पर हमारी टीम विनर रही थी। उसके बाद मेरा स्टेट में चयन हुआ था, जो मैं पहली बार बीकानेर खेलने गया था, जब वहां गया तो सभी जिलों की टीमें आई और वहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन, हमारे यहाँ स्लो पिच थे, वहां देखा गया तो कि बॉल स्विंग हो रही है, इधर जा रही है, और अलग सा लेवल देखने को मिला, तो थोड़ी खुशी भी हुई। तो पहला मेरा टूर्नामेंट था, उसके बाद फिर मैं सब जूनियर नेशनल खेला जो झालावाड़ में एमेच्योर द्वारा आयोजित हुआ था, तो उसमें भी झालावाड़ विनर हुआ था। फिर उसके बाद आगे जैसे मैं गया तो 2019 में मैंने नागपुर सीनियर नेशनल पहली बार पार्टिसिपेट किया
0: जी।
1: जब मेरी एज लगभग सर 19 वर्ष थी, उस टाइम मैंने सीनियर खेला। फिर मैंने उस ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम चले थे, तो मेरा मैंने बीए में एडमिशन हुआ झालावाड़ कॉलेज में, तो पहली बार किशनगंज कॉलेज द्वारा एक आयोजित हुआ था सॉफ्टबॉल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ से हमने भाग लिया, उसमें हमारी टीम विनर रही। फिर यहाँ से सिलेक्शन हुआ हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए, तो पहली बार दफा ऐसा हुआ था कि कोटा यूनिवर्सिटी की टीम पहली बार टॉप 8 में गई थी, इसमें झालावाड़ के 5 खिलाड़ी खेल रहे थे और मैं उसमें पिचर की भूमिका मैंने निभाई थी।
0: जी,
1: तो सर मेरे को बहुत उसी से ही थोड़ा मोटिवेशन मिला, जब हमारा केरला से मैच था तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब फिर उसके बाद हमारा 2020-22 में जो पाली में वेस्ट जोन टूर्नामेंट हुआ उसमें हमारे विनर हुए हम
0: जी।
1: उसके बाद फिर सर 23 में फिर विनर हुआ, और फिर अभी जो 2026 में वेस्ट जोन उज्जैन में आयोजित हुआ था, तो उसमें राजस्थान की 4th प्लेस लगी सर। फिर सर जैसे बढ़ता गया तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया, तो मजे भी आ रहे हैं सर अब।
0: जी जी जी, देखिए बहुत अच्छे अचीवमेंट आपके हाथ लगे हैं और इतनी उम्मीद किसी से नहीं की जाती कि इतनी बार कोई नेशनल खेल ले, आपने कई बार ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा विशाल, सॉफ्ट बॉल के अलावा आप और कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं?
1: सर, सॉफ्ट बॉल के अलावा पहले तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था, पर एक्चुअली में सॉफ्ट बॉल का एक मिला जुला गेम है बेसबॉल।
0: जी जी जी।
1: तो उसको लोग बोलते हैं, इसे पहले बोला जाता था कि मर्दों का गेम है, मर्दों का गेम है, पहले एक्चुअली में क्या है, बेस सॉफ्ट बॉल को लड़कियां खेलती थी और बेसबॉल को लड़के खेलते थे अमेरिका में, तो फिर उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया, तो फिर उसके बाद हम बेसबॉल खेला, तो बेसबॉल में मैं नेशनल खेलने गया पहली बार, विशाखापट्टनम में नेशनल गया, उसके बाद हम भिलाई में गए, और फिर अभी लेटेस्ट में पंजाब में हुआ था, तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसको सेम गेम है, बस बॉल का फर्क है और मेजरमेंट का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है सर।
0: विशाल, आप बहुत लकी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों खेलों में आपने क्या अंतर देखे और क्या समानताएं देखी, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे।
1: समानताएं तो इसमें सर बहुत सी है, एक्चुअली में क्या है, ग्राउंड सेम डायमंड, प्लेयर 9 खेलते हैं, इक्विपमेंट सेम यूज होते हैं, बैट और बॉल का अलग अलग होता है सर। एक्चुअली में क्या होता है, शॉर्ट बॉल का ग्राउंड 270 फीट की होमर रन होता है, उसमें 350 फीट होता है, जिसे सॉफ्ट बॉल में थोड़ा बड़ा बॉल होता है, उसमें थोड़ा छोटा क्रिकेट के साइज का बॉल होता है। दूसरा, इसमें पिचिंग, उसमें थ्रोइंग पिचिंग की जाती है, इसमें अंडर आर्म पिचिंग की जाती है। दूसरा, एक बैट का जो साइज होता है वो जो लगभग 34 का होता है, तो उसमें 34 तो होता है बट उसका जो बैरल होता है उसकी लंबाई थोड़ी बड़ी होती है सर, और सब कुछ सेम है सर। तो मजे आए कॉमन गेम, तो थोड़ा हल्का सा जो ग्राउंड 60 फीट का जो होम लाइन होती है उसमें 90 फीट की होती है सर।
0: जी, जी।
1: बाकी दोनों गेम अच्छे हैं सर, दोनों सेम है, बस बॉल का फर्क है सर।
0: जी विशाल, और विशाल किसी भी गेम में प्लेयर के लिए नेशनल खेलना एक सपना होता है और आपने दो गेम में नेशनल खेला है, तो नेशनल और इंटरनेशनल के बीच आपका क्या फर्क रह गया, आपने इंटरनेशनल से कैसे दूर रह गए?
1: सर, एक्चुअली में सॉफ्ट बॉल अभी इंडिया में डेवलप गेम है, डेवलप हो रहा है, इसका इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की रैंकिंग 58 पे है। कैंप लगा था उज्जैन में तो हम गए थे, पर उसमें जाना टीम कैंसिल हो गई, तो उसमें हम नहीं जा पाए।
0: तो अब विशाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दो दो गेम में नेशनल खेले हैं, उसके बाद भी आपने कोच बनने की राह क्यों चुनी?
1: सर, अभी जो अपने गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी खेलो इंडिया,
0: जी जी जी,
1: तो उसमें

0: जो बच्चा किसी जिले से अपने पर्टिकुलर गेम में 2 से 3 नेशनल खेला हुआ है,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: उनके लिए 5 चैंपियन एथलेटिक के थ्रू एक खेलो इंडिया का एक सेंटर हर जिले में डेवलप किया गया था, जिस उसके जिले की डिमांड को देखते हुए उसके तहत आप लोगों को गेम मिला था शॉर्ट बॉल।
1: जी
0: तो उसमें पार्ट टाइम एथलेटिक के लिए कोच की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मेरा उसमें चयन हुआ। फिर उसके बाद मेरे को उन भारत सरकार द्वारा एनआईएस कराई गई, तो जैसे मैं एनआईएस करने गया तो मेरे को वहाँ पे लगा कि कोच एक्चुअली होता क्या है।
1: जी जी जी
0: मेरा सपना था कि मैं नई पीटीआई बन के किसी गवर्नमेंट स्कूल में से करेंगे, बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं यार, पर्टिकुलर अपने गेम का एक कोच और पीटीआई मतलब कि सभी उसको गेम कराने पड़ेंगे। असली फीलिंग तो अपने गेम को खिलाने में है बच्चों से। तो फिर
1: बिल्कुल
0: मेरे को लगा हुआ कि नहीं, अब तो बनना तो कोच ही है, तो उसकी सब
1: जी जी
0: मेहनत
1: जी
0: करते रहे और अभी पार्ट टाइम लगे हुए हैं। देखो भविष्य में फिर अगर वैकेंसी आती है तो।
1: और इस समय जूनियर, सब जूनियर और सीनियर और लड़के और लड़कियां, यानी सभी प्रकार के खिलाड़ियों को आप सॉफ्टबॉल के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो क्या रेस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है?
0: सर बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी 2025-26 के मैचोमेंट बताते हैं आपको, तो हमारे लगभग 9 बॉयज और 3 लड़कियां
1: जी जी
0: अभी ओलैंड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेल के आई है, जो अपने वहाँ कर्नाटक में आयोजित हुई थी सर। और छोटे बच्चे भी, हमारे एक मयंक नागर है लड़का, तो वो
1: जी
0: नेशनल खेल के आया है। झालावाड़ में
1: जी
0: पहला
1: जी
0: एक
1: जी
0: गेम है जो गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे लेके आ रहा है, तो लोगों का क्रेज बढ़ रहा है। अभी जैसे
1: जी हाँ जी
0: गर्मियां, बड़ी
1: हाँ।
0: छुट्टियां लगी तो बच्चे आ रहे हैं।
1: और कौन सा फेडरेशन या संस्था सॉफ्टबॉल की खेल गतिविधियां आयोजित कराती है?
0: भारतीय सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन द्वारा इसको बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: इसके समय समय पर सीनियर जूनियर सब जूनियर प्रतियोगिताएं का आयोजन करवाते हैं हर साल। और सबसे अच्छी बात यह है कि झालावाड़ के बच्चे इसमें अधिकतर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हर
1: जी
0: अभी
1: जी
0: तक जब भी लगभग मैं जब से मैं खेल रहा हूँ, हर एक ऐसा कोई सा टूर्नामेंट नेशनल नहीं गया जिसमें झालावाड़ का बच्चा राजस्थान टीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, चाहे वो सब जूनियर हो या सीनियर हो।
1: झालावाड़ के लिए वास्तव में यह गौरव की बात है कि नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं और सॉफ्ट बॉल में अपना नाम रोशन कर रहे हैं।
0: जी
1: प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है और पूरा रूटीन प्रैक्टिस का किस प्रकार से होना चाहिए?
0: सर, किसी भी गेम के लिए सर वो बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मेन इज परफेक्ट, तो किसी भी गेम को खेलने उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी। तो हमारा रूटीन होता है, सुबह हम हमारे बच्चों को सुबह 6:30 बजे ग्राउंड बुला लेते हैं, तब स्कोप द स्कूल, तो उसमें हमारे बच्चे आते हैं, तो हम पहले उसको रनिंग, फिर एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइज, फिर नॉर्मल गेम स्किल्स जो उसको डेवलपमेंट करवाते हैं। उसके बाद जैसे गेम क्लोजिंग सेशन होता है, तो उनको थोड़ा वार्म अप रनिंग करा के, वार्म अप करवा के और कूल डाउन करके उनको छोड़ देते हैं। अभी एक खेलो इंडिया की एक पॉलिसी के तहत संडे साइकिलिंग जो चल रहा है, उसमें भी हमारे बच्चे पार्ट ले रहे हैं। अच्छा रिव्यू आ रहा है, राजस्थान में हमारा फर्स्ट पे चल रहे हैं इसमें
1: जी
0: भी।
1: जी जी और एक सॉफ्ट बॉल प्लेयर के लिए पिचिंग, हिटिंग, फील्डिंग बहुत महत्व रखती है, तो पिचिंग, हिटिंग, फील्डिंग में सुधार के लिए आप किस प्रकार की प्रैक्टिस खुद करते हैं और करवाते हैं अपने खिलाड़ियों को, और कौन कौन सी खास एक्सरसाइज?
0: इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अपने मसल्स।
1: जी जी
0: मसल्स के लिए हम बच्चों को वेट ट्रेनिंग करवाते हैं, साथ साथ रिस्ट रोटेशन करवाते हैं। तो हमारे पास अभी इसमें योजना के तहत ही हमारे पास बच्चों के लिए जिम के इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हुए हैं, तो उससे हम बच्चों को थोड़ा एक्टिविटी करवाते हैं। साथ साथ अभी जो मैं एनआईएस करने गया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा साइंस का भी उसमें यूज सिखाया था, तो उसको
1: जी जी
0: हम
1: जी
0: बच्चों पर अभी धीरे धीरे जनरेट कर रहे हैं, जैसे किन्सोलॉजी, बायोमैकेनिक्स का उसमें यूज करके बच्चों के कार्डियो सिस्टम्स की कुछ मसल्स का जो भी इशू है वो उसको दूर करके, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हो जाए। और
1: जी जी
0: सबसे
1: जी
0: इम्पोर्टेंट पार्ट इसी में वही है जो सर अभी आपने बताया मुझे कि पिचिंग, कैचिंग, बैटिंग, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो अगर
1: जी
0: आपकी
1: जी
0: पिचिंग अच्छी है तो आपका पिचर ही पूरा गेम जीता लेगा।
1: जी
0: तो पिचर की अलग से स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, इसके थाइस भी मजबूत होने चाहिए। पिचर यानी कि फुल ऑन फिट एंड स्पीड मैन प्लेयर।
1: जी जी जी सॉफ्ट बॉल में अंडर आर्म फास्ट पिचिंग भारत में ऐसा माना जा रहा है कि अभी अभी नई नई आई है, तो
0: जी
1: कोच की हैसियत से आप प्लेयर्स को फास्ट पिचिंग की बुनियादी टेक्निक कैसे सिखाते हैं और कितने समय में वो इस प्रक्रिया से मास्टर बन सकते हैं?
0: एक्चुअली मैं खुद भी इसी गेम में पिचर रहा हूँ। नहीं एक्चुअली में नहीं, तो क्या अंडर आर्म पिचिंग तो होती थी, बट वो क्या है जंप से नहीं होती थी, खड़े
1: जी
0: खड़े
1: हाँ जी
0: पिचिंग
1: हाँ
0: करना होता था।
1: जी
0: तो अभी इंडिया में से नई आई जंप करके, ऐसे पैर लेग पैर पीछे आगे प्लेट पे दोनों पैर रखने पड़ते, पीछे रखे तो जंप करते। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका लैंड कैसे हो रहा है, सीधा सा आपकी जब बॉल डालने से पहले आपका लैंडिंग अगर सही है तो पिच अपने आप सही जाएगी। से उनको बताते हैं, जैसे
1: जी
0: बेसिक्स
1: जी जी
0: हमें सिखाया गया कि आपको जैसे पॉकेट, जैसे लोअर पेन थे उसके पॉकेट के पास से बॉल चुन तो अच्छा जाएगा, आपकी फिंगरिंग कैसी होती, ग्रिप्स वगैरह जो उसमें ग्रिप बनी सीम बनी होती है तो उस
1: जी
0: ग्रिप्स
1: जी
0: पकड़ के।
1: और विशाल, हार या जीत खेल का हिस्सा होता है, और इस अंतर को आप किस प्रकार से देखते हैं और हार के बाद प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं?
0: सर हार जीत एक बहुत बड़ा इमोशनल पार्ट्स हैं। ऐसे लोग तो जैसे देखा जाए इसमें दो तरीके, स्पोर्ट्स जो प्लेयर होता है उसको दो चीज़ें से जुड़ा हुआ होता है, एक तो खुशी के आंसू, एक गम के आंसू। जैसे हारते हैं तो मैं बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहता हूँ, कोई बात नहीं है, अच्छा अगले साल कुछ अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं हमें कमी रही होगी। मैं उनसे ये तक बोलता हूँ कि वो बच्चे से कि कहीं ना कहीं उनमें नहीं है, मेरे में कुछ मैंने तुम्हें कम सिखाया, बाकी ठीक ये जैसा चल रहा है। और जीतने के बाद तो फिर आप को सबको पता है कैसा क्या होता है।

0: और खेल के दौरान फोकस बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं?
1: हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि बच्चों का जैसे ग्राउंड में बाहर से होटिंग वगैरह होती है, तो बच्चे का कैसे उसमें फोकस रहे, इसलिए मैं उनको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स अभी जो योगा के द्वारा मिलता है लोगों को, तो मैं लगभग इनको बेसिकली इसी चीज़ों से रिलेटेड करके जिसको जुड़वाता हूँ, तो मैं सो इनको मेडिटेशन करवाता हूँ। दूसरा, इनका फोकस ग्राउंड में रहे, तो इसलिए उनके जो उसके कमांड्स होते हैं गेम्स के रूल, जो अपन आउटिंग वगैरह करते हैं तो प्लेयर में से बोलते हैं कि थ्रो इन फर्स्ट बेस, तो उसका एक्टिवनेशन आता है। और गेम
0: जी
1: ऐसा
0: जी जी
1: गेम है ये, तो स्लो के साथ साथ फास्ट भी चलता है। क्रिकेट में क्या होता है कि अभी बॉल पहुंचा नहीं पहुंचा, इसमें पर्टिकुलर जो 9 प्लेयर 9 प्लेयर्स इन होते हैं, तो कभी भी किसी के पास बोलते हो एक्टिवनेशन होती है। और दूसरा, हम फोकस के लिए बहुत सारी ड्रिल्स करवाते हैं इनसे, बॉल्स जैसे बॉल पर्टिकुलर बॉल थ्रोइंग करवाते हैं, ऐसे 100 150 बॉल से कंटिन्यू हिटिंग करवाते हैं, तो इनका फोकस बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं।
0: अच्छा विशाल, आपने सॉफ्टबॉल में कई बार नेशनल खेला है,
1: जी
0: तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके करियर का सबसे यादगार मैच कौन था और उससे आपको क्या सीख मिली, क्या अनुभव आपके रहे?
1: सर, मेरे करियर के में सर सबसे सबसे पहला तो मेरे जो फर्स्ट में खेला, तो मैं हम फर्स्ट में विनर हुए, तो एक अलग से कि नहीं यार अच्छा लगा अभी जीतने के बाद। बट एक हमारा मैच था 2017 में, हमने भरतपुर के खिलाफ खेला था स्टेट मैच, ओपन स्टेट, तो वो सबसे यादगार मैच था हमारे लिए। हमारा बहुत अच्छा मैच चला था, उस मैच में लास्ट इनिंग में हम थोड़ा 4 5 से हम उसमें बिछड़ गए थे, हार गए थे, तो
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: उसके
0: जी
1: बाद मेरे को मोटिवेशन मिला। हमारे सभी दोनों कोच जो मेरे को सपोर्ट करते हैं आज, उन्होंने मेरे को समझाया, मैं समझाया थोड़ा सा ऐसा इमोशनली हो गए थे उस टाइम,
0: जी
1: इतना
0: जी जी
1: खेलने इतना टाइम तक लंबा मैच चला फिर हम हारे, तो उस दिन से मेरे को सीख मिली कि नहीं अब अच्छा मेहनत करना चाहिए, साथ साथ आपको क्या क्या हमें कमियाँ रह गई तो उस पर मेहनत करी, तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला। और मेरे जीवन का सबसे यादगार मैच देखा जाए तो वही था, कि इतनी भीड़, इतनी गैदरिंग,
0: जी जी
1: झालावाड़
0: जी
1: और भरतपुर के मैच को देखने इतनी पब्लिक थी, ऐसे बिल्कुल से तनातनी और अच्छा माहौल में अच्छा मैच चल रहा था, मजे आए।
0: जी जी जी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल हम देखें तो हम देखते हैं कि विदेशी टीमों के आगे हमारी भारतीय टीम थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है, तो क्या ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से हमारा प्रदर्शन कमज़ोर सा रहता है?
1: मेरे मेजर जनरल जानकारी इस हिसाब से बता रहा हूँ कि बच्चे क्या है, हमारा इंडिया की जो टीम जो जाती है एक्चुअली में क्या है, पर्टिकुलर उसी बेसिस पे उसी गेम्स के जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, पर वो जो टीम जो जाती है उसमें एक्चुअली में, पर जो सामने जो टीमें जो आती है इंटरनेशनल लेवल पे जो आती है, उनका ऑलरेडी उनकी अच्छा डेवलपमेंट होता है,
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: लंबी प्रोसेस से आते हैं अच्छी इक्विपमेंट्स, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू है कि गेम अभी अच्छे से अपनी कंट्री में डेवलप नहीं पाए, जब डेवलप हो जाएगा तो फिर कौन जापान कौन सब इंडिया सबसे बेस्ट होगा।
0: और फिलहाल हमारे देश में हम देखते हैं कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेल बहुत पॉपुलर हैं,
1: जी
0: और इन सब के बीच में आप सॉफ्ट बॉल को कहाँ पाते हैं और हमारे देश में आप इसका क्या भविष्य देखते हैं?
1: सर, इसका भविष्य तो बहुत अच्छा है एक्चुअली में, गेम बहुत अच्छा है। दूसरा, आप देखो तो मैं तो मेरे जनरल मेरे गेम को मुझे अच्छा प्यार है, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, बट नहीं कहीं ना कहीं सॉफ्ट बॉल का बहुत अच्छा भविष्य, किस किस की हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, साथ साथ मेंटली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रहा है, किसको कहाँ थ्रो करना है। अब ऐसा नहीं क्रिकेट 1 रन लेके तो दौड़ लिया डक, ऐसा नहीं है 24 घंटे हर प्लेयर को एक्टिव, जब गेम खेलेगा तो उसको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रही है, किस बेस पे
0: जी
1: थ्रो
0: जी
1: करना है,
0: जी जी
1: थोड़ा
0: जी
1: नियम थोड़ा सा अलग हटके हैं, थोड़ा रूल्स तो वो भी हैं, और ठीक है अपना गेम है तो, और अच्छा खुशी मिलती है लोगों को हर दिन जो 9 प्लेयर खेलते हैं, हर टाइम गेम के टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, कब किसी के पास बॉल आ रही है, अच्छे से
0: जी
1: बॉल
0: जी
1: पहुँच पा
0: जी
1: रही है।
0: विशाल, आप सॉफ्टबॉल और बेसबॉल के नेशनल प्लेयर हैं, साथ ही कोच के रूप में सॉफ्टबॉल के प्लेयर भी इस वक्त तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप अपने खुद के खेल जीवन को कहाँ तक देखते हैं, आगे आपका क्या लक्ष्य है?
1: सर, मेरा लक्ष्य तो अभी गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं कोच बनता हूँ तो मेरे को कुछ इससे बड़ा कुछ तो क्या होगा, आने वाला मेरा यही भविष्य है कि मैं जितना हो सके मेरी तरफ से प्रयास करूँ कि झालावाड़ से अच्छे प्लेयरों को निकाले हम, साथ साथ राजस्थान की भी टीमें अच्छी जाए, हम उसके लिए पूरे दिल और जान से मेहनत करेंगे। साथ साथ मेरे जो कोच हैं वो भी मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं, जैसे बात करूं मैं मेरे कोच ललित सर हैं, कृपा शंकर सर जो खेल अधिकारी, उनका मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे
0: जी
1: पे,
0: जी जी
1: साथ साथ विनोद सर है हमारे, तो ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरे साथ बहुत प्रयास करते हैं लोग, मेरे से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये लोगों ने मेरे को आज जो भी हूँ मैं इनकी बदौलत हूँ तो ये लोग चाहते हैं, तो साथ साथ ये भी आज इस तरीके से भी इनके व्यक्तिगत जीवन से भी आज जुड़े हुए हैं इतने सफर के बाद, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ के मैं भी कुछ अच्छा करूँ, और अगर गवर्नमेंट कोच लगते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसके साथ हम गेम का वो डेवलप कर पाएंगे।
0: विशाल, आप अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब हों, सॉफ्टबॉल के कुछ ऐसे खिलाड़ी तैयार कर पाएं जो कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर भी देश का गौरव बढ़ाएं और झालावाड़ का मान बढ़ाएं। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सॉफ्टबॉल कोच विशाल चौधरी से की गई बातचीत, ये आकाशवाणी झालावाड़ का अंशदान था। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेल जगत, ये आकाश
1: खेल जगत कार्यक्रम आपने सुना हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया गया। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

फिल्म संगीत के सभी श्रोताओं का नमस्कार। आज संजय बैद की ओर से दोस्तों, आज 3 अगस्त का दिन और आज ही के दिन सन 1918 में एक ऐसे संगीतकार का जन्म हुआ था जिन्हें हम जयदेव के नाम से जानते हैं। नैरोबी में उनका जन्म हुआ और पालन पोषण भारत के लुधियाना में हुआ। संगीतकार बनने से पहले बचपन से ही उनके सिर पर फिल्मी हीरो बनने का भूत सवार था और इसी लालसा में वो घर से भागकर मुंबई चले गए और वहां हीरो तो नहीं बन पाए लेकिन फिल्म संगीत के वो हीरो जरूर बन गए। मुंबई पहुंचकर जयदेव ने वाडिया फिल्म कंपनी के लिए एक बाल कलाकार के रूप में, हालांकि 8 फिल्मों में अभिनय भी किया था, लेकिन उनको एक संगीतकार बनना लिखा था और यदि वो संगीतकार नहीं बनते तो इतने मधुर गीत हमें सुनने को कहां से मिल पाते। लुधियाना में प्रोफेसर बरकत राय ने उन्हें छोटी उम्र में संगीत की शिक्षा दी और जब वो मुंबई आए तो कृष्ण राव जोकर और जनार्दन जोकर से उन्होंने संगीत सीखा और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई से पुणे लुधियाना चले गए क्योंकि उनके पिता नेत्रहीन थे, जिससे उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी जयदेव की कंधों पर आ गई थी। पिता की अचानक मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद जयदेव पुणे मुंबई लौटे और उसके बाद 1943 में संगीत की शिक्षा लेने के लिए उस्ताद अली अकबर खान के पास वो लखनऊ चले गए। उसके बाद उनका फिल्मी जीवन आरंभ हुआ। इस संगीतज्ञ के रूप में चर्चा करेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके संगीत के बारे में, लेकिन पहले हम आपको सुनवाते हैं उनका एक बहुत ही मधुर गाना फिल्म प्रेम पर्वत से, जिसे अपनी मखमली आवाज दी लता मंगेशकर ने और इस गीत को लिखा जान निसार अख्तर ने।

0: अली अकबर खान ने जयदेव को 1951 में अपने सहायक के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने आंधियां और हमसफर फिल्म के लिए संगीत दिया। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर फिल्म में वो एचडी बर्मन के सहायक के रूप में भी काम करते रहे। उन्हें सफलता मिली चेतन आनंद की फिल्में जोरू का भाई और अंजलि से, लेकिन असली पहचान जयदेव को मिली नवकेतन की फिल्म हम दोनों से, जो 1961 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट रहे, जिसमें अल्लाह तेरो नाम, अभिना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, सारे नगमे श्रोताओं की दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए। दूसरी सफल फिल्म उनकी थी सुनील दत्त की मुझे जीने दो, जो 1963 में रिलीज हुई थी। जयदेव पहले ऐसे संगीतकार रहे जिन्हें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। फिल्में थी रेशमा और शेरा, गमन और अनकही। जयदेव ने गमन फिल्म में छाया गांगुली और घरौंदा फिल्म में रूना लैला से ऐसे नगमे गवा दिए जो आज भी अमर हैं। घरौंदा फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं, जिसे गुलजार ने लिखा, आवाज दी भूपेंद्र के साथ रूना लैला ने।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी,
2: दो दीवाने शहर में।

दोस्तों, संगीतकार जयदेव ऐसे संगीतकार रहे जो हिंदी फिल्मों में पारंपरिक और लोक संगीत को मिलाने की अनूठी क्षमता के मालिक थे, और यही खासियत उनको दूसरे संगीतकारों से अलग रखती थी। हालांकि उनके हिस्से में बहुत कम फिल्में आईं, लेकिन जिन भी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, उनके संगीत को लोगों ने सराहा। चाहे फिल्में हिट रही हों या फ्लॉप हुई हों, लेकिन उनके संगीत में कोई भी किसी तरह की कमी नहीं निकाल पाया। हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने एक नेपाली फिल्म मैतीघर के लिए भी संगीत तैयार किया था। इसके अलावा उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की जो क्लासिक कृति थी मधुशाला, उस गैर फिल्मी एल्बम के लिए भी उन्होंने अपना संगीत दिया, जिसे मन्ना डे ने अपनी आवाज दी थी। जयदेव आजन कुंवारे रहे और 6 जनवरी 1987 को 68 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। कार्यक्रम का अगला गीत हम उस फिल्म से सुनाते हैं जिस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये फिल्म थी सुनील दत्त की रेशमा और शेरा। इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने। निश्चित ही आप जब इस गीत को सुनेंगे तो इसमें खो जाएंगे, डूब जाएंगे।

तो जयदेव गिनती में नहीं बल्कि गुणवत्ता में विश्वास रखते थे। उन्होंने चाहे कम फिल्मों में संगीत दिया हो लेकिन अपने स्तर से वो कभी नहीं गिरे। उनकी तुलना नौशाद, मदन मोहन और खय्याम जैसे संगीतकारों के साथ की जाती थी। चलते चलते हम दोनों फिल्म का गीत हम आपको सुना देते हैं जिसके लिए चाहे उन्हें पुरस्कार ना मिला हो लेकिन दर्शकों का प्यार खूब मिला। ये गीत गाया मोहम्मद रफ़ी ने और लिखा साहिर लुधियानवी ने।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली।